فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

وضرب

उसे ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

Righto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, of course, assalamu alaikum, Ali Pakistan. Janab se muhatib aapka host, aapka dost, DJ Sahil signing in. All right, Janab, kaise hain aap tamam logi ki liye theek thaak hain, wane fit hain, maze mein hain. Khoob enjoy kare apni zindagi ko. 8 baj ke 4 minute hue chahte hain. Ye waqt hai Pakistan ka mayari waqt. Good morning everyone, jo log abhi abhi uthe hain, aaj Jumma hai, yani ki blessed Friday hai. तो डेफिनेटली आप लोग जो है अपने ऑफिसेज की जानिब बढ़ रहे होंगे, तैयारियां कर रहे होंगे, अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके जाएं, हेल्दी ब्रेकफास्ट करके जाएं। वेल जनाब, एक दफ़ा फिर से तमाम सुनने वालों को एफएम 101 की गुज़िश्ता 28वीं एनिवर्सरी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। कल हम सब यहाँ मौजूद थे, खासकर मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए लोगों के। यकीन करें कि इस बार लोगों ने जो है वो बैंड बजा दी मेरी कि ब्रो अगर आप नहीं आए ना एनिवर्सरी के ऊपर, आप ना दिखे वहां पे, तो फिर अच्छा नहीं होगा, आपके साथ लड़ाई हो जाएगी। क्योंकि जाहिर है ये वेली तो आ ही रही थी रिबेका, इसे तो आना था, तो सबने कहा कि जी आपने लाजमी आना। पर मैं एक आध और इवेंट में बिजी हूँ, उसकी रिहर्सल चल रही है, चीजें चल रही है, तो ऑल्दो मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपकी मोहब्बत और आप लोग की सख्ती मुझे खींच लाई, तो मुझे आना पड़ा। उसके अलावा मोहतरमा सदफ साहिबा जो है वो तो फोन पे बेचारी बस एक ही बात, देखो इस पर तुम नहीं आए ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तो बस वो फिर ये तो फिर ऊपर से ऑर्डर्स हो गए ना मेरे लिए, तो फिर मैं आ गया और आकर मैंने जो है वो कल की ट्रांसमिशन जो है वो संभाली तमाम अपने प्यारे प्यारे आरजे दोस्तों के साथ। लेकिन यकीनन कल बहुत मजा आया, बहुत सारे चेहरों से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, बहुत ही प्यार करने वाले, रिस्पेक्ट करने वाली टीम हमारी। यकीन करें कल बहुत अच्छा लग रहा था कि आप सीनियर हैं तो आपको सीनियर का दर्जा दिया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके नए आने वाले यंगस्टर्स सीनियर्स की इज्जत करते हैं। Thank you so much all the RJs or the entire team of FM 101, all the coordinators, all the producers, controller, DG sahab. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे FM 101 को इतना खूबसूरत बनाने के लिए और कल के दिन को खास स्पेशल बनाने के लिए। डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान जो है वो कल हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की मुलाकात रही कल और बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इसके अलावा हमारी कंट्रोलर अतिया साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी, उनके साथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा गपशप लगी, उन्होंने भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ऐसे ही ट्रीट किया जैसे अपने बच्चों को घर में किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगा। होपफुली ये सिलसिले इसी तरीके से मोहब्बतें बिखेरते चलते रहेंगे और वन मन जो है वो मजीद 28 साल और 128 साल तक भी जाएगा। बहुत सारी दुआएं एक तमन्नाएं आप तमाम लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए। 101 आज 28 साल का हुआ है तो ये सिर्फ 101 नहीं हुआ, आप तमाम लोगों की मोहब्बतों की वजह से हुआ है, आप सब के सब इसमें शामिल हैं, आप लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार, आप सुनते हैं हमें कॉल्स करते हैं, हमसे बहुत सारी गुफ्तगू करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने फेवरेट आर्टिस्ट को जब आप उनका नाम लेते हैं, उनसे बात करते हैं, तो डेफिनेटली उन आरजेस के लिए तो बड़ी खुशी की बात होती ही है, लेकिन चैनल के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि बेसिकली जो भी यहाँ पे आरजेस हैं या काम करने वाले इदारे के जो भी लोग हैं किसी भी शोबे में, यहाँ पे डेफिनेटली चैनल है तो वो हैं और वो हैं तो चैनल है, और इन दोनों के लिए आप हैं तो वो ये भी हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि लिसनर्स की पार्टिसिपेशन हमेशा रहे। मुझे बहुत खुशी हुई कल के जैसे ही पोस्ट और बर्थडे केक कटिंग सेरेमनी हो रही थी, बहुत सारे लोग जो हैं वो धड़ाधड़ कॉल्स कर रहे थे कि किस तरीके से किससे बात हो जाए। कल जब मैं घर गया हूँ रात को, तो आपको पता है मलाइका कल मुझे कितने मैसेजेस आए, कल मैं मैसेंजर नहीं खोलता, मुझे मैसेंजर पे कम से कम रात को 200 से ज्यादा मैसेजेस आए हुए थे मेरे पास, 200 प्लस, जिसमें यही बात हो रही थी कि साहिल भाई आप लोग कैसे दिख रहे थे, हमने देखा उस पर, हमारे पास वीडियो की रिसाई नहीं थी, लेकिन बेसिकली उनके बताने का मकसद ये था कि हमने इंजॉय किया और हमारी कोशिश थी कि हमारी आप लोगों से बात हो, तो आपने फोन नहीं उठाया, ये चीज़। दूसरा फिर इंस्टा पे जब मैंने देखा तो यकीन करें इंस्टा पे इतने मैसेजेस थे कि मैं गिन नहीं सका, हालांकि इंस्टा पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ, तो वो लोग जो कि इंस्टा पे मुझे मैसेज कर चुके हैं, मुझे 3 तारीख तक का कि आप छुट्टी दे दें, क्योंकि 3 तारीख तक ये मेरे इवेंट्स कुछ रहते हैं मैंने होस्ट करने, बस ये ख़त्म हो उसके बाद इंशाल्लाह बैठ के आराम से आप लोगों से दो दो हाथ करेंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। भारत जी कल का समा तो आपने देख ही लिया, मैम सदफरानी ने किस कदर खूबसूरत तरीके से जो है वो सारी अरेंजमेंट्स की, सारे लोग मौजूद थे, अनाहिता ने भी हमें कल ज्वाइन किया, अनाहिता सज्जाद जो कि पहले अनाहिता शाहिद के नाम से आपके लिए प्रोग्राम्स लेके आती थी, और गुड न्यूज़ यही है कि बहुत जल्दी आप उनको ऑन एयर सुनने वाले हैं, वो अपना बकायदा एक प्रोग्राम लेकर आने वाले हैं। कल मुलाकात हुई जी नासिर साहब से, इमरान साहब से, मेरी एक्चुअली टाइमिंग इस तरह की यहाँ पे कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकती है, लेकिन कल उनसे मुलाकात हुई, बड़ा मज़ा। इमरान साहब तो अपने दोस्त हैं ना, जिगर हैं,
तो बड़ा मजा आया। नासिर जो हैं वो हम नासिर से कहते हैं कि नासिर जो है वो हमारी हम उमरी समझें, वो सब प्रोड्यूसर्स में बहुत छोटू से हैं और हमारे भाइयों की तरह हैं, तो हम नासिर को नासिर ही कहते हैं। हालांकि देखिए ऑब्वियसली ही इज़ प्रोड्यूसर, हमारे बड़े काबिल एहतराम है। हमारे कोऑर्डिनेटर्स हमारी प्यारी सी मलाइका जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और मलाइका ने जो है वो कल बड़ी सेटिंग की है, सारा इन्होंने सजाया है। मलाइका ने बलून्स लगाए मिलके नासिर साहब के साथ, हमारी टीम और भी यहाँ पे मौजूद थी। इन्होंने गोल्डन कलर का बर्थडे जो है बड़ी सेटिंग से, जो हमारी वॉल थी पॉडकास्ट वॉल, उसके ऊपर इन्होंने जो है वो लगाया था, और साथ बलून्स ब्लैक एंड गोल्डन कलर के बलून्स जो थे उसकी डेकोरम जो है वो देखने वाली थी। तो कल बड़ा मजा आया। फिर हमारे एक बहुत ही प्यारे कोऑर्डिनेटर हैं, वो केक बना के लेके आए, जो बड़ा ही मजा आया कि वो इतना अच्छा बनाते, तो सबकी कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन थी। और एक घर फैमिली में जिस तरह छोटे बड़े सब मिलके काम करते हैं, उस तरीके से सबने काम किया। हाँ, मैंने क्या किया, मैं अपने वक्त से थोड़ा आधा घंटा लेट था, उसकी वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक और कोऑर्डिनेटर थी मिस रनीन, उन्होंने जी मेरे साथ तमाशा लगाया, बताया कि जी आधा पौना घंटा उस बंदी ने मुझसे बात की, अच्छा मैं करती हूँ, मैं तैयार होती है वो, फिर मैं कहती मैं कुछ सोचो, मैंने कहा तुम सोचती रहो, टाइम ओवर, मैं जा रहा हूँ। भारत पर मैं निकला, फिर मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कुछ खाया नहीं था, मैंने रास्ते से स्नैक्स वगैरह थोड़े से लिए, गाड़ी में वो खाते हुए ड्राइव करते, बड़ी बदतमीज से मैं आया हूँ। यहाँ मैं आया तो मोहतरमा वन एंड ओनली दी आरजे रिबेका अब्दुल जो है वो थी, और ज़ीशान नासिर थे, और सादिक दो और आरजेस थे जो कि ऑन एयर थे, और मैं अंदर आया, आते ही फिर जब भाई ने माइक संभाला है तो बस फिर भाई ने उसके बाद जो किया वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया। यकीन करें बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लोगों के इतने मैसेज आए कि साहिल भाई कल तो आपने बैंड ही बजा दी सबको, मजा ही आ गया। देखिए इट्स नॉट अ बैंड, इट्स नॉट कॉल्ड बैंड, ये होता है जी माइक छीनने का तरीका। ये मोहब्बत का तरीका होता है अपने आर्जेस के साथ गुफ्तगू करने का। हमारे जितने भी आर्जेस थे उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। भारत इसको कंटिन्यू करेंगे, आपसे बहुत सारी बातें और भी करनी है, लेकिन अभी हम शामिल करेंगे आज का पहला गाना, और जो फर्स्ट गाना मैं आपके लिए प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ 101 की इंटायर टीम को। द ट्रैक इज दीवाने चले जब साथ। बहुत इंजॉय कीजिएगा इस गाने को, मिलते हैं इस गाने के बाद 8:11। गुड मॉर्निंग एवरीवन।

FM 101. A bulbule, chabu chaba.

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: उनके पास, क्योंकि आपको पता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो हमारी अक्लियती बरादरी है वो सोशल स्टाटा में यानी कि पैसों के लिहाज से भी नीचे है, मतलब उनकी उतने पैसे उनके पास नहीं है, होमोजेनस ग्रुप नहीं है. ऑफकोर्स अमीर लोग भी हैं लेकिन गरीब लोग भी हैं, उसमें ज़्यादातर गरीब लोग हैं. तो फिर जो इलेक्शन लड़ने का एक पूरा एक तरीका होता है, ज़ाहिर है हमारे मुल्क में उसके बहुत पैसा उस पर खर्च होता है, चीज़ें खर्च होती है, तो फिर पार्टीज़ क्या ऐसा लाए अमल जो है वो इस्तेमाल करें कि ये लोग भी नुमाइंदगी कर सकें दूसरी पार्टीज के लिए, क्या है और अभी तक आपने क्या एफर्ट्स की हैं दूसरी पार्टीज को इंगेज करने में इस तरह के इशू में एज एनएलडी? आई एम नॉट आस्किंग एज जो आपकी पार्टी पोजीशन पीपल्स पार्टी में, मैं उस तरह से नहीं, लेकिन एनएलडी में आपने क्या कोशिश की है कि बाकी पार्टीज भी वो रास्ता इख्तियार करें? फिर
1: देखिए, हमने पिछले ये जो हालिया इलेक्शन गुजरा है 2024 में, उससे पहले हमने पूरे मुल्क में
0: जी
1: मुख्तलिफ हलकों का विजिट किया.
0: जी
1: वहाँ पर कम्युनिटीज़ को जो है वो अवेयरनेस कैंपेन हमने स्टार्ट की. चूँकि इलेक्शन होने वाला था तो मुख्तलिफ जो उनके उम्मीदवारान थे उनसे उनको कनेक्ट करवाया. कुछ उस वक्त जो कमिटमेंट्स, जो उस वक्त जो वादे इलेक्शन के दौरान होते हैं
0: जी
1: वो उनसे जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ के हवाले से जो चैलेंजेस थे वो डिस्कस किए, ताकि इलेक्शन के बाद भी जब वो जाएं तो उनको पता हो. और इस जो गैप था उसको ख़त्म करने के लिए हमने बहुत सारे सेशन पूरे मुल्क में उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में को ख़ास तौर पे फोकस करके किया जहां पर रिलीजियस कम्युनिटीज़ एक साइजेबल नंबर के साथ हैं.
0: बिल्कुल ठीक.
1: तो ये इससे हुआ ये कि जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो फिर उसको हमने फॉलोअप्स मीटिंग की कि जी इलेक्शन के टाइम जो जहां पर जीत चुके थे और जहां पर अगर वो नहीं जीत सके और उनकी जमात जीती है तो जाहिर है वो इस पोजीशन में हैं कि उनके जो इश्यूज को, उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस कर सकें. तो उस जो कनेक्शन हमने डेवलप किया था इलेक्शन से पहले उसको फिर फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए हमने उनका जो एक गैप आता है उसको ख़त्म करने के लिए हम उस सिलसिले को जारी रखा. अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम पिछले एक दहाई तकरीबन गुजर गई है हम इस कॉज को लेकर चल रहे हैं कि आप जो है वो रिलीजियस कम्युनिटीज़ को पॉलिटिकली जो है वो उनका जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी एग्जिस्टेंस है, उसको जो है वो
0: एक्नॉलेज करें.
1: लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें अभी मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ने की ज़रूरत है. यहाँ पर कानून का जो है वो एक सपोर्ट हासिल है कि जी 5% जो है वो आपने ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर जो है वो टिकट देने हैं, उनकी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया गया है कि वो जनरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें. हर सियासी जमात को 5% जो है वो टिकट देने हैं. तो मेरा ख्याल है हमें भी इस किस्म की जो है वो लेजिस्लेशन की तरफ आना पड़ेगा कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 5% या 10% आप जो भी है वो फिगर आप फिक्स कर सकते हैं पहले फेज के लिए. लेकिन मेरा ख्याल है कि 24 से ज़ायद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं नेशनल असम्बली की जहां पर 10,000 से लेकर 1,00,000 तक जो है वो नॉन मुस्लिम वोटर्स हैं.
0: जी
1: वोटर्स हैं, मैं पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा.
0: ठीक है.
1: तो वहाँ पर हमें कोई ऐसा फॉर्मूला जो है वो लाना पड़ेगा. जैसे 2001 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था उसमें एक क्लॉज रखी गई थी कि जहाँ पर 10% से ज़ायद
0: जी
1: नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये वोटर हैं, वहाँ पर एक जनरल काउंसलर की नशिस्त उनको मिल जाएगी. उस वक्त 21 मेंबरान होते थे तो जहाँ पर 10% से ज्यादा आबादी थी तो वो जनरल काउंसलर की सीट उनको दे दी जाती थी. तो मेरा ख्याल है इस तरीके का कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है अगर हम इंक्लूसिव सोसाइटी को पाकिस्तान में प्रमोट करना चाहते हैं कि जहाँ पर 15% से ज्यादा 15 से 25% करने चले अगर रजिस्टर्ड वोटर हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वहां प्रेफरेबली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट
0: दिया जाए या
1: टिकट दिया जाए, जिसे सीट भी ना दें, टिकट दें आप उनको. तो प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, लोग मिलेंगे आपस में, उनका इंटरेक्शन होगा, पॉलिटिकल बार्गेनिंग होगी. तो उससे जो है वो मैं समझता हूं कि ग्रास रूट लेवल पर जितना आप इंक्लूसिव पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करेंगे उतना ही आपका सोशल फैब्रिक जो है वो मजबूत होगा.
0: अच्छा, अब मैं आपसे यहीं से फिर एक सवाल करूं कि अगर हम जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं जिसका जो मेजर काम है वो एक मेजर काम उनका सैनिटेशन वासा ये सब चीजें उनका देखना है, सैनिटेशन के लिए तो आपको अकलियती लोग चाहिए जो आके वो संभालें, वासा के अंदर आपको वो अकलियती लोग चाहिए, लेकिन जब उसके सुपीरियर टेयर की बारी आती है जब काउंसलर्स कौन बनेंगे और क्या बनेंगे उस वक्त नजरअंदाज कर दिया जाता है. इस सारी चीज को आप किस तरह

0: देखते हैं कि जहां पर डायरेक्ट वो काम कर रहे हैं, हम तो ऊपर की सतह पर के ऊपर की जो सतह की हुकूमतें, हम तो उस लेवल पे बात कर रहे हैं 20 से 25% के अंदर अगर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो वहां पे आप उनको एक तरह से नुमाइंदगी करने का हक दीजिए, उनको टिकट दीजिए, वो जीते ना जीते वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ से मिलने चाहिए। अब दूसरी सतह पे तो हम वहां पे आ गए कि जहां पे बाकी कामों के लिए उनकी जरूरत है, लेकिन जब ऊपर की टेयर आप स्टैब्लिश करते हैं तब आप उसमें मतलब उस तरह नहीं देख रहे उस सारी चीज को। अव्वल तो इस वक्त लोकल गवर्नमेंट्स का एक तरह से डब्बा गुल हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि आप इस चीज को किस तरह देखते हैं, क्योंकि मैं तो उसको ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे देखती हूँ कि जब आपको काम करवाना है तो फिर आपको वही नजर आते हैं, और जब काम नहीं करवाना है तो फिर आप कहते हैं कि जो काउंसलर्स हैं वो कोई और बन जाए। तो वो आपको, मुझे तो लगता है कि जो लोग सैनिटेशन को, वासा के काम को और तरसील को, पानी की शराबी को अगर समझते हैं, वो अगर इन जगहों पे आएंगे और काम करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे काउंसलर्स बन सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में?
1: देखिए, अगेन बात वहीं पर माइंडसेट की आती है
0: जी।
1: कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको कहीं पर फोर्स नहीं करता ना, बल्कि वो रोकता है कि जी आप किसी एक खास तबके को, किसी कौम को बाय फोर्स किसी एक शोबे में नहीं धकेल सकते
0: जी। ठीक है,
1: ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है।
0: ठीक है,
1: लेकिन ये सोसाइटी का रवैया है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि मैं आपके प्रोग्राम के तहत से वॉलंटियरली ये कहता हूं कि भाई जब आप सैनिटेशन की जो जॉब आप देते हैं तो आप उसमें ये जो इतना खुले दिल का मुजाहरा करते हैं कि ये सारी की सारी जॉब्स हमने जो है ना नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को दे,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना। अब जो स्टेट की कमिटमेंट है हमारे साथ एक अफर्मेटिव एक एक्शन की सूरत में हुआ है 5% जॉब कोटा,
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें आप सैनिटरी वर्कर्स भी 5% जॉब कोटे के तहत ही नॉन मुस्लिम को दें, वो 95% मुसलमानों को दें जो उनका हक है, तो हमें 5% देना जो स्टेट ने हमें की है,
0: बिल्कुल।
1: वहां पर आपकी दरियादिली इतनी ज्यादा हो जाती है
0: जी, बिल्कुल,
1: कि आप स्टेट की कमिटमेंट भी भूल जाते हैं। सिर्फ सैनिटरी वर्कर्स के लिए स्टेट की कमिटमेंट भूलनी है आपने, बाकी चीजों में आपको स्टेट की कमिटमेंट याद नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: वहां पर आप कहते हैं नहीं लीडरशिप नहीं कर सकते, वो भी तो स्टेट की कमिटमेंट है
0: जी, बिल्कुल।
1: वहां पर भी गारंटी है, यहाँ पे जहां पे गारंटी नहीं है वहां पर आप उनको दरियादिली का मुजाहरा करते हैं। तो ये सोच का मसला है,
0: सोच का
1: रियासत का मसला नहीं है।
0: नहीं देखिए, मैं तो शुरू इस प्रोग्राम के शुरू में ही आपने एस्टेब्लिश कर दिया कि ना तो ये रियासत का मसला है और ना ऐसे है कि मिसालें नहीं है, मिसालें हैं,
1: मिसालें हैं,
0: लेकिन मसला ये है कि जो मुस्तमिल चीजें हैं, देखिए आपकी रियलिटी आपके साथ है, लेकिन एक इंसान जो सुबह उठता है और उसने सिर्फ जाके सैनिटेशन का काम करना है, उसकी रियलिटी उसके साथ है और उसको उसी में जॉब मिल रही है और कहीं जॉब नहीं मिल रही, नस्ल दर नस्ल वो इसमें चले जा रहे हैं। मैं तो अब क्योंकि मेरी उतनी एज हो गई है कि मैं देख पाती हूँ कि जो हमारी विसैनिटी में सुबह सफाई करने आता था वो धेड़ उम्र का था, जिस वक्त मैं नौजवान थी और वो धेड़ उम्र का था, अब वो जगह उसके बेटे ने ले ली है, वो सफाई करने
1: से। देखिए, आपने एक बात की थी कि जी दलित जो है वो दलित रहना क्यों पसंद करते हैं
0: जी,
1: वो दलित रहना पसंद किया उन्होंने, लेकिन स्टेट की वहां पर अफर्मेटिव एक्शन देखे ना,
0: हाँ।
1: उस अफर्मेटिव एक्शन के बाद अब जो नॉन दलित है वो थ्रेट महसूस करते हैं उनकी डेवलपमेंट की वजह से,
0: बिल्कुल
1: ठीक है ना। यहाँ पर आप अफर्मेटिव एक्शन भी देने को तैयार हैं, दिया भी 5% जॉब कोटा, लेकिन सीट्स क्यों वैकेंट है उसको भी तो आप उसका जो है ना वो पोस्ट लेजिस्लेटिव स्टडी कौन करेगा
0: जी,
1: कि भाई इसके बाद क्या हुआ, इसमें कहीं बेहतरी की जरूरत है, इनको एजुकेशन कोटा दे दो, इनके बच्चों को पढ़ा के फिर जो स्टेट चाह रहा है कि यार ये जो मार्जिनाइज कम्युनिटीज हैं इनको हम कैसे जो है ना सोशियो इकोनॉमिक इनके जो स्टेटस को बेहतर कर सके, तो वहां पर एजुकेशन कोटा तो कोई देने को तैयार नहीं।
0: मेरे सामीन में यहाँ पे बिल्कुल इस बात को वाजे कर दूं कि मेरा और मुझे बिल्कुल, क्योंकि मैं इनसे पहले भी मिलती रही हूं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि हम कहीं से, हमारे कहने की मतलब ये नहीं है कि सैनिटेशन का काम किसी तरह कोई ऐसी जॉब है जो नहीं होनी चाहिए, जिन लोगों की काबिलियत उस काम की है उनको जरूर वो काम मिले, लेकिन इन लोगों की काबिलियत को कभी बढ़ा के वो जो 5% कोटा है उस तक भी तो लेकर आए कि जहां पे ये हमारे शाना बशाना ऑफिस में और जगहों पे, रेडियो पाकिस्तान में, पीटीवी में, इस जगहों पे भी काम कर रहे हों।
1: देखिये ना, मैं देखिए मोहतरमा, मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो आपके निस्फ ईमान का हिस्सा है
0: जी,
1: उसका सबब बनने वाली जो कौम है
0: जी, बिल्कुल,
1: उनके साथ इस किस्म का सोशल बिहेवियर
0: जी, बिल्कुल।
1: ठीक है ना, ये
0: तो हम सोशल बिहेवियर्स की बात,
1: सोशल बिहेवियर है ना ये जी. ये मैं अगेन कहूंगा ना, हमें स्टेट से कोई कंप्लेन है ना कानून बनाने वाले, इसलिए कि देखिए कानून हमेशा माशरे की सोच की अक्कासी करता है. तो यहां पर देखिए मुस्बत सोच वाले लोग हैं जिन्होंने इन सारी कम्युनिटीज के लिए कानून बनाया है. अब कहीं ना कहीं जो एक मखसूस सोच के लोग हैं जो इन पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देते, उसके खिलाफ हमारी जंग है.
0: बिल्कुल ठीक. अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाए खवातीन की तरफ. मुझे अभी तक, मुझे तो खैर जो अक्सरियत की जो खवातीन जो काम कर रही हैं या जो मेंबर हैं पार्लियामेंट्स की, उनमें से चंद एक के सिवा तमाम टोकन शमूलियत नज़र आती है, ख़ास तौर पे जो के अफर्मेटिव एक्शन की जो सीट्स हैं कि जहाँ पे औरतों को एक ख़ास तरह की, हर पार्टी को जब इख्तियार मिलता है कि वो अपनी इतनी सीटें जीत के आए तो इसकी बुनियाद पे इतनी औरतें वो ले ले, तो वो औरतें सारी जो हैं हमें पता है कि वो नॉन वर्किंग औरतें होती हैं, और वो औरतें होती हैं जो कि वो उन्हीं खानदानों और खानवादों से ताल्लुक़ रखती हैं जो कि पहले से सियासत में हैं. तो बाप को ना मिली तो बेटी को दे दी, लेकिन मतलब उनकी और उनका औरतों के कॉज से इतना गहरा रब्त और जुड़ाव नहीं होता. हालांकि ये सीट्स इसलिए क्रिएट की गई थी कि वो औरतें मैदान में आएं जो कि औरतों के इश्यूज को समझती हों और उस पर काम करती हों. लेकिन खैर वो तो एक वो बहस है. लेकिन मुझे जब मैं बात करती हूँ कि अकलियत की औरत, मेरी क्रिश्चियन बहनें, मेरी हिंदू बहनें, मेरी पारसी बहनें, तो मुझे ये जो टोकनिज्म है ये और ज़्यादा हाइट पर नज़र आता है कि कितनी हैं, कहाँ से आई हैं, क्या उनका वो था. और क्या, जैसे कि आपने अभी खुद ही कहा कि दलित इसलिए दलित रहे कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आप एक सियासी स्टैंड लेके आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, कितना डेवलप करेंगे आप हमें. तो हम ये देखते हैं कि अगर वो आते भी हैं तो वो अपर क्लास या जो कम से कम सोशल स्टाटा में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कोई जात पात नहीं होती, तो फिर जो अपर सोशल स्टाटा के लोग हैं वो आते हैं और वो नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जो गरीब हैं और जो पिछड़े हुए हैं वो पीछे रह जाते हैं. सो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, खासतौर पर औरतों के हिसाब से?
1: आपकी बात को मैं किसी हद तक तो इससे एग्री करूंगा, लेकिन 100% नहीं.
0: ठीक है,
1: 100% इसलिए भी नहीं कि इसलिए कि देखें हमारे मुल्क की एक तारीख रही है. आप यकीनन औरतों की सारी उनकी सियासी जदोजहद से भी अवेयर होंगी कि यहाँ पर औरतों के तहफ़ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए जितने कवानीन आए हैं वो असम्बलियों में मौजूद खवातीन ने उसके लिए जदोजहद की, और उस सिविल सोसाइटी की जो हमारी ख्वातीन की रहनुमा थी उनके साथ मिलके की. तो 100% तो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट में आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती होंगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि दो चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ. एक तो हमारे यहाँ इस चीज़ का रिवाज नहीं है कि आप किसी जो पार्लियामेंटेरियन है उसको ये कहें कि जी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई हमको प्रोग्राम का एहतमाम कर रहे हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा गैर मुनासिब सा लफ्ज़ सोच सकता है,
0: ज़रा बुरा मान जाता
1: है, ज़रा गैर मुनासिब सा लफ्ज़ है. तो उस
0: गैर मुनासिब लफ्ज़ है या बुरा मान जाते हैं, क्योंकि गैर मुनासिब तो नहीं, हम तो कहते हैं कि हम सारी उम्र सीखते रहते हैं,
1: इंसान को सारी जिंदगी जो है ना वो सीखता
0: रहता है.
1: इसी तरह कह लीजिए उनकी उस तरीके से जो है वो चीज़ों की जो है वो क्लैरिटी नहीं होती. अब मिसाल के तौर पर अगर आप किसी एक नॉन मुस्लिम खातून को
0: जी
1: बतौर नॉन मुस्लिम खातून मेंबर लाते हैं तो वो नॉन मुस्लिम खवातीन की नुमाइंदा नहीं बनती
0: जी,
1: वो इन जनरल मिनोरिटी की नुमाइंदा बन जाती है.
0: बिल्कुल ठीक.
1: तो उसकी अपनी क्लैरिटी का भी मसला है ना कि मैं खवातीन के हुकूक के लिए आई हूँ, मैं खवातीन की मखसूस नशिस्त पर मुझे पार्टी ने मुंतखब करके भेजा है, तो मैं अपनी जो अकलियत की जो खवातीन है उनके मसाइल को यहाँ पर उजागर करूँ. तो वो पूरी तमाम अकलियतों की इन जनरल बात करती हूँ, और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं और होता रहा, ऐसा ही होता रहा माजी में भी. तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो ब्रॉटअप का एक है, थोड़ा सा जो हमें एक कमी सी नज़र आती है, मेरा ख्याल है वक्त गुजरने के साथ साथ इसको कहीं ना कहीं किसी एक पराए में लाना चाहिए कि हमें ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करने चाहिए जिनका कहीं ना कहीं कोई एक क्राइटेरिया जो है वो बना लेना चाहिए, क्राइटेरिया बना लेना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है,
0: कोई बुरी बात नहीं,
1: कोई बुरी बात.
0: अच्छा, दूसरी बात ये कि बस मैं आखिरी, क्योंकि आई एम एंजॉयिंग दिस सेशन विद यू, क्योंकि इंटेलेक्चुअली मैं कई चीज़ों पर खुद भी क्लैरिटी मुझे मिल रही है, लेकिन एक चीज़ मुझे जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में सोशल स्टाटा में लोग नीचे आते थे, यानी क्लास में जो नीचे आते थे जिनके पास कम پیسے ہیں ان کی بھی نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے ان کو سیٹس ان کی مقرر کر دی گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ادھر سے بھی جو غریب ہے وہ بھی کبھی نہ کبھی آ سکتا ہے اور اس کا حصہ بن سکتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ, ہاں وہ بعد میں آ کے امیر ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کا حصہ ملے گا. لیکن یہاں پہ مجھے وہ نظر نہیں آتا. یہاں پہ مجھے چاروں طرف یہ نظر آتا ہے کہ اکثریت میں بھی ایلیٹ کلاس ہے وہ آتی ہے, اور جب مائنورٹی سے بھی لوگ آتے ہیں تو وہ ایلیٹ کلاس سے آتے ہیں. سو یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے. اب آپ ایکسیپشنز پہ مت جائیے گا, کچھ ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو ایکسیپشنز ہو.
1: ایگزامپل
0: سیٹ ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ دو چار لوگ, میں نام لے دیتی ہوں ان کے, نہ لیں ہم نام تو بہتر ہے, لیکن تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کیا کام کریں گے؟
1: نہیں چلے ان کے نالے, میں اپنا نام لے لیتا ہوں ان کے نالے.
0: سر آپ کا تو نام ہے, آپ کا نام ہے اور دو چار لوگ ان کا نام ہے, آپ بتائیے.
1: نہیں دیکھیں میں نے
0: اس کے لیے کیا جدوجہد, چلے میں پیپلز پارٹی میں کہہ
1: لوں. دیکھیں اس کے لیے جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پروسیس میں آنا ہوگا.
0: ٹھیک ہے,
1: آپ کو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہونا ہوگا, آپ کو سیاسی عمل میں آنا ہوگا, سیاسی جماعتوں میں آنا ہوگا. مینورٹی کمیونٹی کی پرابلم یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے اس کی دوری بہت زیادہ ہے,
0: کیونکہ وہ بہت غریب ہیں, ان کو کام کرنا پڑتا ہے.
1: غریب کوئی, دیکھیں کوئی سیاسی جماعت,
0: جی
1: کوئی سیاسی جماعت کسی غریب کو دھکیلتی نہیں ہے.
0: جی ٹھیک ہے,
1: کہ یا تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی وہ غریبوں کو جو ہے وہ ان کی انڈکشن پہ کوئی پابندی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جتنا میرا تھوڑا بہت نالج ہے, میں بغیر نام لیے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے ملک کی کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس کے ہاں اس قسم کی کوئی پابندی ہو یا وہ آپ کا فائنینشیل سٹیٹس دیکھ کر آپ کو ممبر شپ دیتی ہو.
0: ٹھیک ہے,
1: تو
0: لیکن آپ کا خیال ہے کہ یہ
1: سیاست تو چلتی ہی غریبوں پر ہے,
0: تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر سیاسی پروسیس کا حصہ بنے تو وہ ضرور آگے آ سکتے.
1: بالکل آ سکتے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وہ دنیا بھر کا اصول یہ ہے. دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, ایک آخری بات کوئکلی کر لیتے ہیں, کوئکلی بات کر لیتے ہیں. جیسے لندن کا میئر ہے محمد صادق, محمد صادق بھی تو یہاں سے پاکستان سے گئی ہوئی ایک فیملی تھی نا, اور وہ کوئی بہت بڑے امیر نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, اور وہاں کے مقامی بھی نہیں تھے, اور اس سوسائٹی میں بالکل نئے تھے, ایکسیپٹنس کا ایشو وہاں پر بھی تھا, ٹھیک ہے نا, آئیڈیل سچویشن نہیں تھی, کمفرٹ زون نہیں تھا, لیکن انہوں نے اس پروسیس میں حصہ لیا, اس پروسیس کا وہ حصہ بنے, پھر جا کر وہ اس پوزیشن میں آئے کہ وہ لیڈ بھی کر سکتے ہیں, انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں.
0: بالکل ٹھیک. تو اسی پازیٹو نوٹ کے ساتھ آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا. مجھے تو یہ بہت ہی ایک خوش آئند جو ہے خواب نظر آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے, گو کہ میں اپنے تجربے کے مطابق جو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم اس پروسیس کا حصہ بن جائیں تو لیڈرشپ جو ہے بقول اینتھنی صاحب کے اتنی دور نہیں ہے, لیڈرشپ بھی ملے گی. اور اسی کے ساتھ آج اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: ございました。
1: सुनते रहिए FM 101 101 101

0: This is FM 101.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: This is FM 101.
1: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?

शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि ज़रई अजनास के लिए बैन अल-अक़वामी मंडियों तक रसाई को वसत देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को गैस लॉसेस में कमी करने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने की हिदायत की है। हुकूमत और हिस्ब इख्तलाफ के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर आज इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान ने मदीना में तैयबा पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर हौसी बागियों के हमले की शदीद मजम्मत की है। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान ने मलेशिया के लिए चावल की बरामदात बढ़ाने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। रवां साल दिसंबर तक मलेशिया के लिए पाकिस्तानी चावल की बरामदात में मजीद 70,000 मेट्रिक टन का इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी चावल की इजाफी बरामदात के हुसूल पर मुतालिका टीम की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि 70,000 मेट्रिक टन इजाफी पाकिस्तानी चावल की बरामद किसानों की खुशहाली और कौमी मईशत के लिए एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ज़रई अजनास के लिए आलमी मंडियों तक रसाई में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिशों से बरामदात के जरिए माशी तरक्की के हदफ की जानिब अपना सफर जारी रखेगा।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: I love FM 101.

ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रजा की। और मेरी आवाज़ क्यों नहीं उस तरह की जा रही जिस तरह की मैं चाह रहा हूँ जाए। चलें इसको हम देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है।

ओके जी। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, इसलिए कि इस टॉपिक पे हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना दिल को सुकून देता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हर गलती माफ़ी के काबिल नहीं होती। तो आज हम आपसे पूछने वाले हैं कि आप किस किस्म के इंसान हैं, कैसे इंसान हैं आप? अक्सर हम कह देते हैं ना, यार तू किस किस्म का इंसान है। तो हम जानना चाह रहे हैं कि आप किस किस्म के इंसान हैं, कि क्या आप लोगों को जल्द माफ़ कर देते हैं, या एक बार दिल टूट जाए तो दोबारा एतमाद करना मुश्किल हो जाता है। सो बेसिकली हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप लोगों को जल्द माफ़ कर देते हैं, या बात दिल में रखते हैं, या सोचते हैं कि यार इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये गलत किया, मैंने तो इसको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करना, या आपका जो माफ़ीनामा है, जो माफ़ी का एक आपकी वो पावर है, वो आप में ऐसी पावर है कि आप हर किसी को माफ़ कर देते हैं और आपने माफ़ करना सीखा हुआ है। वैसे तो माफ़ करने वाले हम कौन होते हैं, माफ़ करने वाली वो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन दुनिया में बातकाज़ा है शरीयत, हम चलते फिरते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं। तो उसमें हम कभी किसी से नाराज़गी भी हो जाती है, कभी कोई हमारे साथ नाराज़ हो जाता है, कभी हमारे साथ कोई धोखा कर देता है, कभी हमारे साथ कोई ऐसा काम कर देता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते किसी से, कि ये बंदा मेरे साथ ये काम कर देगा। सो इस तरह का सीन होता है हमारे साथ। सो अक्सर हम माफ़ कर देते हैं जल्दी, यार चल यार कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अक्सर हमारे जो कोलीग्स होते हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, या हमने जो अपने अपने पास हमारी जो लेबर होती है उनसे कोई मसला हो जाए, तो हम उनको माफ़ कर देते हैं, चल यार कोई बात नहीं। वो एक हम एक सुनते हैं ना लाइन ऑफिस में, हम भी ये कहते हैं कि यार जो बंदा काम करता है गलती उसी से होती है, तो जो बंदा काम कर रहा हो फिर गलती तो उसी से हो ही जानी होती है, गलती के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि काम भी बेचारा वही कर रहा है। अब जो काम ही नहीं कर रहा उससे गलती कैसे होगी? जो काम नहीं कर रहा उससे गलती कैसे होगी? तो आपने बताना है कि क्या आप जल्द माफ़ कर देते हैं, या बात को दिल में रखते हैं, या नहीं माफ़ करते, या दूसरा मौका नहीं देते। 04221100101 हमसे रबते का नंबर है, आप कॉल कीजिएगा, और इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं 4471 पर, और आपके मैसेजेस हमें जैसे ही मिलेंगे हम उनको प्रोग्राम में शामिल कर देंगे, और मैसेजेस बल्कि हमें मिल भी रहे हैं और मैसेजेस हमें आ भी रहे हैं, और हमें हसनैन सुन रहे हैं। अली भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, सुनते रहें आप मुझे और इन्जॉय भी करते रहें। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं, इस गाने को एंजॉय करते हैं, और मैं देखता हूँ कि आवाज़ को क्या है, क्या है आवाज़ को। Keep listening FM 101 Radio by Sun Lahore. This is RJ Ali Raza.

ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज है आरजे अली रजा की। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101। आपसे मेरी मुलाकात रहने वाली है ठीक 7 बजे तक। आप और मैं साथ होंगे और मुझे ऑफर कॉल्स आ रही हैं 04221000101 पर। सबसे पहले मुझे कॉल आई हमारा की, हमारा कहती है मैं आपको सुन रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, और कहती मैंने वोट नहीं दिया क्योंकि मैं फेसबुक यूज ही नहीं करती। मैं कहा बहुत अच्छा करती हूँ आप। वेल थैंक यू सो मच, हमारा बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारा ने हमेशा की तरह जीशान रोखड़ी की आवाज़ में गाने की फरमाइश की।

हमें ऑफर कॉल आई जी शमीमा अपी की। थैंक यू सो मच शमीमा अपी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और शमीमा अपी ने सबको सलाम भेजा, कहती मैं बनी क्यों ना पहली कॉलर, मैं कहा बिल्कुल भी नहीं बनी। थैंक यू सो मच शमीमा अपी, बहुत शुक्रिया आपका। और शमीमा अपी ने गाने की फरमाइश कर दी कि ढोला तू फुल गुलाब दा, है। मैं क्या जी ढोला तू फुल चमेली दा नहीं सही वैसे। या सूरजमुखी दा, मैं ढूंढता हूँ ये गाना, गाने को प्ले कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमें मैसेजेस भी मिल रहे हैं और मैसेजेस ऑन एयर भी करने हैं, और आपसे सवाल हमने या सूरजमुखी दा, मैं ढूंढता हूँ ये गाना, गाने को प्ले कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमें

सुन रहे हैं नजीर कोसो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नजीर कोसो सुनने के लिए। सोहबतपुर बलोचिस्तान से सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड जी, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मलाखेल सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब, हम भी आपको वेलकम कहते हैं। खुशामदीद कहते हैं जी, आयानू कहते हैं। कमल नाथ सुन रही है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी आयानू। आरजे अली रजा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहती हैं जी नाइस, जबरदस्त शो, कमाल शो, थैंक यू सो मच, है वाकई इना कुछ है वाकई ये तारीफें सारी सच्ची है ना थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कमल नाज। फातिमा सुन रही है, मैं आपको सुन रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम सुन रही हैं, और वाल्टन लाहौर से सुन रही हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नईम टेलर सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अली रजा भाई, मैं आपको लाहौर से सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच। गुड आरजे, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। साजिद अली हैं, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया।

अच्छा, अक्सर ना हमारे लिए माफ़ करना किसी को आसान नहीं होता। हम उसको एक ना अना का मसला बना लेते हैं और हम कहते हैं यार नहीं, इसको मैंने माफ़ नहीं करना, इसने मेरा दिल दुखाया है। और अक्सर ऐसे होता है कि हम उस बंदे को माफ़ नहीं कर रहे थे जिसने बार बार बार बार हमारा दिल दुखाया होता है, और हम परेशान हो जाते हैं, हम एक अलग सी कैफियत में चले जाते हैं, एक अलग सी चीज़ हमारे जहन में चल रही होती है कि यार नहीं, इस बंदे को मैंने माफ़ नहीं करना, इसने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, मुझे 10 दफ़ा धोखा दिया, 10 दफ़ा ये बात की, 10 दफ़ा झूठ बोला। और अक्सर ना अच्छा मेरी तो अक्सर ना लड़ाई या नाराज़गी इस बात पे थी, यार झूठ ना बोला करो। कोई भी बात है, आप कहीं पे भी हो, कोई भी आपने वादा किया है, वो आप वादा इस तरह से करें कि जिस तारीख को आप पूरा कर सकें। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि किसी ने मुझे कुछ कुछ चीज़ भिजवानी हो, कुछ देना हो, या कोई कुछ मैं ऑर्डर करूँ कि यार फलां चीज़ मुझे आपने भिजवानी है, तो मैं कहता हूँ यार मेरी बात सुनो, अगर आप मुझे कह रहे हो ना कि मैंने 5 तारीख को भेजनी है, आप 5 को मत भेजो, आप 7 को 8 को 10 को भेज दो, लेकिन जो डेट आप कमिट करो ना, उस डेट को आपने वो चीज़ मुझे भिजवा देनी है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर कोई बंदा वो उस डेट पे, उस तारीख पे, जिस तारीख का वादा हो, वो काम ना करे, तो वो बंदा मेरे दिल से उतर जाता है, मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ, फिर मैं जल्दी माफ़ी नहीं करता। अच्छा, अक्सर लोगों को आपने सुना होगा कि यार मैंने माफ़ तो कर दिया लेकिन मैं बात भूला नहीं हूँ। ये बहन भाई अक्सर कहते हैं मैं तेनू माफ़ तो करता लेकिन मैं गल नहीं भूलिया। और हमारे दोस्त भी अक्सर कहते हैं यार मैं बात तो नहीं ना भूल सकता लेकिन मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, चलो चल तेनू माफ़ किया लेकिन मैं गल नहीं भूलनी। फिर कहीं ना कहीं हमारे जहन में वही बात चल रही थी, फिर वो एक बदले की लहर भी चल रही होती है कि मैं बदला लेना हूँ। मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, अली भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, एंजॉय करते रहें आप मेरे साथ साथ रहें मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच। ये मुस्तफ़ा वो नहीं है, हमारे मुस्तफ़ा नहीं है, ये आरजे नहीं है, ये कोई और मुस्तफ़ा है। साजिदा सुन रही है लाहौर से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और हमें इसके अलावा कौन सुन रहा है फेसबुक पे, कौन कौन सुन रहा है, साजिद अली हैं, थैंक यू सो मच साजिद, बहुत शुक्रिया। हम तो माफ़ कर देते हैं, मोहम्मद नईम टेलर कह रहे हैं। अच्छा जी यार, बहुत बड़ा दिल है आपका भाई, बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छा करते हैं आप, माफ़ कर देना चाहिए यार, नहीं इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ करना आना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, इतने सख्त नहीं बनना चाहिए। आबिद हुसैन सुन रहे हैं जी फ्रॉम लंडा बाजार, वाह वाह, कहते हैं मेरे साथ तैयब सरायकी आपको सुन रहे हैं, सरायकी सॉन्ग लगा दें, अल्लाह सही मेरे सबरा को पल लाई। ठीक है जी, लगा देते हैं। माफ़ करने में कभी देर ना करो और बदला लेने में कभी जल्दी ना करो, माफ़ करना बहादुरी की अलामत है, कमल नाज कह रही हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, इतना अच्छा आपने कह दिया, कहाँ से आपने ये लाइन कहाँ से उठाई है, चैट जीपीटी से उठाई है। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।

दिस वन, ताहिर की आवाज में ये गाना चलाते हैं, इस गाने पे इंजॉय करते हैं। मुझे ये गाना पता नहीं क्यों पसंद है, मैं हमेशा कहता हूँ मजे का गाना यार, मजे का म्यूजिक बड़ा जबरदस्त है और आवाज की तो क्या ही कहने। सो हियर वी गो विद द सजना, सजना दा बूहा। आइए इस गाने को एंजॉय करते हैं, मैं और आप साथ साथ 5:30 हुआ चाहते हैं।

ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रजा की। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फानून 101 विद आरजे अली रजा। आपसे मुलाकात रहती है हर जुमे की शाम 5 से लेकर 7 बजे तक। मुझे शमशाद सुन रहे हैं और अभी मुझे शमशाद की ऑफर कॉल आई। कहते हैं अली भाई मज़ा आ रहा है आपको सुन के, इंजॉय कर रहे हैं, कोई गाना मेरे नाम कर दें। तो बिल्कुल जी, गाना आपके नाम कर देते हैं। शमशाद साहब, आप हमें पहली दफ़ा सुन रहे हैं और आपने जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से फरमाइश की है, तो गाना तो आपके नाम करना फिर बनता ही है।

देन यू हैव राशिद विदास. राशिद कहते हैं, अली भाई आपको सुन रहा हूँ कसूर से और मज़ा आ रहा है. थैंक यू सो मच राशिद, बहुत शुक्रिया. हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हमें सुनते रहते हैं और मैसेज भी भेजते रहते हैं कि भाई मैं आपको सुन रहा हूँ. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. कमलनाज हैं, कमलनाज क्या कहती हैं, क्या इतनी हाय अल्लाह जी, क्या मैं इतनी समझदारी की बात नहीं कर सकती. नहीं नहीं, आप बात कर सकती हैं, आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है इस बात का. मुझे लगा, मैंने तो वैसे पूछा है एहतियातन कि आपने ये बात खुद की है या मुझे लगता है आपने चैट जीपीटी से या एआई से पूछा है. बरकत रमदानी हैं, थैंक यू सो मच बरकत साहब हमें सुनने के लिए और बलोचिस्तान से हमें सुनते हैं, प्यार देते हैं, मान बढ़ाते हैं, हमेशा हमारे साथ साथ रहते हैं. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और आज का हमारा जो टॉपिक है भाई, टॉपिक बता दें, आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या आप जल्दी माफ़ कर देते हैं या वक्त लगाते हैं माफ़ करने में. हमें उस्मान मुगल ने ऑफर कॉल की, कहते हैं भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ और मैं तो कहते एक मिनट नहीं लगाता माफ़ करने में, मैं माफ़ कर देता हूँ. कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह दे, मैं फिर माफ़ कर ही देता हूँ. मेरा दिल इतना नर्म है, इतना बड़ा दिल है मेरा. मैं क्या जी, वाह क्या बात है जी, क्या बात है आपकी, क्या बात है हमारे लिसनर्स की.

0: अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था डिजिटल पेमेंट्स के हवाले से। जो हम अपने अकाउंट्स में पेमेंट्स रखते हैं, और अब आजकल किसी भी शॉप में जाते हैं और कुछ भी हमने 100 रुपये का कुछ खरीदा या 200 रुपये का खरीदा या 1000 का या 50,000 का या कितने का भी, तो हम कहते हैं यार हम आपको QR कोड बताओ, हम पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो रुझान है ये बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। और मेरी अक्सर कुछ शॉपकीपर से भी बात हुई और मैं उनकी बातें सुन रहा था और बड़े गौर से सुन रहा था। कहते जी कस्टमर आते हैं और हमारे पास 50-60% कस्टमर ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि जी QR कोड बताएं या अकाउंट नंबर बताएं, हम आपके अकाउंट में भेज देते हैं। तो ये रुझान आपको क्या लगता है, ये एक अच्छा रुझान है? पर मुझे तो ये रुझान कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बेहतर लगता है। कैश अपने पास नहीं रखते आप, आपके अकाउंट में पैसे हैं, मोबाइल से लिंक है आपका अकाउंट, आप अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहे हैं, QR कोड स्कैन किया और पेमेंट पैसे वो के और जिस बंदे को आप पेमेंट कर रहे हैं उसको जब आप कैश में देंगे तो पहले वो कैश संभालेगा, वो अपने अकाउंट में जमा करवाएगा, ऐसे सीधा अकाउंट में चले जाते हैं और वो सेफ भी रह जाते हैं, वो जल्दी यूज़ भी नहीं होते। और जो पैसे हमारी जेब में होते हैं वो तो फिर जल्दी यूज़ हो जाते हैं ना, वो फिर हमारा दिल कर रहा होता है ऐसे भी ला दें, ऐ भी कर लें, ऐ भी कर लें। सो क्या आप भी डिजिटल पेमेंट्स करते हैं? क्या आप भी अकाउंट के थ्रू मोबाइल से पेमेंट कर देते हैं और कहते हैं जी बस ठीक है, ये जो 100 रुपये की चीज़ ली है ना इसकी, यार ये पकड़ो QR कोड स्कैन किया और ये लो इसकी पेमेंट। सलमान सुनने वाले भी मैं आपको सुन रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी सलमान साहब, आप मुझे सुन रहे हैं और साथ आप इन्जॉय भी कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम ये गाना चलाएंगे, यस दिस वन। गाने ज़्यादा चलाते हैं हम इसलिए क्योंकि ड्राइव टाइम है और ड्राइव टाइम में गाने ज़्यादा चलाने चाहिए ऐसा सुनने में आया। Enjoy this beautiful track, अली सेठी की आवाज है और इस आवाज में झूमने का दिल कर रहा है।
1: दिनक दिन मैं दिनक दिन भूले सब, दिनक दिन जले दिनक दिन बने, दिनक दिन हारे हम तो, दिनक दिन दिए दिनक दिन तोड़े, दिनक दिन
0: अली सेठी का साथ दे रहे हैं अली हमजा और वकार एहसन।

ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुने एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज है आरजे अली रजा की। आप सुने प्रोग्राम फन ऑन 101। आपको मेरा साथ रहता है हर जुमे की शाम 5 से लेकर 7 बजे तक। आज का हमारा खूबसूरत सा साथ जारी और सारी है। हमने आपसे सवाल पूछा है कि क्या आप जल्द माफ कर देते हैं या बात को दिल में रखते हैं, जल्दी माफ नहीं करते।

टॉपिक के हवाले से हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, हमें कॉल्स भी आ रही हैं, हमें बताया जा रहा है कि हम जल्दी माफ़ कर देते हैं या हम कभी नहीं माफ़ करते, या हम किसी की गलती पे उसको जल्दी माफ़ नहीं करते, हम बहुत गुस्सा होते हैं। कुछ इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। मुझे एक दो लिसनर्स ने कहा है कि हम तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते, बड़े वो सख्त हो चुके हुए हैं लिसनर्स हमारे। क्या ऐसी बात है? कुछ लिसनर्स ने कहा जी कि हम ऑन एयर आके बताएंगे कि हम क्या करते हैं, माफ़ करते हैं कि नहीं करते। मैं कह अभी ठीक है, थोड़ी सी हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। और बात हम इस टॉपिक पे करेंगे कि क्या सोशल मीडिया मालूमात का ख़जाना है या ज़हनी दबाव की वजह। तो ये बड़ा सीन चल रहा है, मैं मेरे देखने में आया है कि सोशल मीडिया एक कंपटीशन बन गया है कि मैंने वीडियो पोस्ट की है या मैंने कोई तस्वीर लगाई है, उस पर कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं, मुझे किस तरह की पिक्चर बनानी चाहिए जिस पे लाइक्स ज़्यादा आएँ, जिस पे कमेंट्स ज़्यादा आएँ। तो ये एक कंपटीशन बहुत बढ़ गया हुआ है, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उसमें एक आप कह लें कि एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो चुका है, और उसके बायस ज़हनी दबाव का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। और ज़हनी दबाव हमारे यंगस्टर्स में अगर आ जाए तो वो अपने जहन को कैसे काम करेंगे, कैसे वो बेहतर काम करेंगे, कैसे वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। जब हमने सोशल मीडिया को यूज़ करते रहना है, सोशल मीडिया पे रहना है और ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिसका हमें कोई प्रोडक्टिव फ़ायदा नहीं है, कोई उस पर कोई हम ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे कि जिसका हमें कोई फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, कोई हमारा फ्यूचर उससे बड़ा ब्राइट होने वाला है। तो हमारा एक कंपटीशन रहता है जी, हमने तस्वीर अपलोड की तो उस पर लाइक्स कम आए, कमेंट्स कम आए, उस पर फिर हम ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, या फलां बंदे ने मेरी पोस्ट को लाइक नहीं किया, उसकी पोस्ट को लाइक कर दिया, उसकी पोस्ट पर जाके कमेंट कर दिया, ये एक कंपटीशन है। और दूसरा, हम सोशल मीडिया पे इतना टाइम ज़ाया करते हैं कि अगर हम वही वक्त हम किसी किताब पढ़ने में लगाएं, किसी ऐसे काम में लगाएं, किसी हेल्दी एक्टिविटी में लगाएं जो हमारे लिए, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर हो सके, सो ऐसा काम हम नहीं करते। हम रील्स देखते हैं जी सोशल मीडिया पर, वीडियोज़ देखते हैं, बशमूल मेरे, मैं भी अक्सर जब मोबाइल पकड़ लूँ ना तो मैं भी रील्स देखना शुरू हो जाता हूँ, ना जाने क्यों। फिर जैसे ही मुझे याद आता है ना कि नहीं यार, इस चीज़ में मुझे नहीं है टाइम अपना ज़ाया करना, तो मैं फिर उसको बंद कर देता हूँ। मेरी भी कोशिश होती है उसको मैं बंद कर दूँ और उसको मैं ना खोलूँ, लेकिन फिर वो एक ऐसी आदत है, एक ऐसा तसलसल बन गया हुआ है कि हमने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है और वीडियोज़ देखनी है या कुछ पोस्ट कर देनी है या कुछ किसी की पोस्ट पे जाके कमेंट कर देना है या किसी की वॉल जाके देखनी है कि इसने क्या पोस्ट किया, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये भी हमें बड़ी टेंशन होती है कि फ़लाँ की ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल, फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ को क्या करना चाहिए, फ़लाँ को कैसे बोलना चाहिए, तो इस चीज़ की भी हमें टेंशन रहती है। और ये एक बहुत बड़ी टेंशन है वाकई, और इसकी वजह से भी हमारी जो यंगस्टर हैं वो ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। तो इस चीज़ को कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से, अपनी रूटीन से इस चीज़ को माइनस करें, इस चीज़ को कम करना शुरू करें। आज अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूटीन बन जाएगी, और पॉजिटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें, किसी के बारे में नेगेटिव ना सोचें, किसी के बारे में नेगेटिव काम ना करें, किसी के बारे में बुरी बात ना करें, अच्छा सोचें, कोशिश करें कि आप अच्छा सोचें। आप ये ना सोचें कि फलां आपके बारे में क्या सोच रहा है, यार आप अच्छा सोचें। तो जब आप अच्छा सोचते हैं, आप अच्छा करते हैं, तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। 04-2111-0011 हमसे रबते का नंबर है। 6 बजे के बाद आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। हिदायत सलाराजी हमें सुन रहे हैं जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम कराची। वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम लाहौर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।

कमल नाज कहती हैं कि जी रात की हथेली पर चांद ने कुछ ख्वाब रखे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें, कुछ अनकहीं बातें, और मैं खामोश बैठी अपने दिल से पूछती रही, क्या सुबह कभी मेरे ख्वाब भी लौटाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। अच्छा जी, गाना है जी मेरे पास, एक गाना भी चलाते हैं और हाँ गाना चलाते हैं, गाने को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, 101 के साथ साथ रहिएगा। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे कहते हैं RJ अली रजा।

0: There's only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रजा की और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101। 5:57 हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ही हम इस्लामाबाद जाएंगे और न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद लोड कपे वापस आएंगे और आपकी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। हमें ऑफर कॉल आई जी हनीफ ड्राइवर की। हनीफ साहब कहते हैं कि लोग मौके पर बस कहते हैं माफ़ी मांग लेते हैं लेकिन माफ़ नहीं करते, दिल में रखते हैं। ये कहते कुछ लोग माफ़ी मांगते ही नहीं हैं, उनसे माफ़ी मंगवानी पड़ती है। ठीक हो गया हनीफ साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और 04221100111 हमसे रब्ते का नंबर है, आप भी कॉल कर सकते हैं। आज हमने आपसे पूछा है, क्या पूछ लिया यार हमने आपसे, आपको पता है हमने क्या पूछा? हमने पूछा क्या आप जल्द माफ़ कर देते हैं या दिल में बात रखते हैं, नहीं माफ़ करते। हमें अहमद सुन रहे हैं भाई, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपके साथ साथ हूँ, थैंक यू सो मच अहमद, बहुत शुक्रिया। और हमें सुन रहे हैं जी, हमें फैसल सुन रहे हैं सियालकोट से, थैंक यू सो मच फैसल, बहुत शुक्रिया। बाबर सुन रहे हैं हमें लाहौर से, अली भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। राशिद आगे हैं एक बार फिर कसूर से, अली भाई गाना मेरे नाम भी कीजिएगा, करते हैं जी, अगला गाना आपके नाम कर देते हैं राशिद, ठीक है।

जितने ही लोग हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं ना, उनको मैं कहूँगा कि हैव अ सेफ ड्राइव, ध्यान से गाड़ी चलाइएगा, लाइन और लैन की खिलाफवर्जी मत कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ड्यूरिंग ड्राइव। और जब भी आपने ड्राइव के लिए घर से निकलना है तो अपनी गाड़ी का, अपनी बाइक का पेट्रोल, उसका ऑयल, ये सारी चीज़ें चेक करके फिर आपने निकलना है। और ड्यूरिंग ड्राइव अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अभी हम जा रहे हैं जी न्यूज़ ब्रेक की जानिब, तो आपने कहीं नहीं जाना, 101 के साथ साथ रहना है। मिलते हैं आपसे न्यूज़ ब्रेक के उस पार, सुनते रहिए FM 101।

0: आपने FM 101 ट्यून किया।
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: I love FM 101.

0: Okay, dear listeners, welcome back once again. आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू. 6:03 हो गए हैं और आपको मेरा साथ रहने वाला है ठीक 7 बजे तक. और हमारा शो है, हमारा बहुत ही प्यारा शो है. यार अपने शो की तारीफ खुद करनी चाहिए, वैसे क्या ख्याल है? अपने शो की तारीफ, इंसान को अपनी तारीफ करनी चाहिए, अपनों की तारीफ करनी चाहिए जो आपके साथ रहते हैं, जो आपके साथ सारा दिन रहते हैं, जो आपके कॉलीग्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके घर वाले हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं. तारीफ करनी चाहिए यार, तारीफ बहुत ज़रूरी है. मैं अक्सर कहता हूँ तारीफ बहुत ज़रूरी है, किसी की भी हो. लोग किसी की तारीफ़ करते हैं ना तो वो एक तो मुस्कुराहट होती है उस बंदे के चेहरे पर जिसकी हम तारीफ़ कर रहे होते हैं, और दूसरा उसके दिल में आपकी कदरों जो कीमत है ना, वो कदरों कीमत आपकी बढ़ रही होती है, वो आपसे मोहब्बत करने लग जाता है. 04-2111-0011 हमसे रबते का नंबर है. लाइव कॉल का सिलसिला हमने ऑन कर दिया है. आपसे सवाल पूछा है कि आप बहुत जल्द माफ़ कर देते हैं या बात को दिल में रखते हैं या नहीं माफ़ करते जल्दी. देखते हैं किसने हमें पहली कॉल की है, किसने हमें दिल से याद किया. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. रिमशा
1: जी? बिल्कुल.
0: रिमशा ने हमें याद किया है और रिमशा ने पहली कॉल की है. रिमशा आपको वेलकम कहते हैं.
1: थैंक यू. आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, पहले से बेहतर हूँ.
1: अभी आपने तारीफ की बात की, वाकई ऐसे सही तारीफ करनी चाहिए ताकि इंसान वो खुश, अगला बंदा खुश भी हो जाता है और इंसान का टैलेंट भी बढ़ता है कि हाँ अगले बंदे ने मेरी तारीफ की है, मैं इससे और काम करूँ.
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी. रिमशा
1: जिंदगी में जरूरी होती है, आगे बढ़ने के लिए भी जरूरी है.
0: बिल्कुल ऐसे ही. आज के टॉपिक पे आप क्या कहेंगी?
1: टॉपिक पे मैं यही कहूँगी भाई, मैं माफ कर भी देती हूँ, माफी मांग भी लेती हूँ.
0: चले ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं,
1: लेकिन मैं उन लोगों को जल्दी माफ नहीं करती जो मतलब बार बार इंसान का दिल दुखाए, बार बार वही काम करे जिससे इंसान का दिल बार बार वो दुखे. उस इंसान को माफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जबान से उसे जबान से कह देते हैं इंसान के मैं ठीक है तुम्हें माफ कर दे, लेकिन दिल से नहीं कर पाता.
0: अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं आप ऐसे काम करती क्यों है कि आपको माफी मांगनी पड़े?
1: मैं अच्छा जी.
0: हाँ जी.
1: लेकिन भाई ये है कि ना भाई, मैं अगर कोई मतलब कि मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हो रही होती है ना, तो मैं फौरन से माफी मांग लेती हूँ कि मुझे माफ कर दें, और मैं माफी जल्दी कर भी देती हूँ और माफी मांग भी लेती हूँ. मैं ऐसे काम करती भी हूँ तो मैं माफी मांग लेती हूँ.
0: चले चले, ये तो बहुत अच्छा करती
1: हूँ. अगर ना भी हो तो भी कर लेती हूँ, माफी मांग लेती हूँ.
0: बहुत अच्छा करती हूँ, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा करती हूँ
1: जी. बिल्कुल, क्योंकि अच्छी हूँ ना मैं आपकी तरह.
0: अच्छा वाकई? मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ फिर.
1: मैं अच्छी हूँ ना.
0: चले चले फिर, ठीक है रिमशा, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए. जी जी.
1: और मैं जाते जाते रजा भाई शहजाद अंकल बर्फी और अंकल मारिया पी अनिल आपकी साजदा से देखा और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत सलाम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा.
0: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. ये थी हमारे साथ रिमशा, हमारी पहली कॉलर बन गई थी और कहती मैं माफ़ कर भी देती हूँ, माफ़ी मांग भी लेती हूँ. चले ये तो आप बहुत अच्छा करती हैं. अस्सलाम वालेकुम कॉलर
2: जी. बिस्मिल्लाह.
0: आरजे गुलाम अली जवेद साहब. गुलाम अली जवेद,
2: वो क्या लगे यार, वाकई हो ना गुने होने वाली गल्ला हो रही है.
0: गुलाम अली जवेद ही हां, मैं गुलाम अली जवेद ही बोल रहा
2: हूं. देखो अली अली जो है ना.
0: हाँ जी, हाँ
2: वो गुलाम अली अली रजा
0: साडे उस्ताद ने. हो जी साडे उस्ताद ने, तुसी उना दा नाम लिया ते मैं कहना वा के है मेरा खून वध गया को 2-3 सिर.
2: बड़ी गल है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह.
0: और सुनाओ फिर, बर्फियां बर्फियां दा सीजन वैसे सही आ रहा हुन?
2: हां बिल्कुल जी, सीजन आ गया अली रजा
0: दा. हां जी जी
2: बिल्कुल आ गया.
0: टॉपिक पे क्या कहेंगे?
2: वन वन ते यार करनगे, असी आवांगे बर्फी ला के.
0: किसी ने किसी को भी नहीं पूछा?
2: नहीं
0: नहीं, सालगिरह बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त सालगिरह हुई है. अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे मुझे टॉपिक पे बताएं ना, टॉपिक पे बताएं फिर हमारे पास.
2: देखो अली रजा भाई, माफ से बंदा कर ही देंदा. एक ना जिवें कहिंदे कवाड़ी दा फट मिल जांदा, जबान दे फट नहीं मिलदे.
0: अच्छा
2: जे बंदा माफ से कर ही लैंदा ते बाकी ओ गल नहीं लैंदी जिहड़ा असल दिल दे विच आंदा वी दिलो इक सुनना ते प्यारे आका दी माफ कर देना ते माफी ते ओ हुंदी ना गल्ला हो जे ते कोई बंदा नुकसान ही इन्ना कर लवे ते बंदे चार धणा भरा जोड़े जाण नु माफ कर.
0: बिल्कुल
2: माफ कर दिता जी.
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल.
2: फिर ओ गल ओ नहीं रहंदी ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਪਿਛਾਹ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ, ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੈਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਾਹ ਫੜਾਉਣ ਆਇਆ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੱਪ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਮਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਤਾਂ ਮੰਗਣੀ ਆ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ।
0: ਮਾਮਾ ਅਕਸਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੋੜਤਾ।
2: ਗਲਤੀ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਲੜੀ ਆ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ
0: ਜੀ, ਬਹੁਤ
2: ਸਾਜਦਾ ਧਿਆਨ ਆਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵਾਂ ਮਾਰਾ ਬੇਗ ਸਾਡੇ ਸਲੀਮ ਟੇਲਰ ਰਾਜਾ ਭਾਈ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
2: ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਂ ਜੀ
0: ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਾਲਰ।
3: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਨੋ ਬਾਨ ਕੇ ਸਭੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਸਤਾ ਮੁਸਕਰਾ ਤੋ ਵਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਸ਼ਮੀਮਾ ਵੀ, ਕੈਸੀ ਹੈ ਆਪ? ਠੀਕ ਹੈ,
3: ਅੱਲਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ।
0: ਚਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ।
3: ਆਪਕਾ ਸ਼ੋ ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਾ ਕੈਸੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਲੇ ਬਤਾਏ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ?
3: ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ।
0: ਹਾਏ ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताएं कि टॉपिक पे क्या कहेंगी आप?
3: टॉपिक से मैं ये कहूँगी कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, वो कहते हैं कि किसी चीज का जख्म लगा हो ना तो वो मिट जाता, कभी ना कभी ठीक हो जाता है।
0: ठीक है,
3: लोगों की बातें ऐसी होती है कि वो दिल को ना ऐसी लगती है कि वो जख्म जब भी वो इंसान के इंसान सुने, उसकी आवाज सुने, उसकी बात हो तो वो जख्म ताजा हो जाता
0: है। तो ये भी बात
3: ये है कि छोटी मोटी बातों के जो वो ना वो भी मैं माफ कर देती हूँ।
0: चले बहुत अच्छा
3: तो
0: करती हैं।
3: खास करके अगर मेरी किसी जगह पे गलती हो तो मैं सॉरी कर लेती हूँ उनसे कि मेरी गलती है। हाँ जी, तो ऐसे ये तो गाना मेरा हल आपको नहीं मिला जो मैंने
0: गाना नहीं मिला हमें, पता नहीं कौन सा गाना था, ढूंढने पे लगाया हुआ हमने, सर्चिंग पे लगाया।
3: गाना इतना मशहूर है इधर 101 पे, मैंने कई बार सुना इधर।
0: अच्छा चले, हो सकता है फिर मिल गया हो हमें, चेक करता हूँ मैं। डोला तू फूल गुलाब दा, डोला तू फूल सूरजमुखी दा क्यों नहीं है?
3: सूरजमुखी दा सूरजमुखी का नहीं है, मैं डोला गुलाब का चाहिए।
0: अच्छा गुलाब का चाहिए, ठीक है शमीम आपी, बहुत शुक्रिया।
3: कुछ सलाम खलूस में का
0: जी जरूर,
3: जिसमें रुजवाना नुसरत है और हमारा इसी एक साजिदा आती है एमयू कॉलेज से, वो मुझे बहुत से सलाम खलूस भेजती रहती है, अगर वो सुन ले तो उनको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम
3: अस्सलाम। हनी भाई आए थे अभी, उनको भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। फरी भी सुन रही है, फरी भी कोशिश कर रही है।
0: जी ठीक है, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया,
3: जो नाम रह गए उनको
0: थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।
3: अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह
0: सेम हियर, अल्लाह हाफिज। हाँ सब की आवाज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, मेरे रक्ष के रश के कमर हम अक्सर कहते थे मेरे रश के कमर

मजा तो आता है वैसे, जब पहली नजर नजर से मिलती है, जब वो बातें होती हैं, नजर ही नजर में दीदार होता है, मुलाकात होती है, वो मोहब्बत का इजहार होता है, तो फिर मजा तो आता है। जब मैं नहीं रहता, तुम नहीं रहते, तुम मैं हो जाते हो, मैं तुम हो जाते हो, तो मजा तो आता है। आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। Enjoy this beautiful track. सुंदरी FM 101.

0: चलिए इस गाने को थोड़ी देर बीजी में रखते हैं और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम कॉल उठाने का।
0: जी सलीम टेलर, क्या हाल है आपका?
1: अरे थैंक यू यार, अभी
0: आपकी कॉल मिल गई और देख लें हमने गाने को डाउन करके और आपकी कॉल ले ली है।
1: थैंक यू। मैं भी लगा हुआ था कि यार मेरी चार दफा कॉल मिली है बार बार।
0: अच्छा
1: वाह, तो आपने उठाई है तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
0: जी वेलकम, जी वेलकम, आपको खुश आमदीद कहते हैं।
1: बाद वाले आए।
0: जी जी
1: बहुत अच्छा लगा यार, इनके पास मैं गया हूँ, रेडियो की वजह से दोस्ती हुई है माशाल्लाह। बड़ा बहुत नाइस बंदे माशाल्लाह।
0: अच्छा प्यार, तो बर्फी इन्होंने खिलाई थी आपको फिर?
1: वो बड़ी मजेदार माशाल्लाह।
0: नहीं साथ भी दी थी और कितनी आपने खाई उधर?
1: साथ भी दी तो इन्होंने, तो हम गिनती करके नहीं खाई या वजन करके नहीं खाई, पर काफी खाई माशाल्लाह।
0: काफी
1: का मजा ही अपना था।
0: वाह जी वाह, जबरदस्त जी, बहुत
1: और
0: अच्छा।
1: एक पैगाम दूंगा, ये शमीम आपकी आती हैं तो ये ना, इनकी आवाज बहुत स्लो होती है, इनकी ना इतनी प्यारी कॉल होती है, समझ नहीं आती। ये ना पीटीसीएल से कॉल करती है ना, और शमीम आपी मोबाइल से करें तो ज्यादा आपकी आवाज सही आएगी।
0: चलें शमीम आपी अगली दफा और एनर्जेटिक होकर कॉल करेंगी और हम भी शमीम आपी की आवाज फुल खोल देंगे, ओपन कर देंगे।
1: हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। और जो है ना दूसरा ये कि बर्दाश्त, और किसी से कोई गलती हो तो माफ कर देना, इन सबसे बेहतर है।
0: ठीक है,
1: बर्दाश्त कर लेना, सब्र कर लेना।
0: आपसे गलती होती है अमूमन? हाँ, फर्ज करो किसी ने आपको कपड़े दिए, आपसे हो गई गलती, फिर वो आपको माफ करते हैं या क्या कहते हैं?
1: सही बताऊं आपको,
0: वो इधर ना बताना।
1: नहीं काफी बहुत कम गलती होती है, और अल्लाह का शुक्र है कि अगर कोई गलती हो भी जाए तो उससे हम कोई डिजाइन बना देते हैं वहाँ पे।
0: हाँ फिर फनकारी तो फिर लगानी होती है ना।
1: हाँ ये असल में ये काम है।
0: ठीक।
1: एक हमारा दोस्त है चौकर टेलर, वो ना उसने वो घेरा काट दिया, गले के नीचे ना घेरे की नोक आ गई।
0: सही,
1: नीचे वाला जो दामन होता है ना।
0: जी जी।
1: मैंने वहाँ पे दोनों साइडों पे ना वो डिजाइन बना दिया।
0: सही,
1: तो वो हमारा जो है ना वो पटीक नहीं पड़ी हमें।
0: कस्टमर ने क्या कहा? वाह यार क्या डिजाइन बना दिया।
1: कस्टमर तो बड़ा खुश हो गया कि हमें तो डिजाइन ना आपने बना दिया। मैंने कहा चलो अच्छा हो गया,
0: बिल्कुल ठीक।
1: और आपकी पूरी मैनेजमेंट को सलूट,
0: बहुत शुक्रिया।
1: शमसी क्लब की तरफ से इस्लाम बोधी जट बीमार है, उसके लिए दुआ कर दीजिए।
0: ओहो क्या हुआ बोधी को? अभी पीछे तो मेरी बात ही
1: दो थी ना, वो डेंगू हो गया बेचारे को, और अल्लाह पाक से
0: अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह अपना करम करे। ठीक है,
1: थैंक यू सो मच, आपकी आवाज सुनी तो
0: बहुत शुक्रिया,
1: एनर्जी पैदा हुई।
0: जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: आरजे डॉक्स जिंदाबाद।
0: क्या बात है जी, क्या बात,
1: पाकिस्तान जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद जिंदाबाद,
1: रजा जिंदाबाद।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या बात है, अल्लाह। जब नजर से मिला ही मजा।

0: एक बंदा मुझे बड़े अरसे बाद नजर आया आज, जुल्फी। क्या बात है जी इसकी। आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चासा आ गई तो फिर कॉल काट दे हूं। जी अदरीसा, वेलकम करते हैं आपको, खुश आमदीद कहते हैं। क्या हाल है, ठीक है
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र
0: जी। नहीं नहीं, आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। हम आपकी कॉल काट सकते हैं?
1: थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आप इतनी इज्जत देते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं।
0: वेलकम वेलकम। क्या कहेंगे आज की टॉपिक पर? जी जी,
1: टॉपिक पर यही कहूँगा कि अव्वल तो जल्दी गुस्सा आता ही नहीं।
0: अच्छा,
1: और अगर आ जाए तो उसको इग्नोर कर।
0: नहीं, आपने ये बताना है कि क्या आप माफ कर देते हैं जल्दी?
1: मैं आपको इग्नोर कर देता
0: हूँ। अच्छा, जल्दी कर देते हैं माफ। ठीक है ठीक है, चलें, बहुत अच्छा काम करते हैं आप।
1: के लिए बहुत सारी दुआएं,
0: बहुत सारी दुआएं जी, बहुत सारी
1: दुआएं। बहुत सुना है, काफी बीमार है।
0: अल्लाह अपना करम करे जी, अल्लाह
1: अपना करे। आवाज सुन के तो वो बहुत फ्रेश होता है।
0: थैंक यू सो मच।
1: आपकी आवाज आज आप आए हैं तो अल्लाह करे वो मजीद और फ्रेश हो जाए।
0: बिल्कुल, अल्लाह करे वो बिल्कुल ठीक हो जाए।
1: सब सुनने वाले को
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
1: स्पेशल सलाम हनीफ ड्राइवर, नियाज ड्राइवर, साजिरा, शहजाद भाई है,
0: ठीक है,
1: अब्दुस्तार भाई है, खान बाबा है, सबको मेरा सलाम।
0: आपको पहुंच गया
1: जबर सलाम और आपकी सारी टीम को।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

0: अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम सलाम अली जी, सब ठीक हो?
0: मैं ठीक हां जनाब, तुसी सुनाओ। जी जी अर्शद साहब, शाहद बाग तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप? अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह अपना करम करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक।
1: अगर ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ।
0: ਸਹੀ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ,
1: ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
1: ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ
0: ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਅਲੀ
0: ਜੀ। ਜੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਤੇ ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਨਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से कॉलर मोहम्मद अरशद अली शाहदबाग लाहौर से हमें कॉल करते हैं और हमें प्यार देते हैं, हमें मान देते हैं, हमसे बात करते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहम्मद अरशद, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह अपना करम करेगा आप पर। अच्छा एक गाना चलाते हैं फिर, इस गाने को हमने बीजीएम में तो रखा हुआ है लेकिन ये वाला गाना चलाते हैं। चलें इस गाने को सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं यानी कि आरजे अली रजा आपके साथ साथ हूँ। प्रोग्राम फन ऑन 101, 7 बजे तक मैं और आप साथ साथ हैं।

0: अस्सलामुअलैकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से अली भाई आपको वेलकम खुश आमदी जी आया नू
1: थैंक यू सो मच
0: पहलन मरहबा बली करी आया नू ते
1: अगर भूल जाओ ना तो आगे से कह दी करो वगैरह वगैरह वगैरह चलें जबरदस्त ये आपने लिख के रखा हुआ है अच्छा जुबानी याद है
0: मेरा माइंड ही कंप्यूटर
1: आपका माइंड ही कंप्यूटर दिमाग है आपका ठीक है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप कैसी हो ठीक हो
0: सबसे पहले तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे बिल्कुल सामने आंटी हैं तो वो पिछली जुमेरात को वो गिरी हैं उनका बीपी हाई हुआ तो उनके दिमाग की ना नस फट गई है तो 3-4 दिन से उनका प्रेट हुआ लेकिन उनको होश नहीं आ रही 8-9 दिन हो गए हैं तो सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए स्पेशली दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए
1: और
0: बहुत टेंशन है पूरे मोहल्ले को तो आप
1: बहुत सारी दुआएं जी उनके लिए बहुत सारी दुआएं
0: और टॉपिक के हवाले से भाई मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ दो तरह के लोग होते हैं ना जो दिल के बहुत करीब होते हैं उनसे कोई मिस्टेक हो जाए ना तो वो जानबूझ के नहीं करते वो गलती से हो जाती है
1: अच्छा
0: तो उनको माफ कर देती हूँ तो जो रूह को जख्मी करें तो वो नहीं माफ होता मैं माफ करती हूँ
1: ठीक है
0: और
1: बिल्कुल
0: वो
1: ठीक है
0: रात को भी आके डराते हैं मुझे ख्वाब में
1: ठीक हो गया सही है
0: तो देख लें अब तीन वोट आए हैं सराइकी गाने के एक वो मेरे भाई थे लंडा बाजार से कमेंट किया उन्होंने शमीम आती जिंदा बाजी शाह रोखड़ी का गाना है ये जो कह रही हैं
1: अच्छा तो आप कौन सा गाना चलाएं कौन सा चलाएं इनमें से
0: आप शमीम आपी को नहीं मैं नाराज कर सकती आप शमीम आपी का चला दे जिशान रोकसी वाला
1: अच्छा वो भी जिशान का है
0: हाँ जी
1: चलें मैं चलाता हूँ
0: आप कहते हैं ना कि मैं आपकी मैं आपका बेस्ट आज नहीं हूँ तो फिर बेस्ट बनने के लिए बेस्ट प्ले करनी चाहिए
1: वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह
0: जो नोक झोंक आपकी और मेरी चलती है ना आज मैंने पांडा
1: क्या कहने क्या कहने जी क्या कहने आपके जाओ मैं नहीं चलाता गाना
0: नहीं चलाना
1: नहीं मैं नहीं चलाता जाओ जो करना कर लो
0: तो ना चलाए
1: चलो ठीक है फिर अब मैं ये बटन दबा दूं मैं कॉल काट दूं आपकी
0: ये आपकी मर्जी है
1: चलें जी बहुत ये एक मिनट ये सुनो जरा ये क्या यही गाना है ना
0: अली भाई जिंदाबाद अल्लाह पाक आपको सलामत रखे
1: बस बस मैंने ये तारीफें ही सुननी थी बस ठीक है
0: जा रहे हैं आपको सलामत रहे अल्लाह ताला आपको सेहत
1: वाली बहुत शुक्रिया बस ठीक है काफी है वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ ले जी सराइकी गाना है जी और पक्की सरक वाजी वाह डोला फुल गुलाब ढोला फुल गुलाब तू है अच्छा जी ये गाना हमें फरमाइश किया था जी शमीम आपी ने तो शमीम आपी आपके नाम और उसके अलावा ये गाना हमारा आपके नाम और ये गाना आबिद हुसैन साहब आपके भी नाम सुनिएगा इंजॉय कीजिएगा

0: ढोला बोल गुलाब दा तू है यार, मजेदार गाना है वैसे, वाकई मजेदार गाना है। तेनू मैं वेखा ते जीवा। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो
1: सलाम, की हाल जी?
0: जी जनाब ठीक हां, तुसी सुनाओ?
1: ਬਸ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ।
0: ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
1: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ।
0: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ।
1: ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਈ ਦੀ ਹੈ
0: ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਉਹੀ,
1: ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
0: ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਈ ਦੀ।
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ?
1: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ।
0: ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ।
1: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਚ ਰੱਖੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ।
0: ਦੇਖ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਹੀਂ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਕਾ ਭਰ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਮਰੀ ਦਿਲ ਕੀ।
1: ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੋਤਰੇ ਤੱਕ ਮਾਰ ਦੇਣਾ।
0: ਅੱਛਾ
1: ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
1: ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ,
0: ہمارے ساتھ ہمارے بڑے زبردست سے لسنر اور کالر محمد شہزاد، بہت شکریہ۔ 0422111001 ہم سے رابطے کا نمبر ہے، کال کر سکتے ہیں، ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ جلدی معاف کر دیتے ہیں یا نہیں، یا دل میں باتیں رکھتے ہیں۔ السلام علیکم کالر۔ جی آواز جانی پہچانی ہے، عثمان تو نہیں بات کر رہا؟
2: جی کافی ساری کوشش کر کے ہم بھی آخر آپ کے دریا ایکسپریس پہ تشریف لے آئے ہیں۔
0: اوہو نہیں نہیں، ایسے نہیں کہتے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ معاف کر دیتے ہیں یا نہیں؟
2: معاف کی جو ہم نے کیٹیگریاں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں۔
0: اچھا،
2: معافی کا لفظ ایک ہی ہے،
0: ٹھیک ہے،
2: لیکن اس کے تھوڑا سا پس منظر جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا۔
0: اچھا کتنا پیچھے؟
2: ہاں یعنی کہ 61 ہجری میں۔
0: اچھا ٹھیک ہے، کیا
2: اگر آپ کی اجازت تو میں صرف ایک منٹ سے پہلے پہلے بات ختم ہے،
0: جی جی،
2: میں نے صرف نقطہ ہی عرض کرنا بس۔
0: جی جی بتائیں جی بتائیں۔
2: 61 ہجری میں جب وہ کربلا میں 72 تن شہید ہوئے تھے، ایک سیدزادہ بچا تھا جن کا نام تھا امام زین العابدین، ان کے سامنے ان کے قاتل آئے تھے، انہوں نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔
0: بالکل ٹھیک،
2: انہوں نے تو نہیں تھا دیکھا کہ ہماری روح کدھر گئی ہے، ہماری یعنی کہ
0: بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات۔ اب آپ پوائنٹ بتائیں، کیا پوائنٹ؟
2: پوائنٹ یہ ہے میرا کہ میں اپنی بات ہے میری
0: جی،
2: وہ یہ ہے کہ میں معاف کر بھی دیتا ہوں، اگر اس کے بعد پھر وہ یہ سرٹیفکیٹ جو مانگتے ہیں نا، کیا کیا ہے کہ نہیں کیا، پھر اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ تو میں نہیں آپ کو سرٹیفکیٹ دے سکتا۔
0: صحیح صحیح،
2: جب ہم اگلے جہاں جائیں گے پھر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔
0: بالکل ٹھیک ہے یار، اتنے دل پہ کیوں لے رہے ہو آپ بات؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے عثمان، تھینک یو سو مچ، آپ کا پوائنٹ
2: اپنی ہے نا، اس لیے
0: میں سمجھ گیا،
2: پسے منظر میں میں نے بات کی۔
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی،
2: ہاں
0: بہت شکریہ۔
2: ہم ہر چیز کا کہتے ہیں یہ ایسی ہے یہ ایسی ہے، لیکن اس کا مدعا ایک ہی ہوتا ہے۔
0: صحیح،
2: جزاک اللہ،
0: بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم کال ہے۔
3: وعلیکم السلام۔
0: جی کون ہے میرے ساتھ؟
3: سعید عالم بات کر رہا ہوں سر۔
0: جناب
3: مکھن پورا شاد باغ سے۔
0: مکھن پورا شاد باغ، وہاں پہ مکھن زیادہ ملتا ہے، کیا سین ہے وہاں کا؟
3: لوگ مکھن لگاتے ہیں یہاں۔
0: لوگ مکھن لگاتے ہیں، کس کو لگاتے ہیں، بریڈ کو؟
3: نہیں نہیں، یہ لوگوں کو مکھن لگتا ہے۔
0: اچھا ٹھیک ہے، آپ کو لگا مکھن؟
3: नहीं हमें मुझे लग नहीं सकता यार, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: कोई बात नहीं, आपको ज्यादा लग सकता है, आप ज्यादा स्वीट हैं।
3: हाँ जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह
0: चले माशाल्लाह। क्या कहेंगे आप, पहली दफा सुन रहे हैं मुझे?
3: नहीं मैं तो सुनता रहता हूँ, लेकिन जनाब कॉल बड़ी देर से कर रहा हूँ।
0: अच्छा
3: आप उठाई नहीं
0: देखे। देख ले फिर, मैंने आपकी कॉल वजनी बहुत ज्यादा थी ना, इतनी आपने थैले में ईंटे भरी हुई थी, उठाई नहीं जा रही।
3: मेरा फोन वजनी होगा।
0: जी जी जी जी, बहुत वजनी थी, उठाई नहीं जा रही थी। मैंने दो तीन बंदे बुलाए हैं, उन्होंने उठाई है बड़ी मुश्किल से, अभी भी बेचारे थक गए हैं आपकी कॉल उठा के ना। जी
3: टॉपिक के हवाले से कहना चाहता हूँ कि माफ कर देना चाहिए।
0: ठीक है, आप करते हैं कि नहीं?
3: अल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर देता हूँ।
0: अच्छा,
3: रोज रात को सोते वक्त सबको माफ करता हूँ।
0: अच्छा, कभी आप अना का मसला नहीं बनाते कि नहीं यार मैंने नहीं करना माफ इस बंदे?
3: अना देखिए, अब पहले मैं ठीक था, डॉक्टर की लापरवाही से मैं ब्लाइंड हो गया। अब मैं जो है ना ये दिल में बात रख लूं और आगे चलूं ना जिंदगी में। अगर आगे चलना है ना तो पीछे वाली बातें छोड़नी पड़ेगी।
0: सही। अच्छा एक बात बताएं मुझे कि क्या कभी आपने किसी को माफ किया और बाद में आपको पछतावा हुआ हो कि यार मैंने इसको क्यों माफ किया था?
3: नहीं,
0: ऐसा कभी नहीं हुआ।
3: खुशी हुई।
0: अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है।
3: अच्छा आज मेरा जो है ना हैप्पी बर्थडे भी है।
0: चलें जी, आपको हैप्पी बर्थडे कहते हैं। ठीक है, क्या नाम बताया था आपने अपना?
3: सईद आलम
0: साहब, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू सईद आलम, हैप्पी बर्थडे सईद।
3: ओके,
0: थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। खुश रहें। अच्छा जी, ये थे जी हमारे साथ सईद आलम, इनकी आज सालगिरह भी है। हमने इनको प्यार से मोहब्बत से सालगिरह भी विश कर दी, और बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। 04221100011 हमसे रब्ते का नंबर है, और अभी एक गाना चला रहे हैं हम। ओके कॉल ले लें, कॉल आ रही है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
4: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमल नाज बात कर रही हूं।
0: जी कमल नाज, पंजाब यूनिवर्सिटी से। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती हैं आप।
4: बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों से। आप कैसे लेजेंड आरजे से सुन सुन के हमने ये बातें सीखी हैं।
0: अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे आप टॉपिक पर?
4: मैं टॉपिक पे ये कहना चाहूंगी कि किसी भी इंसान ने अगर किसी को माफ करना है ना, तो उसमें ये देखने की क्या जरूरत है कि वो इंसान अगर हमारे दिल के करीब है तो हमने उसको माफ कर दिया, वो दिल के करीब नहीं है तो हमने उसको माफ नहीं किया। माफ करने की बेहतरीन मिसाल ये है कि जहाँ पे आप बदला लेने की इस्तेआत रखते हो और आपने उस इंसान को माफ कर दिया है, तो ये फिर आपकी आला
0: बिल्कुल सही।
4: हाँ जी, तो अगर आपने किसी को माफ करना है तो उस इंसान को नहीं देखना वो अमीर है गरीब है छोटा है बड़ा है, अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ करो, अपने मामला अल्लाह पे छोड़ दो।
0: बिल्कुल ठीक है। और कुछ कहेंगे या प्रोग्राम आप शुरू से सुन रही है, मजा आ रहा है?
4: हाँ जी माशाल्लाह, मैं जब से आपको प्रोग्राम शुरू हुआ है मैं तब से सुन रही हूँ, और काफी देर से मैं एफर्ट कर रही हूँ कॉल मिलाने के लिए कि मेरी कॉल नहीं मिल रही थी, तो फाइनली मिल गई है। और मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को बहुत ज्यादा सलाम, जितने भी बीमार हैं हमारे शमसी ग्रुप के बोधी भाई हैं उनके लिए भी, और वो हमारा बता रही थी उनकी भी जो मोहल्लेदार हैं।
0: जी जी,
4: और इसके अलावा जितने भी बीमार हैं सबके लिए सेहत तंदुरुस्ती की दुआ, और आपके लिए भी खसूस थी माशाल्लाह, बहुत प्यारा शो करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।
4: अल्लाह हाफिज।
0: साड़ी को वारी कड़ लो जान।

Enjoy this beautiful track. I will be right back. सुनते जाइए FM 101 पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज़ आज अली रजा की. प्रोग्राम सुने आप फन ऑन 101. हम करते हैं बहुत सारा फन. 15 मिनट रह गए, टाइम तो जैसे भागता है ना टाइम, हाथ नहीं आता टाइम.

0: क्या बात है जी, साड़ी काट लो वो जांग। कुछ लोग अपनी बातों से जान निकाल लेते हैं और कुछ लोग कहते हैं मैं इनकी जान नहीं कटनी, इन्हों मैं तरसा तरसा के मारना। यही काम तेरे नाल हो रहा। ऑल राइट जी, 04211100101 हमसे आपसे का नंबर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम सलाम जी, शबीर हुसैन अर्ज कर रहा हूँ। ये जोड़े पुल से
0: जी, जोड़ा पुल कैसा है?
1: ठीक है सर,
0: जुड़ा हुआ है
1: जी, जुड़ा हुआ है, जैसे आप फरमा रहे हैं उसी तरह ही।
0: चलें जबरदस्त। क्या कहेंगे आप प्रोग्राम के हवाले से?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, बहुत प्यारा प्रोग्राम। मतलब
0: कितना प्यारा है प्रोग्राम, मुझे बताओ ना जरा, ये प्यारे की क्या डेफिनेशन है? कितना का प्यारा है? मुझसे ज्यादा प्यारा तो नहीं हो सकता ना।
1: प्यारा है कि अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और अच्छी बातें बता रहे हैं। प्यारा है, इस्लाह से प्यारा है,
0: बिल्कुल ठीक।
1: दूसरी बात यह है कि एक बंदा आपके साथ ज़्यादती करता है,
0: ठीक है,
1: उसको पता भी है कि ये गलत काम है या आपकी जिंदगी को रोल लगा देता है, तो बहन है ये भाई, उसको तो माफ अल्लाह ही करेगा, आप तो माफ नहीं कर सकते उसको।
0: ठीक है,
1: वो अल्लाह के दरबार में जाएगा, उसको पता है कि ये ज़्यादती है, जिंदगी तबाह कर देता है इंसान की, तो उसको माफी तो नहीं है ना।
0: बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया,
1: इसी समझ गया ना
0: जी जी।
1: जो माफ करने वाले हैं वो ठीक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत कूड़ा किरकट फेंकती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर दिया उनसे, ऐसा तो कोई नहीं दुनिया में,
0: बेशक बेशक
1: हर चीज को। लेकिन हम तो नहीं माफ करेंगे, जो हमारे साथ ज्यादती करेगा हम अल्लाह पास सुनेंगे और सब्र करेंगे, और जिस तरह हजरत इमाम हुसैन ने बंदा ने करबला में सब्र किया है,
0: बेशक बेशक बिल्कुल ठीक है,
1: सब्र इस तरह ना सब्र करेंगे और अल्लाह पर छोड़ेंगे और अल्लाह खुद निपटेगा उनसे, ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है।
1: ये मेरी बात अगर सही नहीं है तो आप,
0: आपकी बात तो मैं कहता हूँ सोवा ने सच है।
1: और आपको अल्लाह ताला जिंदगी दे, आसानियां पैदा करे, हमारी दुआ है अल्लाह ताला।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच,
1: मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। 04211100101 हमसे रابطے का नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बता सकते हैं कि क्या आप जल्दी माफ कर देते हैं या बात दिल में रखते हैं, माफ नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला कॉलर जो है ना, ये मेरा फेवरेट कॉलर है, जो बोलता नहीं है, जो भाग जाता है। अहमद सुन रहे हैं जी, अली भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। मोहम्मद अमीन हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच अमीन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और जो गाना आपने कहा है वो बड़ा कुछ स्लो सा गाना है, हम थोड़े से फास्ट फास्ट गाने चला रहे हैं, तो जो मैं गाना नेक्स्ट चलाऊंगा ना अमीन साहब, ये गाना आपके नाम होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
2: वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ट्रैक चला देंगे आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप गाड़ी में मुझे सुन रहे हैं और कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
2: सर गाना नहीं सुनना, मैंने ये आप जो बात कर रहे हैं ना उसके रिलेटेड बात करनी है
0: जनाब,
2: तो
0: करें
2: अगर जरूरत हो तो।
0: जी जी बिल्कुल, बिल्कुल।
2: सर पहली बात तो ये है कि हजरत अली का एक और है, दो लोगों को कभी माफ नहीं करना, एक वो जो आपकी इज्जत पे हमला करे, सेकंड वो जो रिजक पे आपके हमला करे,
0: बिल्कुल ठीक।
2: फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको माफ नहीं करना, बाकी जो भी कोई गलती करता है तो रसूलुल्लाह का कॉल है कि माफ कर दो, अगर
0: आपकी बड़ी जबरदस्त बात की आपने,
2: थैंक यू सो मच, बस यही बात करनी थी। कमाल हैदराबाद कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा सर।
0: आप खैरियत से जाएं और हंसते मुस्कुराते जाएं, खुश रहें।
2: थैंक यू सो मच सर,
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चले जी, ये गाना मैं चलाने जा रहा हूँ, इस गाने को सुनिएगा। ये गाना एक टाइम में बड़ा फेमस हुआ था और कोई भी शादी ऐसी नहीं होती जिस शादी पे ये गाना ना चलता हो, या लाइव परफॉर्मेंस हो तो ये गाना ना चलता हो। ये गाना चलाते हैं और हम भी लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं, सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा। स्टिक अराउंड, स्टे हियर, दिस इज FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मुझे आरजे अली रजा कहते हैं, बड़े प्यार और बड़े मान से कहते हैं। फन ऑन 101 हर जुमे की शाम 5 से 7। नदीम अब्बास लोन।

0: ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ ਅਸ਼ੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕਾਲਰ, ਭਾਗਿਓ ਨਾ। 04211100101 ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਲੇਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਢੋਲਾ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
1: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।
0: ਕਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ?
1: ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ।
0: ਬੋਲੋ ਜਲਦੀ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਆਪਨੇ?
1: ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ, ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਯਾ ਆਪਣੇ ਹਮ ਛੋਟਾ, ਖੁਦ ਕੋ ਛੋਟਾ ਸਮਝਨੇ ਲੱਗ ਜਾਤੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾਤਾ।
0: ਠੀਕ ਹੈ,
1: ਫਿਰ ਉਨਸੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆ ਜਾਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੇਤੇ।
0: ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੁਝੇ ਯੇ ਬਤਾਏ, ਇਤਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਇੱਕਦਮ ਸੇ, ਕਿਆ ਹੁਆ?
1: ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੂੰ।
0: ਆਪ ਮੁਝੇ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਆਪ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ।
1: ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ?
0: अच्छा अच्छा, चले फिर ठीक है। देखे ना, कुछ ना कुछ तो था ऐसा,
1: पता ही है भाई। हम लोग माजल्ला, हम तो पैरों की खाद के बराबर भी नहीं है।
0: अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं लगी, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई थी। चले खैर, एनीवेज थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका। स्टे ब्लेस्ड।
1: ये कि माफ कर देना, माफ, मैं भी इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहती कि मेरे से गलती नहीं, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती है ना, रिपीट में बार बार हों, तो उन लोगों को नहीं माफ किया जाए।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वेल जी, ये था आज का प्रोग्राम और थैंक यू सो मच। बाकी माफ़ कर देना चाहिए यार, इतने संग दिल नहीं बनना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। किसी का कोई राज आपको पता चल जाए तो उसका राज फाश नहीं करना चाहिए। वैसे क्यों, ऐसे ही है ना। वेल जी, ये था आज का प्रोग्राम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को 5 to 7, तो मुझे बहुत सारा याद करना है आपने। छोड़े जा रहा हूँ आपको एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ, और इस ट्रैक को भी आपने एंजॉय करना है। ओ, कितने गया मेरा ट्रैक? अच्छा जी, कुछ मैसेजेस हैं जी, उनको भी शामिल कर लेते हैं। कुछ नाम मेरे पास हैं। आबिद सुन रहे थे, थैंक यू सो मच आबिद, बहुत शुक्रिया। फजल सुन रहे थे, थैंक यू सो मच फजल, आपको भी बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हमें आयशा सुन रही थी लाहौर से, थैंक यू सो मच। एहसन खान थे, मोहम्मद हफीज़ुर रहमान थे, अलमदार हुसैन, रेहाना खान, आफ्ताब हुसैन, बरकत रमदानी, रियाज भट्टी, साजिद अली, नईम टेलर और जिशान हमें सुन रहे थे, थैंक यू सो मच। कमल नाज, असगर मोहम्मद, नज़ीर कोसो, मोहम्मद अमीन और हमदुल्ला मलाखेल, मलिक अरसल नवी, थैंक यू सो मच तमाम लिसनर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया। आफ्ताब हुसैन सुन रहे थे, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? मैं जटा दा मुंडा पहचानिया, वेरी नाइस शो, वेरी नाइस आर जे अली रजा, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, कॉल आ रही है लेकिन आप कॉल नहीं ले पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल रखते हैं। ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि अपनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल राइट जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: दिल में तेरा घर नहीं साथ हूँ।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101. I'm cooking.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

अनजान तो न था, इस घर का फर्क था कोई मेहमान तो न था। थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: Sunte rahiye FM 101. 101. 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तलोक समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तलोक समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तलोक समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। उस एक कच्ची सी उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा, उस एक कच्ची उम्र वाली के फलसफे को कोई न समझा। जब उस कमरे से लाश निकली, खतूत निकले तो लोग समझे। वो गांव का एक ज़ईफ दहकां सड़क के बनने पे क्यों खफा था, वो गांव का एक ज़ईफ दहकां सड़क के बनने पर क्यों खफा था। जब उनके बच्चे जो शहर जाके कभी ना लौटे तो लोग समझे। वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को। रेडियो पाकिस्तान FM 101 के लाहौर स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। 101 इंटरनेशनल की इस ट्रांसमिशन को पाकिस्तान भर में सुना जा रहा है। सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का मौजू आपने सुन लिया और मैं चाहूँगा कि आप लोग जब इस प्रोग्राम में शामिल हों, आप लोगों की कॉल्स मौजू के ऊपर लाजमी बात कीजिएगा। माफ़ करना और बर्दाश्त करना कैसे सीख सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी जी वालेकुम अस्सलाम।
0: आप हंस क्यों रही हैं?
1: कितनी किस्मत वाली हूँ कि मेरी पहली कार मिल गई।
0: चले मुबारक हो बहुत बहुत।
1: आपने मेरे दुआ की बहुत शुक्रिया। आपने दुआ की है ना इसलिए मेरी कार मिल गई।
0: देख लें फिर हमारी दुआएं कबूल होना शुरू होगी।
1: वाकई आप बड़ी किस्मत वाले हैं, आपकी दुआ कबूल हो जाती है। मैं लाहौर से रिमशा, उम्मीद है आप ठीक हैं। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपकी आवाज़ से महसूस हुआ।
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ।
1: ओके, वैसे मज़े में कैसे, कहीं घूमने गए थे?
0: बस देख लें फिर, हम मज़े में ही रहते हैं। हम अपनी दुनिया में रहते हैं और मज़े में रहते हैं।
1: माशाल्लाह आपने शायरी भी बहुत प्यारी पढ़ी है।
0: अच्छा,
1: फरहान भाई जितने भी सुनने वाले हैं वो सारे आपको कहेंगे कि आप जो है ना अंदाज शायरी का वो बहुत अच्छा है।
0: सबको यही कहती हैं आप।
1: अल्लाह मैं किसी को ऐसे नहीं कहती, आप किसी से भी पूछ लें। अभी कितने मुझे सुन रहे हैं,
0: सबको यही कहती हैं, एक ही बात, एक ही बात है। डायलॉग चेंज करें आप, मुझे ऐसा लगता है करना पड़ेगा।
1: डायलॉग चेंज करूं कौन सा वाला डायलॉग? यानी
0: कि आप शायरी बहुत अच्छी पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है।
1: आप रूटीन से आते हैं, आप छुट्टियां नहीं करते हैं,
0: है ना?
1: ये बात तो है
0: ना, अच्छी बात है ना,
1: ये अच्छी बात है, ये आपके अंदर फितरत अच्छी है। कभी कभार आप छुट्टी कर लेते हैं लेकिन आते रूटीन से, कभी होता है मजबूरी के तहत कर लेते हैं।
0: मजबूरी के तहत। अच्छा जी,
1: ये देखिए मैंने डायलॉग चेंज किया है।
0: चलिए जबरदस्त है, आपका डायलॉग जो है ना बड़ा अच्छा है। मुझे बताएं कि आज का जो मौजू आपने सुना,
1: बिल्कुल
0: कुछ कहना चाहेंगी?
1: बिल्कुल कहना चाहूंगी।
0: क्या कहेंगी
1: भाई? मैं अगर मैं बोलू ना तो बर्दाश्त, आपने बोला कि बर्दाश्त किया जाता है और माफ कैसे बंदा, बर्दाश्त भी नहीं किया जाता। किसी इंसान को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता,
0: इंसान
1: बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन करना पड़ता है। करना पड़ता है क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, इंसान को मजबूत बनने के लिए काफी कुछ, इंसान इसी से, इंसान गलतियां करने से भी सीखता है, बर्दाश्त करने से भी सीखता है। बस करना पड़ता है मजबूरी के तहत। इंसान माफ भी करना है, माफ करना भी जरूरी होता है हर इंसान को, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। हम लोग पत्थर रख के इंसान बर्दाश्त भी करता है और माफ भी कर देते हैं।
0: तो माफ कर देना चाहिए,
1: माफ करना ठीक है। बर्दाश्त अगर आप एक लिमिट तक करते हैं

0: برداشت جب ختم ہو جاتی ہے نا پھر ہم بول پڑتے ہیں. اگر ایک بندہ آپ کو مزید مسلسل تنگ کرے, مسلسل آپ کو وہی تکلیف دینا, تو وہ پھر جو برداشت انسان کر رہا ہوتا ہے نا, وہ پھر برداشت کی لیمٹ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ اکے انسان بول پڑتا ہے. اور معاف بھی ایسے ہی ہے, اگر مزید انسان اسے تنگ کرے, اسے وہی بات سے کوسے یا تنگ کرے, کوئی بھی بات اس کو بار بار کرے, تو معاف بھی اسے بار بار نہیں کیا جاتا. جو بندہ دل دکھاتا ہے روزانہ یا روزانہ اس کی روٹین بن جائے گی, نہیں
1: کیا کریں,
0: بندہ ایک بار سے معاف کرے,
1: کیا کریں پھر ایسے شخص کا.
0: اگر وہ پھر اگر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ منہ زبان سے تو معاف کر دیتے ہیں لیکن دل سے نہیں کر پاتے.
1: دل سے ہی تو معاف,
0: ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم برداشت کر رہے ہیں, اللہ تمہیں اللہ بڑا عذاب لے گا, ہم تو معاف کرتے ہیں لیکن ہم دل سے نہیں کر پاتے.
1: بڑے سخت ہیں ہم,
0: سخت بننا, یہ دنیا سخت بنا دیتی ہے. دنیا کے وہ ستم, وہ ان کی روزانہ کی روٹین, جو بندہ کسی کا دل دکھائے, وہ ہوتا ہے نا ایک دو بار ہو تو چلو بندہ کہے, اگر روزانہ ہو, روزانہ ہی بندے نے روٹین بنا لی ہو کہ بس اس کو اب تکلیفیں دینی ہے, یہ برداشت کر رہا ہے. وہ ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ایک بندہ نہیں بول رہا ہے وہ برداشت کر رہا ہے, تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں یہ تو بندہ بڑا کمزور ہے, یہ تو مجھے کچھ نہیں کہے گا, جو مرضی کرتے رہو اس کے ساتھ. لیکن وہ گونگا نہیں ہوتا, وہ انا نہیں ہوتا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن صرف وہ بول نہیں تھا, بولتا نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے کچھ پتا نہیں ہے, وہ کچھ دیکھ نہیں رہا, اسے دیکھ رہا ہوتا ہے, صرف وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے, اس نے اللہ پہ اپنی ڈور چھوڑی ہوتی ہے.
1: زبردست, اس سے بہتر کیا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد,
0: اس سے بہتر کچھ بھی نہیں. بس انسان یہ ہے کہ برداشت کر لے,
1: برداشت کر اور
0: اللہ پہ چھوڑ دے, آپ کو محنت کا پھل مل جائے گا, صبر کا پھل مل جائے گا.
1: بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, برداشت کر یا پاس کر.
0: بالکل بالکل, آپ وہ کہتے ہیں جو برداشت کر گیا وہ پاس ہو گیا.
1: وہ ایک اور ہے نا, واصف صاحب کا ایک کال بھی ہے نا کہ دنیا کی سب سے بڑی قوت جو ہے وہ قوت ہے برداشت ہے.
0: آپ بالکل
1: برداشت کرنا ہی ہے نا کہ آپ کو ایک ایسی سچویشن,
0: لیکن یہ بھی دیکھیں نا بھائی, آج کل کے دور میں نا ہم میں برداشت نہیں ہے, ہم برداشت نہیں کر پاتے. اگر ذرا سی سڑک پہ آپ دیکھیں, موٹر سائیکلیں چلتی ہیں, گاڑیاں چلتی ہیں, ذرا سی ٹکر ہو جائے تو ہم لوگ ایسے پڑ جاتے ہیں, ہم میں برداشت نہیں ہوتی. چلو ایک بندہ بول رہا ہے, اسے غلطی ہو گئی, وہ معافی مانگ رہا ہے, نہیں تم نے کیوں مارے, تمہیں انے پہ تمہیں نظر نہیں آتا. ہم لوگ اس طرح کے الفاظ, اس طرح کے لینگویج
1: آج یہی ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ہم چلیں. یہ تو ایک جو آپ نے جو پہلے جو کہانی سنائی نا, تو وہ ایک ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ والی جو چیز ہے نا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر جانا,
0: چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, ہاں اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی ہی باتیں برداشت کر لیں تو بڑی باتیں تو پھر ہم برداشت کر ہی لیں گے.
1: بہت خوب, بہت خوب رمشا, تھینک یو سو مچ, خوش رہیں, برداشت کریں. اور
0: جاتے جاتے اشتیاق انکل کو میرا بہت بہت سلام, اور سبھی سننے والوں کو بہت سلام. بہت ہی جلد جو انکل ہیں وہ بہت بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں جلدی سے صحت دے دے, اور ہمارے پیارے سے آرجے زیان جو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے, وہ جلدی سے شو کرنے آ جائے, پھر ہم ان کو بھی سنیں, پھر میں ان کی تعریف کروں گی, کیونکہ بھائی اوتار جو شاعری کرتے ہیں وہ بہت پیاری کرتے ہیں, بہت
1: اچھی کرتے ہیں. ہاں سمجھ آ گئی مجھے, چلے تھینک یو رمشا, اللہ حافظ. اوکے جناب, دیٹ واز رمشا ود اس, اور رمشا کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کو بار بار جو تکلیف دیں, بار بار جو دل توڑیں, ان کو معاف کرنا یا برداشت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا 2024 میں نا, ابھی اس کے اوپر کافی زیادہ جو فرگیونیس نا, معاف کرنے کے اوپر بڑی دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے, اور کہ آپ نے لوگوں کو کیسے معاف کرنا ہے. 2024 میں نا ایک تحقیق ہوئی, اس میں مختلف ملکوں کے نا, جس میں کولمبیا تھا, ہانگ کانگ, پھر انڈونیشیا, جنوبی افریقہ اور یوکرین سے تعلق رکھنے والے تقریباً کوئی 5-6 ہزار لوگوں کے درمیان کچھ جو شرکات ہیں نا, ان پہ ایک تجربہ کیا گیا. اچھا وہ اس طرح تھا کہ اس میں انہوں نے کہا جی آپ معافی پہ, یعنی کہ معافی پہ مبنی ایک ورک بک استعمال کرنے والے جو گروپ ہیں نا, انہیں 2 ہفتے بعد نا, جو انتظار کرنے والے جو گروپ تھے نا, ان کا مقابلہ کرایا گیا کہ آپ نے نا اپنی کیفیات بیان کرنی, کہ ڈپریشن کی علامات اور اضطراب کی علامات میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے کمی ہوتی ہے. اچھا اب اس میں نا ہوتا کیا تھا کہ ان سے باقاعدہ طور پہ کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں ایک بندہ ہے کہ جو جیسا ابھی رمشا کہہ رہی تھی کہ اس کو بار بار تکلیف پہنچائی جا رہی ہے بار بار, تو اس کو یہ کہا گیا ہے کہ تم نے اس کو معاف کرنا ہے بار بار, اور کچھ لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ نے نا اپنی کیفیات بیان کرنی ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دے رہا ہے, اذیت دے رہا ہے, مشکل میں ہے, اور آپ اس کو معاف نہیں کر پا رہے, فرگیو نہیں کر رہے اس کو, تو آپ نے اپنی کیفیات بیان کرنی ہے. अच्छा ये तो अब रिसर्च हो रही है ना, लेकिन उसमें उन्होंने कहा जी कि जो लोगों को माफ़ करते हैं ना, जिनकी आदत है कि फॉरगिव कर देते हैं, उनके अंदर हैबिट है कि यार किसी ने अगर कुछ कह दिया, कुछ कर दिया या दिल तोड़ दिया उनको, फिर भी माफ, वो लोग ज़िंदगी में बड़े सुकून में रहते हैं, बड़े लाइट रहते हैं, बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, बड़े रिलैक्स रहते हैं, और बड़ा वो एक अपने पुरसकून लाइफ जोन के अंदर रहते हैं। अच्छा, जो लोग माफ़ नहीं करते और उनकी हैबिट बन जाती है कि छोटी छोटी बात को भी पकड़ ली और फिर उस पर नाराज़ी करना, गुस्सा करना और उसके बारे में सोचते रहना, उस कैफियत में रहना, मतलब उसको साइकोलॉजी में कहते हैं कि रूमिनेशन जिसको कहते हैं, यानी कि जहन में किसी तकलीफ दे वाक्य को बार बार दोहराना। आप रात को आप सोने जा रहे हैं तो फिर कोई एक बात आपके दिमाग में फंस गई है, किसी की कोई बात, किसी का कोई तकलीफ़ अजियत कुछ भी, फिर वो बार बार माइंड में चलता। अगर आप उसको माइंड से नहीं निकाल रहे तो आप उस कर्ब, उस तकलीफ़ और अजियत में ही रहेंगे। तो जो लोग माफ़ नहीं करते उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, ऑल दो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या सर आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से?
2: हाँ, इकबाल बात कर रहा हूँ, कराची बल्दिया।
1: जी इकबाल साहब, क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू के हवाले से?
2: आज का मौजू बहुत ज़बरदस्त है और इंसान को चाहिए कि इंसान बर्दाश्त करे और माफ़ कर दे अगर हो सके।
1: बहुत अच्छा,
2: माफ़ करना सबसे बेहतर।
1: आप माफ़ करते हैं लोगों को?
2: अच्छी चीज़ है, जो कि है मुश्किल है लेकिन अच्छी चीज़ है।
1: लेकिन आप करते हैं, आप कर देते हैं माफ़ अगर कोई आपको कोई, आप माफ़ कर देते हैं लोगों को?
2: जी बिल्कुल कर देते हैं।
1: जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है
2: जी। हाँ, माफ़ करना बेहतरीन नंबर है।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहते हैं जी माफ़ करना जो ना बेहतरीन अमल है, और अच्छी बात है जी, अल्लाह करे ये बेहतरीन अमल हम करते रहें। अस्सलामुअलैकुम। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन, कहाँ से?
3: सर मैं मरी से सोबिया बात कर रही
1: हूँ। मरी से सोबिया?
3: जी सर।
1: जी मरी का मौसम कैसा है सोबिया?
3: सर शाम तो बहुत उदास और बहुत ठंडी है।
1: ओहो, उदास भी है और ठंडी भी है।
3: जी सर।
1: अच्छा, जारी बात है, अब तो थोड़ी थोड़ी ठंड वाली रातें जो होती है ना वो उदास होना शुरू हो जाती है ना।
3: सर आपने कहा है बर्दाश्त और माफ़ करना। सर अगर एक इंसान बर्दाश्त कर रहा है ना, तो अगर दूसरा इंसान उसको सल उकसा रहा है, इसकी बर्दाश्त खत्म हो जाए, मगर आखिर वो इंसान ही होता है ना, तो अगर उसकी बर्दाश्त खत्म हो जाए तो फिर ऊपर से कह दिया जाए कि इसको माफ कर दिया जाए,
1: तो
3: माफ करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है। बहुत अलग दस लोग होते हैं जो बर्दाश्त भी करें और दूसरों को माफ भी करें। अगर सर दूसरों को भी तो कहेंगे ना कि एक इंसान अगर आपको बर्दाश्त भी कर रहा है और माफ भी कर रहा है, कम अज कम उसके अंदर एहसास होना चाहिए कि ये बंदा हमारे साथ क्या कर रहा है और हम इसके साथ क्या कर रहे
1: हैं। बिल्कुल ठीक, असल में ना आप ठीक कह रही हैं, बड़ा मुश्किल सिचुएशन होती है कि, और आप बार बार उस सिचुएशन से गुजरते हैं, बार बार आप उसको निभा रहे होते हैं, ताल्लुक़ को, रिश्ते को। अच्छा, हम मैं ना इसको थोड़ा सा ऐसे देखता हूँ बाज़ दफ़ा ना, हम जो इंसान हैं ना, हम अपने ऊपर अगर गौर करें ना हम सब, और अपने आप को, अपने मामलात को, अपने आमाल को, अपनी चीज़ों को, हम नमाज भी पढ़ते हैं अल्लाह की बारगाह में, सरबे सजूद भी होते हैं और बार बार ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, हम बड़े गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर, हम अल्लाह से बार बार माफ़ी के तलबगार होते हैं, बार बार माफ़ी के तलबगार होते हैं, और हम उससे इसीलिए माफ़ी मांगते हैं कि यार हमें पता है, एवरीबॉडी नो कि उसके है क्या, वो एक्चुअली उसके अमाल क्या हैं। जब हम रब से ये एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हैं बार बार, तो मेरे ख्याल में एज ए इंसान हमें कुछ थोड़ा सा होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमें वो इतना स्पेस दे देनी चाहिए कि हम माफ़ कर दें। मुश्किल है, आई नो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वो फिर
3: तो हमारे साथ कुछ ऐसे होते हैं वाकया।
1: जी जी,
3: सर एक चीज भी मतलब ये है कि अगर खामोश रहा जाए तो कहते हैं बंदा खामोश है ना, तो ये भी कहते हैं कि इस खामोशी के पीछे भी बहुत बड़ा तूफान है। तो जैसे एक दरिया है या समंदर है
1: जी जी,
3: तो अगर उसकी आवाज नहीं आ रही, चलने की पानी की आवाज नहीं आ रही, समझ लें कि इसके अंदर बहुत गहराई है।
1: ठीक, बिल्कुल ठीक।
3: तो ऐसा भी होता है कि इंसान जो तो खामोश है, हम ये हर एक बंदे से यही तो कर सकते हैं कि इस खामोशी के पीछे बहुत बड़ा तूफान है।
1: नहीं, जरूरी तो नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है। बाज़ दफ़ा कुछ लोग मिजाज में इस तरह के होते हैं, वो खामोश तबाह होते हैं, वो कम बोलते हैं, वो रास पा जाते हैं, पता है उनको, पता है खामोशी में हिकमत है, खामोशी में ही आफियत है, खामोश रहने में ही बेहतरी है। देखिए, हम ना एज्यूम ख़ुद से कर रहे होते हैं लोगों को ना कि यार ये खामोश है तो ये मतलब कुछ बड़ा तूफ़ान आने वाला है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। नहीं, आपके अजम्पशन हैं, मेरी अजम्पशन हैं, बट उसके अंदर क्या है, हकीकत क्या है, वो जाने या उसका रब जाने। तो इसलिए अज्यूम नहीं, अच्छा गुमान करना चाहिए लोगों के बारे में, अच्छा गुमान रखें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा।
3: सर मेरी कॉल मिल गई है।
1: जी जी, आप लाइव हैं।
3: आपसे आप बात हो रही है हमारी।
1: जी मैम,
3: थोड़ी सी तमाम कॉलर से माजरा चाहती हूँ, मेरी कॉल लंबी हो रही है।
1: जी,
3: सिर्फ एक बात करना रही हूँ आपसे।
1: जी जी,
3: गुर्बत और मुफलिसी में क्या फर्क है सर?
1: गुर्बत और
3: मुफलिसी, इसमें फर्क क्या है?
1: आप कॉल बंद करें, बताऊं मैं आपको।
3: जी सर, सर वो अनिल आपकी बहुत बहुत सलाम और माया से जाती है तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम।
1: चलें, बहुत शुक्रिया। आपको आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि
3: सर अगर आसान लफ्ज़ों में बताएं गुर्बत और मुफलिसी में फर्क क्या है?
1: चलें ठीक है,
3: या आया ज्यादा मुश्किल गुर्बत है या मुफलिसी है?
1: ठीक, चलें ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और जनाब, कॉलों का सिलसिला जारी है और हमारी कॉलर थी, कहते हैं गुर्बत और मुफलिसी में क्या फ़र्क है। अच्छा, वैसे ना नॉर्मली आम फाहम जो लफ्ज़ों में यही कहा जाता है, गुर्बत जो बुनियादी तौर पे ना जिसको कहा जाता है, वो माली वसाइल की कमी या आमदनी का इतना कम होना नॉर्मली जो कहा जाता है कि इंसान अपनी ज़रूरियात जो है ना वो भी पूरी नहीं कर सकता, उसके लिए मुश्किल हो जाती हैं, जो आम गुर्बत की डेफिनेशन दी जाती है। और मुफलसी के बारे में कि गुर्बत की जो ज़्यादा जो शदीद कैफियत है ना, जिसे जहाँ इंसान के पास अपने बुनियादी जो ज़रूरियात है ना उसे भी पूरा करने के लिए उसके जो वसाइल हैं वो भी ना रहें, और उसमें बेबसी भी हो, मोहताजी भी काफ़ी ज़्यादा हो, तो मतलब नॉर्मली जो मुफलसी के बारे में, वैसे दुआ भी की गई कि जब दुआ मांगे तो ये ज़रूर मांगे कि अल्लाह ताला मुफलिसी से बचाए और गुर्बत से भी। आम फहम में यही कहा जाता है गुर्बत जो ना वसाइल की जो कमी है, जबकि मुफलिसी जो है ना वो वसाइल के तकरीबन ख़त्म हो जाने और आपकी जो शदीद जो मोहताजी की कैफियत है ना उसको आप मुफलिसी यानी आप लोगों के मोहताज हो जाते हैं। आप अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं लोगों के आगे। तो नॉर्मली डेफिनेशन तो ये की जाती है। अब इसकी डिटेल्स में हम फिर किसी वक्त जाएंगे, इस पर बात करेंगे कि हम गुर्बत और मुफलिसी के साथ कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
4: जी वालेकुम अस्सलाम
1: जी,
4: मैं रबिया बात कर रही हूँ लाहौर से।
1: जी रबिया, कैसी हैं आप?
4: अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। बड़े अरसे बाद मैंने ट्यून इन किया, यूनिवर्सिटी के ज़माने में हम सुना करते थे तो अच्छा लगा, बहुत मेरा दिल चाहा कि मैं कॉल करूं।
1: चलें, बहुत शुक्रिया आपका और कॉल करने का भी शुक्रिया रबिया। क्या करती हैं आप?
4: मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में.
1: अच्छा जबरदस्त. कौन से सब्जेक्ट हैं आपके?
4: मेरे सोशल साइंस.
1: सोशल साइंस, अच्छा
4: जी.
1: क्या बात है, जबरदस्त. कल हमें एक पंजाब यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब मिले थे सोशल साइंसेस के.
4: अच्छा.
1: हाँ, बड़ी उनकी तहकीक थी
4: उसके. अच्छा
1: जी. अच्छा मुझे बताएं हमारा आज का मौजू, आपने सुना?
4: जी, आपके मौजू ने भी मुझे अट्रैक्ट किया असल में. तो मौजू जो है माफ करना. तो अब तो खैर मेरा वो क्या कहते हैं सब्जेक्ट भी ऐसा है और मेरा पेशा भी ऐसा है. तो देखिए माफ करना जो है ना, सबसे पहले तो ना हमें माफ करने की को डिफाइन करने की जरूरत है, इसकी डेफिनेशन की जरूरत है कि माफी किस पे होती है और किसको हम कहते हैं कि यहाँ पे माफ करने की जरूरत है और किसके ऊपर हम नाराज हो सकते हैं. मतलब ये डिपेंड करते हैं ना रिश्तों के ऊपर.
1: बिल्कुल ठीक है.
4: मतलब हम हर किसी से बराबर नहीं इस मामले को हम कर सकते.
1: ठीक हो गया. एग्री.
4: तो इसके हमें पहले डिफाइन करने की जरूरत है. मतलब अब सड़क पे चलता कुछ हमें कुछ कह दिया और हम उसको बुरा मना के बैठ जाए और कहेंगे जी हमें माफ नहीं करना, तो ये तो बिल्कुल ही एक मतलब
1: अजीब सी बात है. बिल्कुल, ये तो समझ से बाहर है. अच्छा वैसे एक बात है कि ये इस तरह के जो लोग वो ज्यादातर में याद भी नहीं रहते, याद वही रहते हैं जो अपने होते हैं.
4: हाँ शायद. अच्छा फिर उसके बाद दूसरा जो मामला है कि एक तो पहले हम इसको डिफाइन करें ना कि हमारे हमें सबसे पहले अपना आप पता होना चाहिए. जो कि मुझे लगता है कि हमारा ओवरऑल एक कौमी मसला है. हमें अपनी हमें शख्सियत का नहीं पता होता. हमें खुद भी नहीं पता होता हमें क्या चीज अच्छी लग रही है क्या बुरी लग रही है. बहुत दफा ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के राय के ऊपर बातों को बुरा मान रहे होते हैं. सच्ची जो बात.
1: बिल्कुल ठीक.
4: मतलब तो इन चीजों को डिफाइन करने की जरूरत है अपनी शख्सियत के मुताबिक. और फिर दूसरा जहाँ तक माफी की बात है ना कि अगर वाकई कोई ऐसी बात हो गई है कि जी माफी की मतलब जरूरत इस तरह से हो गया है कि भी नाराजगी है और माफी है. तो देखिए एक ना सीधा सा रूल है जो इस्लाम ने हमें बता दिया है कि मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता.
1: ठीक है.
4: तो माफ करने का मतलब ये होता है कि माफ आपने कर दिया लेकिन forgiven and forgotten नहीं होता. It's just forgiven and not forgotten. माफ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा ताल्लुकात की उसी सतह पे चले जाएं जिस पे आप पहले थे.
1: ठीक है.
4: माफ करने का मतलब ये होता है कि आप ठीक है उससे इंतकाम नहीं ले रहे. आपने जो है आपने मूव ऑन कर लिया है. आपने ये नहीं है कि आप उससे जुड़ के बैठ गए हैं और अपनी जो है उसी को सोचे चले जा रहे हैं और बाकी जिंदगी आपकी रुक गई है. ठीक है. लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप दोबारा से उसी ताल्लुक और उसी उतना ही आपका रिश्ता जो है वो मजबूत बन गया है कि आप एक दफा फिर हर्ट हों और फिर आपकी जिंदगी जो है पीछे आए. तो ये तो मतलब इस्लाम के लिहाज से भी जो है ना किसी भी तरह एक अकलमंदाना बात नहीं है. तो forgiven और not forgotten is the rule.
1: ठीक है
4: जी.
1: बिल्कुल.
4: तो माफी के हवाले से जो है ना बस ये एक मैं आई. और क्योंकि ये वो वाली चीज है जो मैं बहुत देखती हूँ कि जो है ना लोग कहते हैं कि नहीं फिर दोबारा से इस तरह हो गया. अभी दोबारा से क्यों हुआ है आपको बता. आपको पता चल गया है एक शख्स को कि फितरत नहीं बदलती है. फितरत नहीं बदलती किसी की. और अगर किसी शख्स के साथ आपकी नहीं बन रही हो सकता है कि कोई सीरियस मैटर भी ना हो. पर्सनालिटी क्लैश होते हैं बहुत सारी चीजें होती
1: है. इंटेलेक्ट का भी फर्क होता है बेशुमार.
4: बहुत सारे मसाइल होते हैं जिसके ऊपर आपके हाँ जिससे आपके जो है इख्तलाफात हो जाते हैं. तो बस ठीक है आप जो है कत ताल्लुक ही मत करें. कत ताल्लुक ही जो है जाहिर है उसकी नहीं. हाँ अगर कोई इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि जी आपको के उससे बात करना भी क्योंकि कुछ है मतलब दुनिया में बड़े अजीब और गरीब किस्म के नफ्सियात है लोगों की के जो है वो आप उनसे एक सीधी बात भी करते हैं तो वो उसमें से कुछ ना कुछ गलत बात निकाल के और उससे जो है वो प्रोपेगेंडा भी बना कर लेते हैं और बतंगड़ी बना लेते हैं. तो ठीक है फिर आप उनसे बच के रहें और तमाम की हद तक जो है वो बस रिश्ता रहे. तो बस ये
1: बहुत जबरदस्त. बहुत खूब जी. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू. बहुत अच्छी आपने बात की है. और अनफॉर्चुनेटली हम फिज़िकल हेल्थ पे तो बहुत काम कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं करते. मेंटल हेल्थ में ये है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी. अगर हमें कहीं पे हम अपने आप की एवेल्यूएशन नहीं करते, अपने आप को एवेल्यूएट नहीं करते, हमें बस लोगों को जज कर रहे होते हैं, लोगों को उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, उनसे सब कुछ आ रहे हैं, लेकिन अपनी जो है ना वो चीज़ें उसके ऊपर ज़रा गौर कम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. سر بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا؟
5: شیخ آصف گنواز سے بات کر رہا ہوں سر.
1: جی سر کیا کہیں گے؟
5: سر میں آن لائن چل رہی ہے, سب سن رہے ہیں.
1: جی سر.
5: سر معافی جو ہے نا وہ غلط ہے, زیادتیوں کی معافی نہیں ہوتی.
1: ٹھیک ہے.
5: جو بندہ زیادتی معافی ہوتا ہے, غلطی ہو گئی تو چلو معاف ہو گیا. ایک بندہ اگر زیادتی کرتا ہے تو اس کی پھر معافی کرتا. وہ کہہ رہی تھی ابھی کہ ایک انسان حدیث ہے دوسری جگہ سے نہیں ڈر سکتا. میں تو یہ کہوں گا کہ زیادتیوں کی معافی نہیں ہونی چاہیے کوئی بھی.
1: اچھا ٹھیک ہے.
5: ہاں اور اس کے لیے میں آپ کو ایک تھوڑا سا قطعہ سنا دیتا ہوں اگر اجازت دیں. لکھنے والا لکھتا ہے, جس دور پہ دنیا نازاں تھی وہ زمانہ بھول گئے, آنکھوں کو جگانا یاد رہا, خود خوش میں آنا بھول گئے, منہ دیکھ لیا آئینے میں پردار نہ دیکھا تھی میں نے, جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اوکے اللہ
1: حافظ. اوکے سر اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. جناب ابھی مجھے کرنی ہے ایک برتھ ڈے وش ہمارے بہت پیارے دوست ہمارے بھائی جناب شارق بھائی کی. آج سالگرہ ہے. ویری ہیپی برتھ ڈے ٹو یو شارق بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت والی زندگی دے. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کی جانب سے, پوری ہماری ٹیم کی جانب سے اور بلکہ پورے پاکستان کی جانب سے آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک. جیتے رہیں, سلامت رہیں. اور میں نیکسٹ ٹریک سناؤں گا اسپیشلی شارق بھائی, آپ کو ڈیڈیکیشن پیش کی جائے گی ایف ایم 101 کی پوری ٹیم کی جانب سے. اور خوش رہیں جناب, اسی طرح ہی اچھے اچھے کام کرتے رہیں اور اپنا حصے کی شمع جلاتے رہیں. اچھا جناب ایک کالر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک ٹریک کی جانب بڑھیں گے ہم. السلام علیکم.
6: جی بسم اللہ.
1: السلام
6: علیکم. وعلیکم السلام.
1: جی سر
6: کیا حال ہے بھائی؟
1: بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ٹھاک سر. کون صاحب؟
6: ہاں
1: جی عبد الحمید فروخت آباد گاؤں ہر چاند سے.
6: اللہ کا شکر. ہاں کئی بندے ایسے اللہ غلطی کر کے بار بار بار بار ہی معافی منگنے. یار معافی تو ہم بھی ایک دو بار ہی معافی منگ لی ہے, ہو گئی ہے ٹھیک ہے, غلطی ہو گئی ہے تو معافی منگ لی
1: ٹھیک ہو گیا.
6: کئی بندہ کا پیشہ ہی بن جاتا ہے کہ چلو جی وعدہ کر کے معافی منگ لیں گے. یہ تو پھر بار بار پہ نہیں نا ہوں. کئی وہ ویکو جی گل ہے نا, کہ سیانے کواڑی کا جڑا فٹ ہوں مل جا. کئی بول ایسے ہوں ساری عمر بھولتے نہیں, معافی تو بندہ دے ہی جانا. ویکو بھنا برا پی ابھی ان جاتی ہوئی آ رہے, معافی منگنا آ گیا دے رہے ہی آ رہے ہو گئی جی. پر گل وہ غلط نہیں نا رہی.
1: بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر. مہربانی, شکریہ.
6: بہت ساری دعاواں تہاڈے واسطے. ساڈا ایک بھائی ہے ظاہر شہال کوٹ والا, بڑا پیارا بہت اچھا لڑکا ہے.
1: ساڈا بھی بھائی,
6: انہوں بھی سلام. بھائی اپنا
1: جی جی جی.
6: ہاں جی میرا سلام سنچی ریڈیو کلب والا, تہانوں بہت سارا سلام
1: سر. بہت شکریہ, تھینک یو جی, رب رکھا جی. اور جناب گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جی معاف کرنا اور برداشت کرنا ہم کیسے زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے گفتگو چلتی رہے گی. ایک ٹریک میں چلاؤں گا, اس کے بعد ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اینڈ دا ٹریک آئی ایم گونا پلے فار یو اسپیشلی آپ کے لیے, آپ کے نام. رائٹ جناب, تمام سننے والوں کے نام خاص طور پہ. اینڈ عشق by Sarmat and here we go. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 انٹرنیشنل کی ٹرانسمیشن. مجھے کہتے ہیں فرحان خان, دا سٹی آف لو, داتا کی نگری, لاہور شہر سے. اینڈ دس از فار آل آف یو.
7: بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں.

0: रात के 11 बजे है। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत कारोबारी बिरादरी को सहूलत देने और गैर जरूरी ज़ाब्ताकारी के खात्मे के लिए मौसर इकदाम कर रही है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वामे मुत्तहिदा में आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौकिफ भरपूर अंदाज में उजागर किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने जोर दिया है कि पाकिस्तान अपने दिफा और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाई का हक रखता है। एशियाई खेलों में मर्दों के T20 क्रिकेट मुकाबले का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल जापान के शहर नशीन में खेला जाएगा।
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM. This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.
1: This is FM 101, where your spirit is set free.
2: 101 FM.

0: बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की एक नेमत है। हजूमे दोस्ता होना, किसी संगत का मिल जाना, कभी महफिल में हंस लेना, कभी खलवत में रो लेना, कभी तन्हाई मिलने पर खुद अपना जायजा लेना, कभी दुखते किसी दिल पर तशफ़ी का मरहम रखना, किसी आंसू को चुन लेना, किसी का हाल ले लेना, किसी का राज मिलने पर लबों के अपने सी लेना। Right now, welcome back to the show. एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं सबसे सुनने वालों को रेडियो पाकिस्तान FM 101 के लाहौर स्टूडियो से। मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। आज का हमारा मौजू जिस पे आप लोगों से गुफ्तगू चल रही है और हमारे दोस्त बड़े भरपूर अंदाज में आज शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, हम आज बात कर रहे हैं कि जी के माफ़ करना और बर्दाश्त करना हम ज़िंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। इंसान की शख्सियत है ना, उसको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर वक्त किसी ना किसी लम्हा किसी ना किसी इम्तहान से गुज़रना पड़ता है। जब उसे मोहब्बत मिलती है वो कहते हैं कि असल इम्तहान उस वक्त होता है, और जब उसे किसी की नाकदरी मिले, किसी का इख्तलाफ मिले, किसी से तकलीफ़ का सामना करना पड़ जाए, या किसी ने कोई रंज दिया हो, किसी ने कुछ दुख दिया हो, या वो दुख बार बार देता हो, या वो तकलीफ़ बार बार देता हो, या वो बार बार अज़ियत में देता हो। अब कुछ दोस्तों का ये कहना है कि जी उस शख्स को माफ़ करना कैसा है। हमें एक बड़े ज़बरदस्त भाई हमारे सियालकोट से कॉल कर रहे थे, वो कहते हैं कि जी माफ़ करना जो ना अल्लाह की सिफ़त है, अल्लाह इंसान को बार बार माफ़ करता है, बार बार माफ़ करता है। तो हम इंसान हो के हम माफ़ नहीं कर सकते, क्या हमारे लिए मुश्किल है? बिल्कुल हमारे लिए मुश्किल तो है, हम इंसान हैं, वो रब है, वो रब्बुल कायनात है, वो रब्बुल आलमीन है, वो मेहरबान है, वो करम करने वाला है, वो पर्दे रखने वाला है। तो ये इंसान में के लिए तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आपने निभाना होता है ना, जब आपने जो शख्स हर इख्तलाफ़ पे के बावजूद कहते नहीं मैंने अपना रिश्ता बचाना है, तो फिर उसके लिए आपको कुर्बानी तो देनी पड़ जाती है, बार बार देनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप?
0: जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से?
1: अनवर जावेद भट्टी बात कर रहा हूँ सर, सियालकोट।
0: क्या बात है, अनवर जावेद भट्टी जो है ना, ये हमारे बड़े पुराने कॉलर, बड़े पुराने दोस्त हैं। कैसे हैं भट्टी साहब?
1: सर अल्लाह का करम और आपकी आवाज़ सुनी और आपका टॉपिक सुना
0: सर,
1: मुझसे तो नहीं रहा।
0: अच्छा, क्या बात है, क्या सर, कहेंगे? जी
1: सूरह अल नूर में है कि दूसरों की गलतियां माफ कर दिया करो।
0: वाह,
1: अगर सामने वाला माफ नहीं करता ना, तो सूरह अल बकरा के अंदर है आयत नंबर 199 में कि अल्लाह से माफी मांगो, वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है।
0: वाह वाह।
1: और मैं तो कहता हूँ कि अफजल है वो शख्स जो दूसरों की गलतियों को माफ करके अपना दिल साफ कर लेता है।
0: बहुत।
1: वो देखिए, हम अशरफुल मखलूकात हैं, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि इंसान गलती का पुतला है, कि कोई भी ऐसा मुबारा इंसान नहीं है जो गलती ना करता हो।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: लेकिन हम अशरफुल मखलूकात होने के नाते हम पे भी ये फर्ज है कि छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दिया करें और इतना हौसला रखें माफ करने का
0: जी,
1: कि हम अपनी अना में गुम ना हो जाएं कि ना जी उन्हें तो मैनू ऐ किया सी, तो मैं तो माफ करना ही नहीं, मैं तो सारी जिंदगी उन्हें मुंह नहीं लाना। ये सर इस तरह नहीं होता।
0: अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि जो माफ़ करने की जो सलाहियत, समझ लें हम इसको, ये कह सकते हैं स्किल कह लें, ये सीखनी पड़ती है क्या, बच्चों को सिखानी पड़ती है या बड़े एक पक्की उम्र में कैसे कैसे वो कहते हैं हम माफ़ कर ही नहीं सकते, साढ़े नल भी नहीं पड़ी
1: है? ऐसी बात नहीं है, देखें जो हमें बचपन से घर से तालीम मिलती है सर, जो हमारे बुजुर्ग हमें जिस माहौल में हम पलते हैं बढ़ते हैं, जो हमें वो सिखाते हैं ना, हम जो है ना वही सीखते हैं।
0: ठीक है,
1: आप देखें कि यहाँ तक भी होता है कि अगर किसी का कत्ल भी हो गया हो ना, तो अगर उसके अंदर अल्लाह ताला रहम डाल दे या वो उसकी सोच ऐसी हो तो वो कत्ल भी माफ कर देता है।
0: ठीक है,
1: तो ये और बर्दाश्त करना, देखें बर्दाश्त आजकल हमें बर्दाश्त रही कहाँ है। बर्दाश्त नाम की चीज जो है ना, मेरे ख्याल है कि अभी किसी को कहे ना उर्दू में बर्दाश्त लिखो तो शायद वो उर्दू में बर्दाश्त भी ना लिख सके, क्योंकि बर्दाश्त जो है, अब तो हम किसी को वो कहते हैं ना कि अभी मैं सुबह ही बात हो रही थी कि खातून जा रही थी तो बाइक के ऊपर पीछे बैठी थी, सर पे दुपट्टा भी नहीं था, तो मजाकतन किसी ने उनसे कहा कि बहन जी जरा अपना चादर से संभाल लो। अब उनका जो है ना हाथ जो है ना फौरन सर के ऊपर गया, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं जहन में सोचा कि यार मैंने तो दुपट्टा भी नहीं लिया, चादर में कहां से संभालूं।
0: बिल्कुल ठीक,
1: ठीक है ना
0: जी, बिल्कुल।
1: अब ये है कि बर्दाश्त जो है वो हमें करना पड़ेगा, अगर हम बर्दाश्त नहीं करते ना,
0: बिल्कुल ठीक बात है,
1: तो सर हमारे लिए जो है ना फिर इस माशरे में रहना
0: मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल
1: मुश्किल हो जाएगा।
0: थैंक यू सो मच।
1: माशरे को जन्नत बनाना है तो बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और छोटी मोटी गलतियों को माफ भी करना पड़ेगा। मेरे से लाहौर के तमाम सुनने वाले रियाज भट्टी साहब आपको सुनते हैं वहाँ पे,
0: सर बहुत शुक्रिया,
1: और हमारे सियालकोट के जितने भी माशाल्लाह लिस्टर हैं, तनवीर साहब हैं, आसिफ बाजवा हैं, सब बहन तलत सुल्ताना हैं, रियाना तबस्सुम हैं, ये आपको भी सुनते हैं
0: सर, बहुत शुक्रिया, इनकी मोहब्बत है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रहें
1: जी, बहुत शुक्रिया जी, ओके सर,
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़। राइट जनाब, अनवर जावेद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, और खुदा करे कि ऐसा हो, हम बर्दाश्त भी करें, हम माफ़ भी करें और माफ़ करने वाले बन जाएं, अपने दिल से अपने दिल को साफ़ करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला सकें। वेल जनाब, आज का मौजू जिस पे हमारी गुफ्तगू चल रही है, 04221100101 हमारे रबते का नंबर, जिस पे आप लोगों की कॉल्स हमें मौसूल हो रही हैं और साथ साथ आप लोगों के पैगामात हैं उनको भी हम शामिल करते चलें, कि आप FM 101 के ऑफिशियल पेज पे हमें मैसेज करते हैं। इकबाल हैदर हमें सुन रहे हैं इस वक्त, इकबाल भाई बहुत शुक्रिया, वेरी नाइस फ्रॉम लाहौर एंड गुड न्यूज़ रेडियो पाकिस्तान जिंदाबाद। कवल नाज इस वक्त हमें सुन रही है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर हमें सुन रहे हैं इस वक्त, बहुत शुक्रिया, और मलिक वसीम आवान हमारे साथ हैं, मलिक वसीम आवान साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। साजिद अली लाडला हमें सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, सत्य बिस्मिल्लाह जी आनू, बहुत शुक्रिया जी साजिद, बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में शामिल होने का। और कवल थैंक यू सो मच, आज के मौजू के हवाले से ज़रूर बताइएगा, माफ़ और बर्दाश्त कैसे करें हम अपनी ज़िंदगियों में, कुछ लोग तो तैयार ही नहीं माफ़ करने के लिए, वो कहते हैं करना ही नहीं माफ़, जो मर्जी कर लो। अस्सलाम वालेकुम।
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम फरहान भाईजान, मोहम्मद तारिक
0: जी, तारिक भाई कैसे हैं आप?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप सब के लिए और करम है उस आस पास का बेपनाह, आप सुनाए सब खैर हो? आप
0: बिल्कुल ठीक ठाक, क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से?
2: फरहान भाई, शेख सादी फरमाते हैं कि हम हजार गलतियां होने के बावजूद खुद से कितनी मोहब्बत करते हैं और दूसरों की एक गलती की वजह से दूसरों से नफरत करने लग जाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक।
2: और उन्होंने फरमाया कि हमें चाहिए या तो हम खुद गलतियां करना छोड़ दें या दूसरों को माफ करना सीख लें।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
2: और दूसरी बात ये कि फरहान भाई जान बर्दाश्त की भी एक हद होती है, ये तो लफ्ज आपने सुना भी होगा।
0: बिल्कुल
2: ठीक है, जब बर्दाश्त की हद खत्म हो जाए तो किसी किस्म की किसी से ज्यादती ना करो कि नारा गान।
0: बिल्कुल ठीक है।
2: हाँ, और दूसरी जो बात आप कर रहे थे ना फरहान भाई जान, खामोशी एक ऐसा दरख्त है जिस पर कभी भी कड़वा फल नहीं लगता।
0: बहुत अच्छे।
2: और जिंदगी तो खूबसूरत नेमत है, इसमें आने वाला हर लम्हा इंसान के लिए एक नया तजर्बा है।
0: वो ये भी कहा है ना कि माफ़ी मांगने से ये कभी साबित नहीं होता कि हम गलत हैं और वो सही हैं। माफ़ी का असल मतलब ये है कि हम में रिश्ता निभाने की काबिलियत है, यानी कि हम रिश्ता निभाना चाहते हैं, तो इसीलिए हम अपना रिश्ता निभाना भी चाहते हैं और बचाना भी चाहते हैं।
2: बिल्कुल, ये
0: अच्छा, माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है कि माफ़ करने वाला बड़ा होता है?
2: माफ कर देने वाला और माफी मांग लेने वाला दोनों ही अफजल है।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक,
2: दोनों ही अफजल है। और माफ करना चाहिए, अगर मैं अपनी खुद बात करूँ ना अपनी फरहान भाई जान, ये सब कुछ हो सकता है, मैं दुश्मन से भी अदावत नहीं रखता।
0: क्या बात है,
2: दुश्मन से सिर्फ मोहतात रहता हूँ।
0: बहुत अच्छा,
2: दुश्मन से भी अदावत नहीं रखनी चाहिए, किसी किस्म की गलत राय किसी के बारे में भी अपने माइंड में तसव्वुर भी ना करें।
0: अच्छा गुमान रखें।
2: अच्छा गुमान,
0: बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया तारिक भाई, सलामत।
2: कोई अगर गलत है तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना।
0: बिल्कुल,
2: आप राइट हैं, बस खुद को राइट रखें। माफ करना चाहिए और माफ करने के लिए ये हौसला चाहिए कि किसी से अदावत न रखे।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच।
2: किसी किस्म के भी, हमारा मजहब इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। हम मोहतात रहने का दर्श हमारा देता है मजहब।
0: बिल्कुल सही, ठीक सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
2: बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी पूरी मैनेजमेंट को सल्यूट और सभी सुनने वालों को मेरा सलाम। अल्लाह ने के बान से सदा जीवे सोना पाकिस्तान।
0: थैंक यू जी। और इज नाउ दैट वाज तारिक साहब हमारे साथ थे और बड़े खूबसूरत अंदाज में आते हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं। अभी जो मैं ट्रैक चलाने जा रहा हूँ, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इसको चलाऊँगा, एंड आई मस्ट से कि इसको आप दिल के कानों से सुनिएगा। आबिदा परवीन की खूबसूरत सी आवाज़ को मैं शामिल करूँगा, एंड दिस ट्रैक इज़ ऑनेस्टली वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और दिल के कानों से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और बहुत खूबसूरत कलाम है और बहुत खूबसूरत आबिद जी ने इसको गाया। जी चाहे तो शीशा बन जा।

0: कभी खामोश बैठोगे कभी गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे कभी कुछ गुनगुनाओगे। मैं इतना याद आऊंगी मुझे जितना भुलाओगे। कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, कोई जब पूछ बैठेगा खामोशी का सबब तुमसे, बहुत समझाना चाहोगे मगर समझा ना पाओगे। कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी दुनिया मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कमी दुनिया की हर शय में पाओगे। कहीं पर भी रहे हम और तुम, मोहब्बत फिर भी मोहब्बत है। कहीं पर भी रहे हम और तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत है। तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे। अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। इतनी खूबसूरत शायरी किधर से ढूंढ ढूंढ के आज आप लाए हजरत?
0: बस आपकी कॉल आई है ना, तो ये बस समझे उसी का फैज है।
1: बहुत खूबसूरत आज शुरू से आपने कई पढ़ी है गजली सुनी थी। हाँ, गजलें थी, बहुत ही खूबसूरत थी।
0: यदि
1: किसकी थी ये? परवीन शाकिर का कलाम तो नहीं लग रहा मुझे।
0: नहीं, ये परवीन शाकिर का नहीं है।
1: हाँ, उनका अंदाज अलग है। बहुत अच्छा फरहान, आज इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है।
0: उनका अंदाज तो क्या अंदाज है,
1: क्या बात है, क्या बात है। उनका तो अंदाज ही अलग है। किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी गए
0: आपकी आवाज थोड़ी सी जी जी कुछ हो रहा है। चले, मैं अभी भी नहीं ठीक आ रही, सॉरी। मैं बहुत माजत खाऊं, आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही थी।

0: ये कब कहती हूँ तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहां बेजार हो जाओ। मुलाकातों में वक्फा इसलिए होना जरूरी है कि तुम एक दिन जुदाई के लिए तैयार हो जाओ। बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को, बहुत जल्द समझ में आने लगते हो जमाने को। बहुत आसान हो थोड़े बहुत दुश्वार हो जाओ। बला की धूप से आई हूं मेरा हाल तो देखो, बस ऐसा करो तुम साया दीवार हो जाओ। अभी पढ़ने के दिन हैं, लिख भी लेना हाल दिल अपना। अभी पढ़ने के दिन हैं, लिख भी लेना हाल दिल अपना। मगर लिखना तभी जब लायक इजहार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा है?
1: कराची से कॉल कर रही हूँ, फातिमा नूर।
0: जी फातिमा, कराची से, कैसी हैं आप?
1: जी मैं बहुत सही, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे भाई?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। आगे परवीन कॉल कर रही थी कराची से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कॉल में कुछ प्रॉब्लम
1: जी अभी हुई है, मैं उनकी भी सुन रही हूँ।
0: जी क्या कहेंगी फातिमा?
1: आपका शो मैं बहुत सुनती हूँ, बस कॉल पहली दफा आपसे वो हुई है बात करने।
0: चले बहुत शुक्रिया जी आपका।
1: और टॉपिक बहुत अच्छा लाए, अभी एक साहब को आपने समझाया, उन्होंने कहा कचरा बार बार डालते हैं और हम बार बार डालते हैं। देखो सफाई निस्मान है, और सबर तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत दी है। कहा है तुम सबर और शुक्र पे रहोगे ना, यकीन करो अपनी जिंदगी कामयाब हो जाओगे। आप टॉपिक बहुत अच्छा लाए, मैं सुनती हूँ आपका, कभी मुझे टाइम मिलता है मैं जरूर आपका अपना प्रोग्राम सुनती हूँ और फेसबुक पे भी लाइक करती हूँ, आपको बहुत अच्छा लगता है।
0: बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे और
1: आपको भी सलामत रखे। बहुत अच्छी आप बात करते हैं समझाने वाली। मैं तो ये कह रही हूँ ना सर, हमारे अंदर ये नहीं है। अब जो माहौल सोशल मीडिया का हो गया है ना, हमारा दुनिया से रابطہ हो रहा है, कोने कोने से हमारा रास्ता मोबाइल के जरिए हो रहा है। मोबाइल हमारे हाथ में है चलाना, हमें मैनेज भी इसको डालना है, हमें बात भी करनी है, तो ये चीज अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दी है, तो हम इसको सबर से चलाए, शुक्र से चलाए, और फिर ये हमें दीन में चलना चाहिए। हम जो मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, हमें दीन से वो होना चाहिए, दीन से बात करनी चाहिए, तो फिर हमें शुक्र और सबर में बहुत फर्क हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: ठीक।
1: वो होता है। चले खुश रहे, आप सलामत रहे और दुआ में याद रखिए।
0: और जना बहुत शुक्रिया। ना चाय पिलाई जैदी साहब ने आज, पता नहीं क्या आज कोई तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है आपकी, है ना? चले कोई बात नहीं। वेल जनाब, 04-2111-0101 हमारे रबते का नंबर। लास्ट कॉलर लेते हैं और फिर उसके बाद क्या ख्याल है आपका? वाह भाई, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम फरहान साहब, और आपको और आप तमाम सुनने वालों को सलाम।
0: बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब?
2: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी सलमान भाई क्या कहेंगे?
2: अल्लाह का शुक्र, मैं बस यही कहूँगा कि सारी जिंदगी यही कोशिश की है कि किसी का दिल ना दुख जाए। अगर इसी कोशिश में बंदा लगा रहे तो माफी माफी है कि बंदा कि मेरी वजह से किसी की तकलीफ ना हो गई, इस कोशिश में लगे रहे हैं या अल्लाह कोई ऐसी बात ना हो जाए कि किसी को दुख पहुंच जाए, कोई तकलीफ हो जाए। और बाकी माफी की जो बात है, यकीन करें गुस्सा है भी, तो जो अगली नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फौरन सारे गुस्से खत्म हो जाते हैं।
0: अच्छा,
2: सब माफियां मुफियां हो जाती है, अल्लाह की मेहरबानी, सब माफियां हो जाती है। जितना मर्जी गुस्सा आया हो, अगली उससे आने के बाद अगली जो नमाज पढ़ी जाती है ना, उसके पढ़ने के सलाम देने के फौरन बाद गुस्से सब खत्म है, खुद बुला लेता हूँ सबको फिर सभी।
0: अच्छा।
2: तो अल्लाह का शुक्र है ये। तो ये बस इसी कोशिश में लगे रहना चाहिए कि किसी कोई नाराज ना हो जाए, बस ये कोशिश रखेंगे तो फिर माफी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माफ तो वो रब की जात करती है सबको, पता नहीं वो हम कितने गुनाहगार हैं, पता नहीं हमें माफ करता है, हम माफियां मांगते हैं वो माफ कर देता है, वो बड़ा गुरू रहीम है। और आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है
0: सर, बहुत शुक्रिया,
2: हर दफा सुनता हूँ
0: सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया जी।
3: बिल्कुल
0: ठीक ठाक सर जी। सर क्या कहेंगे शहजाद भाई, आपके पास एक
3: मिनट है। सब्र के बारे में, सब्र के बारे में है ना जी, तो सब्र करना चाहिए, जब तक हो सके सब्र करना चाहिए। देखिए हम कोई भी काम करते हैं ना, तो सब्र जो आप हमसे ऊपर होते हैं वो बताते हैं, तो वो भी सब्र से सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक।
3: जो हमें खाने के दरमियान जो हमारे जो जुबान दांत के नीचे आ जाती है, तो तब भी तो सब्र करते हैं ना जी हम।
0: बिल्कुल ठीक।
3: ये देखे कि जो किसी का काम है वो सब्र से ही होना चाहिए, एक दूसरे बैठना नहीं चाहिए, जब बैठते हैं तो काम ज्यादा हो जाता है, इसलिए तो वो गाना बना है, दो अल्लड़े जुबान एक दूसरे नु तान चाकू छुरी चल जान सीधे जेल विच जा, रोटी दाल नाल खान फिर वड देने वाल रबल पिंडी दे पटा की जमीन आसमान पीली पत्ती वाला
0: पास
3: रब तेरा मेहरबान। देखो सब्र नहीं कर रही काम होंगे, तो माफ कर देना चाहिए जितो हाथ तिकर होवे ना, माफ कर देना चाहिए जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम,
0: शुक्रिया। और इस नाथ अवाज शहजाद साहब हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहाब साहब आपके पास मोबाइल है? अच्छा चले, थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहे, आप मैसेजेस के थ्रू हमारे साथ रहे, आप सब की मोहब्बतों का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की पार्टिसिपेशन आपकी बड़ी ज़बरदस्त थी, सबर, शुक्र और माफ़ी। मैंने शो के आगाज़ में एक बात बताई थी कि जो तहकीक, लेटेस्ट तहकीक यह है कि जो लोग माफ़ करने वाले हैं ना, वो हमेशा बड़े मुतमिन रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, ज़्यादती के बावजूद लोगों को माफ़ कर देते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, क्योंकि मकसद जिनका बड़ा है ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तला तुम खैज मौजों से घबराए नहीं करते। मकसद जो है ना, ज़िंदगी का जो कैनवस है ना, वो हमेशा बहुत वसी होना चाहिए, बहुत वसी होना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी उलझनों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों में, बड़ी बेमानी सी बातें होती हैं, बड़ी गैर अहम बातें होती हैं, बड़ी गैर ज़रूरी बातें होती हैं, अपने आप को, अपनी थाट्स को उस धारे में फंसाया होता है। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, अगर इसको हम दिलों में नफ़रतें रख के, कदूरतें रख के, दूरियां रख के, नाराज़ियां रख के हम गुजारेंगे, तो अपनी ही लिए मुश्किल पैदा करेंगे, खुद ही अज़ियत में रहेंगे, खुद ही कर्ब में रहेंगे, तकलीफ़ में रहेंगे। इस कर्ब को अपने अंदर से निकालना होगा, इस अज़ियत को निकालना होगा, इस दिल को, दिल खुदा का घर है, इसको साफ रखना होगा, इस दिल में खुदा बसता है। और रब कहता है ना कि मैं रब्बुल आलमीन पूरी कायनात में नहीं समा सकता, मैं रब हूँ, लेकिन एक मोमिन के दिल में मैं समा जाता हूँ। तो जिस दिल में रब बसता है, जिस मन में रब बसता है, रब्बुल आलमीन बसता है, रहम सारे जहानों का बादशाह बसता है, उस दिल को साफ़ रखना होगा, माफ़ करना होगा। आप दिल को साफ़ करें अल्लाह की रज़ा के लिए, आप यकीन जाने आपका दिल लाइट हो जाएगा। आज से अहद करें, सोचें कि हमने लोगों को माफ़ करना, बस अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए। सोचें आप, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने इतबा की और सांसों ने वफा की। आपसे मुलाकात होगी ट्यूज़डे के शो में 8-10 इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। फरहान खान इज साइनिंग आउट। टिल देन अल्लाह निगेबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: Abulesire şuma ve male.
1: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफा फिर जी आपको खुश आमदीद प्रोग्राम वन वन इंटरनेशनल में। और बिल्कुल जी, मूड जो है वो बन गया है मूड। ओके जनाब, आज आपसे मैंने पूछना है कि आपकी सोच, आपकी पसंद नापसंद, फैसले जो है वो क्यों बदलते हैं और उनके पीछे क्या मुहरकात होते हैं, किन किन चीज़ों से हमारी सोच बदलती है, किन किन चीज़ों से हमारी पसंद नापसंद बदलती है, किन चीज़ों से आपके अंदर बर्दाश्त पैदा होती है और किन चीज़ों से आपकी बर्दाश्त ख़त्म होती है। आप जज्बाती हैं तो आपके जज्बात कैसे बदलते हैं, अगर आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो गुस्से पे आप कंट्रोल कैसे पा सकते हैं, किस तरह से आप अगर बहुत नॉर्मलाइज्ड हैं और आप बहुत ही मासूम भोले भाले सादे से हैं और लोग आपको चबा जाते हैं और आप चाहते हैं यार थोड़ा सा गुस्सा होना चाहिए, थोड़ा सा ना एक पर्सनैलिटी में थोड़ा सा एक सख्ती वाला रुझान होना चाहिए, तो वो आप पैदा कैसे कर सकते हैं या क्यों पैदा होते हैं वैसे रुझानात, या अगर वो गुस्से वाला है तो वो क्यों है गुस्से वाला और अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है। सोच इंसान की किस तरह से बदलती है, पसंद किस तरह से बदलती है, नापसंद चीज़ें जो हैं वो पसंद में कैसे बदल जाती हैं, फैसले हम जो पहले लेते थे वो अब नहीं लेते, या फैसलों पर पछतावा हम करते हैं कि यार ये वाला फैसला ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो अब जो हम सोचते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए था तो हम किस बुनियाद पे सोचते हैं।

अच्छा आप मुझे ये बताएंगे जी कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले आप जिस तरह के इंसान थे, क्या आज आप वैसे ही इंसान हैं? जो जिसका एक सिंपल सा बड़ा जवाब है कि सभी लोगों ने ये कहना है कि नहीं, आज हम वैसे नहीं हैं और डेफिनेटली हम वैसे नहीं होते, क्योंकि 5 साल का अरसा बहुत बड़ा अरसा होता है और इस अरसे के अंदर हम बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, बहुत कुछ बीत चुका होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर और उस बीतने के बाद हम बहुत तब्दील हो जाते हैं। और वो तब्दीली कैसी है आपकी ज़िंदगी में? क्या आप बहुत एग्रेसिव हो चुके हैं या आप बहुत नॉर्मलाइज्ड हो चुके हैं? क्या आपको गुस्सा आता है या नहीं आता? या जी आज से 5 साल पहले जो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी वो आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं? और कभी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी जिस चीज़ को आप समझा करते थे, क्या आज वो आपके लिए कामयाबी है या नहीं है? क्या जो आपके लिए आज से 5 साल पहले टारगेट था वो क्या आज आपके लिए टारगेट है, या आप उसको बड़ा टारगेट समझते हैं या नहीं समझते? और अगर आप समझते हैं उसको बड़ा टारगेट तो फिर भी हम बात करेंगे कि आप क्यों समझते हैं उसको बड़ा टारगेट, और अगर नहीं समझते तो फिर क्यों नहीं समझते? क्योंकि आपने तरक्की कर ली होगी, आपने सीख लिया होगा। तो ये ज़िंदगी की बड़ी एक दिलचस्प हकीकत है जी कि इंसान वक्त के साथ साथ बदलता है, लेकिन सवाल यह है कि इंसान क्यों बदलता है? कभी उम्र उसे बदलती है, कभी हालात बदलते हैं, कभी तजुर्बा बदलता है, कभी कोई नाकामी बदल देती है, कभी कोई कामयाबी बदल देती है, कभी कोई इंसान बदल देता है। कोई ऐसा इंसान इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है जो मुकम्मल तौर पर बदल के रख देता है, या बाज़ूकात कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको बदल देते हैं, आपके सोचने के जाविये को तब्दील कर देते हैं, जो इंसिडेंट्स आपको शायद उम्मीद नहीं होती कि इससे ऐसा हो जाएगा। और अगर किसी को आप बताएं ना कि ये वाला वाकया मेरे साथ हुआ था और उसके बाद में इतना इस तरह से बदल गया था, तो वो सामने वाले को भी शायद यकीन नहीं आएगा या आपको भी यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या यार, इसका तो बिल्कुल ऐसा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए जिस तरह का इम्पैक्ट तुमने लिया है। खैर जनाब, आज से 5 साल पहले जो टारगेट्स थे वो आज वो टारगेट्स नहीं है। लाइक मैं अगर कहूँ कि एक नौजवान अगर आज से 5 साल पहले, लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज से 5 साल पहले मुझे एक अच्छे कैरियर की शायद तलाश थी, एक अच्छी गाड़ी की तलाश थी, एक अच्छे घर की तलाश थी, और मुझे लगता था कि यार ये जो माइलस्टोन है ना, इसको मैंने अचीव करना है और इतनी दौलत बनानी है या इतना सब कुछ करना है। और जब आज 5 साल बाद शायद मैं उससे बहुत ऊपर हूँ या शायद मैं उस तक हूँ या शायद उस तक नहीं पहुँचा, लेकिन फिर भी जो माइलस्टोन्स है ना वो तो अचीव कर ली, लेकिन टारगेट जो है वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक अजीब सी ज़िंदगी है, एक अजीब सी सिचुएशन होती है इंसान की ज़िंदगी में कि जिस चीज़ को वो हासिल कर लेता है उस पर वो रुकता नहीं है। शायद कि मैं कहूँ कि ये सही भी होता है इंसान की ज़िंदगी में और कहीं गलत भी होता है कि आगे से आगे बढ़ने की तमन्ना जो है वो इंसान को शायद आज यहाँ तक पहुँचा गई। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये तरक्की का सफ़र हमने तय किया है, ये हमारे नामुतमईन होने की वजह से आज हमने ये सफ़र यहाँ तक तय किया है। लेकिन अगर हम मुतमईन नहीं होते ना तो तब भी बड़े मसाइल होते हैं कि हम मुतमईन जब नहीं होते तो दूसरों को, बहुत सारे लोगों का इत्मीनान हम छीन लेते हैं। पहले टारगेट्स थे जी कि ये वाली चीज़ें हासिल करनी हैं तो ज़िंदगी सेटल्ड हो जाएगी। अब टारगेट शायद ये हैं कि यार अपने लिए नहीं, उसके लिए भी हासिल करना है, उसके लिए भी करना है, उसके लिए भी करना है। और फिर टारगेट बन जाता है कि यार आज से 10 साल बाद में जब यहाँ पे पहुँचूँगा तब एनर्जीज ये नहीं रहेगी, जब सेहत ये नहीं रहेगी, तब शायद के मेंटल लेवल इस तरह का नहीं रहेगा, या तब शायद हालात इस तरह के ना हो, तो हालात बुरे हो गए तो तब क्या करना है। तो टारगेट्स जो है वो चेंज होते चले गए। मैं जब भी कोई मौजू आपको समझाता हूँ सबसे पहले उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि वो मैंने क्यों रखा है या क्यों सोचा है या किस तरह से आपने उसको समझना है। वो कि मेरी कोशिश हर दफ़ा नाकाम रहती है और कॉलर जब भी कॉल करते हैं मौजू के हवाले से बात नहीं करते या शायद उसको गेट नहीं कर पाते, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप तक वो बात पहुँचा सकूँ या वो बात कर सकूँ कि जिससे कि आप शायद कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ। कुछ पहुँच जाते हैं, कुछ नहीं पहुँचते, कुछ बस सिर्फ गाने सुनते हैं, कुछ सिर्फ बस कॉल सुनते हैं, कुछ बस सिर्फ दूसरों को सलाम भेजते हैं, कुछ बस सिर्फ दूसरों की तारीफ करते हैं,
कुछ आके बस यही कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और अगर सवाल कर लिया जाए ना कि प्रोग्राम जो है वो क्यों अच्छा था, क्या अच्छा था, क्या अच्छा था उसमें, तो वहाँ पे शशधर हो जाते हैं लोग, गंग हो जाते हैं लोग, और वहाँ से आगे फिर बस अच्छा था जी, अच्छा था जी, बहुत चंगा जी। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है और उसको हासिल करने के बाद ये सोचता है कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा था, क्या वाकई मुझे उस चीज़ की ज़रूरत थी भी या नहीं थी। यकीन जानिए ये बहुत होता है कि हमें बाज़ औक़ात उन चीज़ों के पीछे हम भाग पड़ते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं होती, और हम जब उसको हासिल कर लेते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि यार ये तो चाहिए ही नहीं था भाई, और जिसकी वजह से हम ये हासिल कर रहे थे और जिसको दिखाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे थे, आज वो मेरी ज़िंदगी में तो है ही नहीं, हम उसको बहुत पीछे छोड़ के आ गए। लाइक अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि जो लोग अपने गाँव में होते हैं या अपने किसी विलेज के अंदर से जब तरक्की करने के लिए इन शहरों का रुख करते हैं और शहरों में आते हैं, तो उनके गाँव में उनके साथ एक रेस में कुछ लोग दौड़ रहे होते हैं, उनके ख़ानदान में कुछ लोग उनके साथ दौड़ रहे होते हैं, जब उन सबको वो क्रॉस करके आगे पहुंच जाते हैं और एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, शहर में हो या किसी दूसरे मुल्क में जाके हासिल कर लें या अपने ही जगह पे रह के कुछ हासिल कर लें, तो तब उनको लगता है कि यार अब ना मेरा कॉम्पिटिशन शायद इस शहर वालों के साथ है या इस मुल्क वालों के साथ है, जो इधर मेरे साथ मौजूद है ना उनके साथ वो कॉम्पिटिशन बिल्डअप करना शुरू कर देता है, और वो गांव के लोग रह जाते हैं पीछे, वो रिश्तेदार पीछे रह जाते हैं, वो आपके जान पहचान वाले दोस्त अहबाब पीछे रह जाते हैं, आपके नए टारगेट सेट हो जाते हैं और आपके साथ जो कलीग्स बैठे होते हैं आप उनके साथ मुकाबला करना शुरू कर देते हैं, यार इसके पास दो घर हैं तो मेरे पास दो होने चाहिए, इसके पास ये वाली गाड़ी है तो मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास ये वाला फ़ोन है तो मेरे पास ये फ़ोन होना चाहिए, अगर मैं दौलत के एतबार से कहूँ अगर इसके पास ये वाला प्रोटोकॉल है तो ये मेरे पास होना चाहिए, और अगर इसने फलांस जगह पे घर बनाया है तो मुझे भी वहाँ घर बनाना है, तो हमारे टारगेट्स चेंज हो जाते हैं। तो फिर जब हम कभी कहीं बैठ के सोचते हैं और जब उम्र के उस हिस्से में पहुँच जाते हैं जहाँ हम सब कुछ हासिल कर चुके हैं, बच्चे जो है वो बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो फिर हम सोचते हैं यार वो कलीग्स कहाँ रह गए जिनसे आज से 5 साल पहले जिनके साथ नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे, वो तो कहीं और चले गए और आज हम उस तगोदो में यहाँ पहुँच आए, सेहत को बिगाड़ लिया और हमने बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लगा ली, बहुत सारी नेगेटिविटीज़ की, बहुत सारे लोगों का हक खाया, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, हमने अपने साथ भी किए, लेकिन जब मुड़ के देखते हैं जिसको जलाने के लिए, जिसके मुकाबले के लिए हम वो कर रहे थे, वहाँ तो मुकाबला रहा ही नहीं, वो तभी हमें फ़ोन भी नहीं करता, या मैं कुछ कर भी लूँ तो उसकी ज़िंदगी के ऊपर असर नहीं पड़ता, या वो कुछ कर ले तो मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं, जब हमारे हाथ से इख्तियार से चीज़ें फिसलने लगती हैं और अगली जनरेशन में जाने लगती हैं, तो तब वहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें डिप्रेशन होता है, हमें एंजाइटी होती है, हमें खुद पसंदी होती है, और जब हम किसी दोस्त अहबाब के साथ या किसी यंग जनरेशन के किसी भी बंदे के साथ बैठते हैं या हम अपने बच्चों के साथ इवन बैठते हैं, तो उनको बताते हैं भाई हमने बड़ा कुछ किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन हम उस जनरेशन को वहाँ पे पहुँचा चुके होते हैं जिनके लिए वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, उनको लगता है अच्छा ये तो यार मेरे बाएं हाथ तक गेम है, लेकिन वो उस जनरेशन के लिए बाएं हाथ तक गेम है, आपके लिए शायद वो बहुत मुश्किल चीज़ थी, और अगर इस जनरेशन के बच्चे को आपकी जगह पर रख दिया जाता तो शायद वो कर ही ना पाता ये चीज़ें जो आपने की हैं, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि आपने बहुत थोड़ा किया है। इसीलिए हमें अक्सर अपने वालिदैन से शिकायत होती हैं, बहुत सारे लोगों को शिकायत होती हैं जो तरक्की कर जाते हैं, अपने वालिदैन ने जो ज़िंदगी में हासिल किया उससे बहुत ऊपर तक हासिल कर लेते हैं, तो अपने वालिदैन को कहते हैं कि आपने किया क्या है हमारे लिए, क्या क्या किया आपने, ये आपने 2-3 करोड़ रुपये की जो घर बनाए हैं, जो जायदाद बनाई है, ये तो मेरे 6 महीने की मार है, 6 महीने में कमा लूँगा मैं। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि अगर हमें वो सिनेरियो दे दिया जाए, वो हमें एनवायरनमेंट दे दिया जाए, वो सारे रिसोर्सेज दे दिए जाएं जो मेरे वालिद को मैसर थे, तो शायद कि हम उसमें से आधा भी ना कर पाते, आधा तो क्या, शायद हम उसको शुरू भी ना कर पाते जो हमारे हमारे चाल चलन है या जो जिस तरह हम सहल पसंद हैं या सुकून पसंद हैं। So
दोस्तों हम मेहनत को कभी कैलकुलेट नहीं करते। आप सब जो मेरे इस वक्त सुनने वाले हैं, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि एक मिनट के लिए अपनी आंखें मूंदिए और ये सोचिए कि आपके वालिद ने आपके लिए क्या किया है। देखने को तो शायद आपको लगेगा कि एक छोटा सा घर है और उस घर के अंदर आप तीन भाई हैं, चार भाई हैं, और उसके अंदर से आपके वालिद आपके सब भाइयों के लिए अलग अलग एक एक घर नहीं बना सके और आपको नहीं दे सके, तो आपको लगेगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और आपने दो सालों में, तीन सालों में, पाँच सालों में, दस सालों में शायद अपने वालिद से दस गुना ज़्यादा कमा लिया है। लेकिन आपको कहीं अगर आप अपनी आंखें मौंद के और बगौर अपने आप को सोचें और अपने वालिद के उस वक्त को सोचिए कि जिन सिचुएशंस के अंदर, जिस तरह के एनवायरनमेंट में और जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, शायद आप नहीं कर पाएंगे, आप कर ही नहीं पाएंगे। शायद क्या मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर मैं अपनी बात करूं और मैं अपने वालिद साहब को कंपेयर करूं, तो मैं कहता हूं कि अगर मैं 10 गुना भी उनसे ज्यादा मेहनत कर लूं, तो मैं उन जैसी मेहनत कभी कर ही नहीं पाऊंगा। और ना मेरे अंदर वो स्टैमिना है, ना मेरे अंदर वो करेज है, ना मेरे अंदर वो जुनून है, ना वो जज्बा है, ना वो मोहब्बत है। वो जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना किसी चीज़ को करने के लिए, मेहनत को करने के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने का जो मेहनत, जज्बा, हौसला है, वो उस इंग्रेडिएंट्स में से शायद मेरे पास 10% भी ना हो। जब मैं अपनी फैमिली के लिए 10% भी ना कर पा रहा हूँ जो उन्होंने किया है अपने वक्त के अंदर। और सभी के लिए ऐसा होता है। आज की जो जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, हम जब आगे बढ़ जाएंगे और हमारी जब जनरेशन बड़ी हो जाएंगी, जो अभी जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, वो जब बड़ी हो जाएगी, तो वो ये कहेंगे कि यार तुम लोगों ने क्या किया भाई, ये AI क्या होता है भाई, हाँ ये AI क्या चीज़ है जिसको आज हम बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे हैं। वो उस वक्त के लोग कहेंगे यार ये क्या है AI। मतलब अगर आप अपने दादा से पूछें या परदादा से पूछें कि रेडियो क्या था, रेडियो क्या चीज़ थी, तो उनको पता है कि रेडियो क्या चीज़ थी, रेडियो के थ्रू क्या क्या कम्युनिकेशन होती थी। और आज के अगर जेन अल्फा के बच्चे को अगर आप कहें ना कि रेडियो, कहें यार रेडियो क्या होता है भाई, क्या बात कर रहे हो रेडियो, यार AI की बात करो, अब तो AI का दौर है। तो मैं आपको वसूख से कहता हूं कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगर आप किसी के साथ तस्करा करेंगे कि यार AI में ना एक जेमिनी होता था, एक ChatGPT होता था, एक क्लॉड होता था, मैं अपनी प्रेजेंटेशंस ना क्लॉड से बना लिया करता था, मैं जेमिनी से तस्वीरें बना, यार ऐसा होता था ना, मैं सोचता था ना कि यार मैं FM 101 के स्टूडियो में बैठा हूँ माइक के सामने और मैं अपने प्रॉम्प्ट देता था जेमिनी को, तो मेरी तस्वीर बन जाया करती थी। तो वो जो जेन अल्फा है ना, वो हंसेगी आप पे के भाई क्या क्या किन बातों पे आप खुश हुआ करते थे। अब सोचिए, तस्वीर कीजिए कि हम बड़े खुश हुआ करते थे जिस वक्त नया नया मोबाइल फोन आया और MMS हुआ करता था। तो अगर हम किसी को पिक्चर भेजते थे थ्रू MMS, जिसके 2.5 रुपये कटा करते थे, तो हम बड़े खुश होते थे और बहुत बड़ी अपनी उसको ना जिद्दत समझते थे, क्योंकि हर शख्स MMS कर नहीं पाता था, उसकी सेटिंग्स होती थी, वो सेटिंग्स करके MMS किया जाता था। तो जो पुराने वाली जनरेशन होती थी उसको MMS का पता ही नहीं होता था, मैसेज का पता ही नहीं होता था। तो हम समझते थे यार ये 90s वाले जो बच्चे हैं ना कि यार MMS बला चीज़ है यार। अच्छा, ब्लूटूथ जब आया, उससे पहले इंफ्रारेड होता था, तो हम जब ब्लूटूथ आया तो हमने कहा अच्छा यार ब्लूटूथ के थ्रू दूर बैठे हुए चीज़ें ट्रांसफर हो जाती हैं, तो बहुत बड़ी जिद्दत समझी जाती थी ब्लूटूथ को। लेकिन आज अगर ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ यूज ही नहीं होता भाई। तो हर जनरेशन ने अपने वक्त के अंदर, कहने का मकसद यह है कि उसने बहुत कुछ किया है, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ किया और हमारे बुजुर्गों के बुजुर्गों ने बहुत कुछ किया, और आज हम अपने हिस्से का किरदार इस दुनिया में निभाएंगे और आगे चले जाएंगे, और आने वाली जनरेशन अपना किरदार निभाएगी, और उससे आने वाली जनरेशन उस जेन अल्फा को शायद कुछ ना समझे। सो इट्स अ वे ऑफ लाइफ।

So, जनाब बात हो रही थी कि हमारी पसंद नापसंद बदलती रहती है, हमारी ख्वाहिशात बदलती रहती हैं, हमारे हमारी वो चीज़ें जिन चीज़ों के से हम खुशी हासिल करते हैं वो खुशी के रिसोर्सेज ज़रिए बदलते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि उस वक्त में जो गेम्स होती थी, जब नई नई वीडियो गेम्स आई, और मुझे याद पड़ता है कि मुझे एक वीडियो गेम जो है वो मेरे एक मामू ने गिफ्ट की थी। जिन चीज़ों के से हम खुशी हासिल करते हैं वो खुशी के रिसोर्सेज ज़रिए बदलते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी कि उस वक्त में जो गेम्स होती थी, जब नई नई वीडियो

भाई 90s के बच्चों को याद हो कि जब नए नया वीडियो गेम्स आई थी तो उसके अंदर वो टैंक्स वाली गेम होती थी, और टैंक्स के थ्रू ना आपने अपनी पोजीशन चेंज करनी होती थी। अगर आप लेन नंबर 1 में हैं तो ऊपर से टैंक आ रहे हैं तो आपने गोले मार के उसको ख़त्म करना होता था, और अगर टैंक बिल्कुल आपके सर पे आ गया तो आपने लेन चेंज करनी है। उस गेम को मैं खेला करता था, और पूरा पूरा दिन शायद उसके ऊपर गुजर जाता था। जब स्कूल से वापस आते थे तो सबसे बड़ी खुशी ये होती थी कि यार उस वीडियो गेम को खेलना है, और फिर वक्त गुजरता गया, और अक्सर ऐसा होता था कि उसको इतना हम खेलते थे कि उसके अंदर जो सोल्डिंग वायर्स होती थी वो टूट जाया करती थी। तो मेरे घर के साथ एक पड़ोसी मेरे जो थे वो, उनको बड़ा शौक होता था इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में चीज़ें करना, उनके पास एक वो टांके लगाने वाला एक वो होता था, काविया जैसे बोलते हैं सोल्डिंग वायर का, तो उनके पास वो होता था, और मैं उनके पास जाता था कि इमरान भाई प्लीज़ मेरी ये गेम ठीक करके दे दें। और हर दूसरे दिन ना मैं उनके पास ले जाता था कि इमरान भाई तंग पड़ गए, तुमने कहा भाई तू मेरी जान छोड़ दे, गलती से तुम्हें बता दिया कि मेरे पास काविया मौजूद है। तो जनाब वक्त गुजरता गया, और फिर आपकी दूसरी वीडियो गेम्स आई जिनके एक गेयर नुमा एक होता था, और साथ आपके 4-5 बटन होते थे, उसके ऊपर हम टेकन 3 खेला करते थे। फिर उसके बाद एक्सबॉक्स आ गया, और फिर पता नहीं क्या से क्या आ गया, और अब तो बच्चे पता नहीं क्या क्या खेलते हैं भाई। फिर ऑनलाइन गेम्स आना शुरू हो गई, और अब तो ऑनलाइन गेम्स बहुत खेली जाती हैं। इसी तरह अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो पहले लोग गाने जो है वो रेडियो पे सुना करते थे। उसके बाद फिर जब जैसे फोन्स आए ना, तो फोन्स के अंदर मेमोरी कार्ड के अंदर डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता था, लोग मेमोरी कार्ड के थ्रू चीजें जो है वो लेते थे। अच्छा तेरे पास कितने गाने, कौन से गाने, अच्छा लता का गाना, अच्छा फलां का गाना, अच्छा नुसरत साहब के गाने, अच्छा कौन से गाने, तो वो गाने जो है वो आप वहाँ से लिया करते थे, अपनी अपनी पसंद के गाने डालते थे। फिर मोबाइल्स के अंदर मेमोरी बहुत शॉर्ट होती थी, तो एक आध कोई वीडियो गाना होता था और उस गाने को इतना सुना जाता था, बार बार देखा जाता था। अगर आप किसी बार्बर हजाम की दुकान पर जाएं तो उसने भी सामने ना एक अपने मोबाइल को रखा होता था, उसको रिपीट पे लगाया होता था, वो गाना सुन सुन के बंदे के कान अक जाते थे। बंदा कहता था यार भाई तू मेरे बाल बना ना बना, ये गाना बंद कर दे। बार-बार हजरात जो थे वो उस गाने को कोई महीनों सुना करते थे, और सालों शायद वो एक ही गाना सुना करते थे। फिर वक्त बदलता गया जी, फिर यूट्यूब आ गया, और यूट्यूब के ऊपर भी आपको बहुत गाने मिलने लग गए। फिर साउंड क्लाउड आ गया, और फिर अब स्पॉटिफाई, अब तो स्पॉटिफाई है ना। तो ये वक्त के साथ साथ हमारी पसंद नापसंद बदलती रहती है, हमारे तजुर्बात, हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीजें हमारी बदलती रहती हैं। और सवाल आपसे मैंने ये किया था कि आज से 5 साल पहले आप जहाँ थे आज भी वहाँ पे हैं, या आपने अगर तब्दीली कोई की है, पसंद नापसंद में तब्दीली हुई है, तो वो क्या हुई है? आपके आज से 5 साल पहले को टारगेट्स थे तो आज क्या टारगेट्स हैं? क्या वही टारगेट्स हैं या टारगेट्स आपने बदले हैं? जो टारगेट्स आपने सेट किए थे वो टारगेट्स आपने हमने अचीव किए हैं या नहीं किए? इस हवाले से आज आपके साथ मेरी गुफ्तगु होगी जनाब। तो होपफुली कि मैंने अपना जो टॉपिक है वो आपको बड़े ऐसन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं अब एक गाना आपको सुनाता हूँ और वापस आता हूँ, और फिर वापस आके जी आपके साथ आपकी कॉल्स और आपके फेसबुक के कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करूंगा। मुझे RJKB कहते हैं, मनोवन इंटरनेशनल आप सुन रहे हैं।

0: RJKB is here with you on 101 International. Live every Monday and Friday from 12 to 2. Turn up the volume.
1: 오케이 जनाब वेलकम बैक वंस अगेन जी 12:36 है आज के भी आपके साथ हैं और आज 3 अक्टूबर 2026 है और मेरे साथ फेसबुक पे पहुंच चुके हैं बहुत सारे लोग आ चुके हैं जी। क्या हाल अहवाल है सभी लोगों के, जिन लोगों ने कमेंट किए हैं। अच्छा लगता है यार जब आप कमेंट करते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। खैर जी, उज़्मा एजाज मेरे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं और उज़्मा एजाज ने मुझे बहुत ज़बरदस्त पोइट्री भेजी है। थैंक यू सो मच उज़्मा एजाज, बहुत अच्छी आपने मुझे गज़ल भेजी है, मैं भी शामिल करूँगा, ठीक है ना। एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा म्यूज़िक लगा के उसके पीछे मैं इसको पढ़ूंगा फिर, ठीक है। फैसल अब्बास मेरे साथ हैं जी और कहते हैं प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, लाहौर से हैं। कोमल ईमान मेरे साथ यूएसए से हैं, कह रही हैं जी कि आपका वेट हो रहा था। थैंक यू कोमल, बहुत शुक्रिया, लो में आ गया। और मोहम्मद काशिफ मेरे साथ हैं जी, सलाम कह रहे हैं। और वकास तबस्सुम हैं जी मेरे साथ, कह रहे हैं अल्लाह आपको शिफा दे, आमीन सुम आमीन। वैसे मैं ठीक हूँ बिल्कुल वकास, मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। और इसके अलावा जी मेरे साथ उम्मे हानी हैं जी, उम्मे हानी केपी के सवाबी से प्रोग्राम सुन रही हैं जी और कह रही हैं कि मैंने पहली दफ़ा आपके प्रोग्राम में मैसेज किया। थैंक यू जी उम्मे हानी, आपको शुक्रिया। और कहती हैं जी कि मैं सवाबी से सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, मन लिया कि आपने सवाबी से सुन रही हैं। गुल यासीन नाज है मेरे साथ और आप मुझे सुन रही हैं जी लाहौर से, मुल्तान से। थैंक यू सो मच गुल यासीन, आपका भी शुक्रिया। इसके अलावा जी ताहिर अजीज़ मेरे साथ हैं और वो भी सुन रहे हैं जी रावलपिंडी से। राहत बानो मुअज़्ज़म मेरे साथ रावलपिंडी से हैं जी, प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ मुझे फिर उज़्मा ने एक पोइट्री भेजी है, ये भी शामिल करूँगा उज़्मा, बिल्कुल ज़रूर शामिल करूँगा। और उज़्मा कह रही हैं कि आपने बहुत अच्छी बातें की हैं।

आमना है जी मेरे साथ जीके से, और जीके क्या है, गुज्जर खान आई थिंक सो मुझे कह रही हैं। आमना बहुत शुक्रिया, और ईमान अली मेरे साथ हैं जी, थैंक यू सो मच। हमीद गुल साहब आए हैं जी मेरे साथ और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मे अल्लाह मे यू ऑलवेज बी सेफ। थैंक यू सो मच हमीद भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, उन्होंने उर्दू में लिखा उर्दू में लिखा और फेसबुक ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। खैर, हमीद गुल साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें हमेशा, बहुत शुक्रिया हमीद भाई।

0: अच्छा जी, जिंदगी में हमारे कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि जिनको हम कभी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, कभी कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लाइक कुछ लोगों से हमें बहुत मोहब्बत होती है, और वक्त के गुजरने के साथ साथ वो जो मोहब्बत है वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होना शुरू हो जाती है, और फिर करते करते वो मुनहदम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या बाज़ औक़ात वो ख़त्म नहीं होती तो उसमें बढ़ावा आता है। वो मोहब्बत जो पहले बहुत कम हुआ करती है, वो वक्त के साथ साथ उसकी आबियारी होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगती है, और इतनी बढ़ जाती है कि हमें महसूस होने लगती है कि शायद ये अब हमसे जुदा नहीं हो पाएगी। ज़िंदगी में कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, और उनकी एक नज़र हमारे लिए शायद वो ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो नज़र जब हम पे पड़ने लग जाए ना, और फिर जब हम उससे सैर हो जाएं, तो हमें लगता है कि यार ये नज़र इस नज़र के लिए, अरे इसके लिए मैं इतना इतना ज़्यादा परेशान था, इतना मैं पागल हुआ पड़ा था कि इस एक नज़र के लिए, इस एक शख्स से सिर्फ बात करने के लिए। क्या है इस शख्स में? कुछ भी नहीं तो यार, कुछ भी तो नहीं निकला इसमें।
1: कच पत्थर
0: यही जिंदगी है, और बहुत दिलचस्प हकीकत है ये। इंसान वक्त के साथ बदलता है, कभी उम्र से बदलती है, कभी हालात बदलते हैं, कभी तजुर्बा बदलता है, कभी कोई नाकामी, कभी कोई कामयाबी, और कभी कोई इंसान बदल देता है।

तो आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान भी है कि जिसको आप पहले बहुत हाई रेट किया करते थे या बहुत लो रेट करते थे, आज उसे बहुत हाई रेट करते हैं, जिसे बहुत हाई रेट करते थे आज उसे लो रेट करते हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि वो आपके लिए ऐसी अहमियत रखता था कि बस आपके हिसाबों पर बस वही छाया रहता था। आज आप सोचते हैं तो आप हंस जाते हैं, मुस्करा जाते हैं, आपको हंसी आती है कि यार कितना बेवकूफ था मैं या कितनी बेवकूफ थी मैं। जी हाय हाय निकल जाती है, हाय हाय हाय हाय। कच पत्थर दे थे वो, और कांच के पत्थर थे वो, कि जिनको हम समझते थे कि बहुत मजबूत चट्टान है। अब ये भी मुझे बता सकते हैं। कोई जाए। अभी मोहम्मद मेरे साथ आए हैं जी फेसबुक पे, अभी अभी आए हैं।

0: किंजा उस्मान है मेरे साथ जी कराची से, और किंजा उस्मान कहती हैं कि मेरी जिंदगी में था, कौन था आपकी जिंदगी में ऐसा? अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जनाब?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं?
1: अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप इस्लामाबाद की बस्ती से बात कर रहे हैं, आई थिंक आरजे के भी आपका नाम है, और बहुत ही फंटास्टिंग शो, पुरानी बातें शेयर कर बैठे हुए हैं इस्लामाबाद और किंजा नवाज के, पूरे पाकिस्तान के शाम बने हुए हैं इस टाइम 101 के स्टूडियो से इस टाइम।
0: जी जी जनाब, आप कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: बस आम सा इंसान हूँ मैं सर, मैंने कहा चलो हम भी थोड़ी सी
0: इंसान, सारे इंसान मेरे भाई, इंसान भाई मेरे सारे ही आम होते हैं, किसी के साथ माल्टे नहीं लगे होते, आम ही होते हैं सारे।
1: आप एक एक चीज शॉर्ट कर रहे हैं इसमें से जो आपने सारी बातें की।
0: अच्छा बताइए, वो आप बताइए जरूर, इसीलिए शॉर्ट की थी कि आप बताइए।
1: कैसेट वाला काम।
0: हाँ, कैसेट में भी गाने हुआ करते थे, वाह, बाकी मैं मिस कर गया था।
1: खाली कैसेट लेके जाते थे तो कहते थे भाईजान ये और इसमें नूर जा के गाने कन्वर्ट करते हैं, वो कहता था यार परसों ले जाना फिर कैसेट।
0: अच्छा, मैंने कभी नहीं कन्वर्ट करवाया, ऐसे कभी हुआ नहीं है कि मुझे तो जो,
1: हमारा खुद,
0: लेकिन कैसेट सुनी जरूर है।
1: ये हमारा खुद का कारोबार था ये।
0: अच्छा, मतलब उस
1: हमारे घर में अभी भी ये सिस्टम वीसीआर से लेके एलसीडी और पुराने प्रोजेक्टर और वीसीआर ये डीवीडी पुरानी अभी तक ये कारोबार, जितना कारोबार 1988 चलता आ रहा था ना, बड़ा हुआ सारा सिस्टम।
0: अच्छा, तो आपने सब
1: पुराने जो टूटियां चलती थी ना उस दौर की, टूटियां समझते हैं?
0: टूटियां
1: जो पुराने दौर।
0: हाँ, वो टूटियां, वो जो अक्सर जो शादी ब्याह पे लोग बजाया करते थे,
1: शादी ब्याह पे जो चलाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: वो भी पड़ी हुई है।
0: अच्छा यार, फिर तो आपका घर तो म्यूजियम हुआ ना।
1: एग्जैक्टली, हमारे पुराने सिस्टम में जो सारा कुछ पड़ा हुआ था।
0: अरे वाह वाह वाह वाह, उसको तो फिर जरूर आप सोशल मीडिया पे डालिए उसकी तस्वीर बना के किसी दिन।
1: नहीं सर, मैं एक आपको एक शेर सुना देता हूँ। जमीर और दिल की आवाज
0: जी।
1: जमीर कहता है कि दिल समझ जा, जमीर
0: कहता है कि दिल समझ जा,
1: समझ जा। दिल कहता है कि नहीं, मुझे एक बार फिर मोहब्बत करने।
0: हाय हाय हाय हाय हाय,
1: दिल कहता है कि फिर एक बार मुझे मोहब्बत करने दो। जमीर क्या कहता है अब? पहले टूट कर सबक नहीं मिला तुझे अब? कि लौट कर फिर मोहब्बत करने चला है।
0: आहा, पहले तुम्हें सबक नहीं मिला है क्या कि लौट कर फिर मोहब्बत करने चला
1: फिर है? फिर मोहब्बत करने चला है अब।
0: ये असल में ना सारा मसला जमीर अंकल का ही है, वरना जी भर के करने देता।
1: कहता है सर जी, यही चीजें है ना इंसान।
0: हाँ, हमारे मोहल्ले में भी एक जमीर अंकल हुआ करते थे, तो उनकी खुबानियां लगी हुआ करती थी, वो हमें कभी नहीं खोट तोड़ने देते थे। हमें बड़ा गुस्सा आता था कि जमीर अंकल आप ये ना किया करें बस।

0: कमाल बात की आपने। चलें सर, ख्याल रखें अपना।
1: ओके सर,
0: चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये खूब कहा किसी ने कि अब भी आ जाओ, जब ना आए ना तो फिर बंदा कहे कि अब भी आ जाओ, और जब भी मिल जाए ना तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि चलो यार, चलो अब तो आया ना।
2: तमन्ना है
0: और अक्सर नहीं आती, बहुत कोशिश के बावजूद नहीं आती, लेकिन अगर आ जाए ना, मिल जाए ना, तो अपने आप को लकी समझिए कि आपको आ गई।

0: ہیلو کی جینکس کالر ہیں، السلام علیکم جی، کی بھی آپ سے مخاطب ہے، کون صاحب ہیں، کہاں سے ہیں؟ ارے با ارے با ارے با، نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی نذیر کیانی جی، کیانی صاحب لاسٹ پروگرام میں آپ نہیں تھے جی، پہلے تو یہ بتائیے آپ کیوں نہیں تھے
1: لاسٹ پروگرام میں؟
0: جی جی.
1: اچھا پہلے تو میں سوری آپ سے یہ معذرت چاہوں گا کہ شادی تو گو کہ ہمارے دوسرے ہمسائے میں ہے، لیکن آج شادی کا ماحول ہے ہمارے گھر میں.
0: ارے ماشاء اللہ، ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، پھر تو لائٹیں شٹیں جھنڈیاں ونڈیاں لگی ہوں گی، ہے نا؟ آپ کو نذیر صاحب اپنی شادی تو یاد نہیں آ گئی ہے، سب کو دیکھ کے یاد تو آتا ہوگا نا
1: جی. وہ تو آپ کو پتا ہے ہر موقع پر ایسی یادیں جو ہیں تازہ ہو جاتی ہیں جب کہ اس طرح
0: کا. اچھا تو مجھے ذرا بتائیے نا، آپ کی شادی میں کیا ہوا تھا، کیا کیا آپ نے سجایا تھا؟ اچھا آپ نے گھوڑی چڑھے تھے یا آپ کہیں؟
1: جی جی جی جی، ہمارے اس وقت تو سر یہ ہوتا تھا کہ ایک سیرا ہوا کرتا ہے، سیرا،
0: ہاں سیرا، وہ آگے سے پورا دھولا چھپا ہوتا تھا، جیسے عورت کا گھنگٹ ویسے مرد کا سیرا ہے نا.
1: جی جی، تو وہ اور پھر گھوڑی پہ چڑھایا کرتے تھے، اور خاص کر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی، جب دھولے کو نلایا کرتے تھے نا تو پھر وہ کہتے تھے، اس پہ بڑی بات ہوئی پہلے بھی، کہ وہ گڑلی پڑا کرتے تھے. خواتین جو ہے نا وہ گڑلی وہ ایک ہوتی ہے چھوٹی سی گاڑے کی، گڑے ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن چھوٹی سی خوبصورت سی ہوتی ہے، اسے سجا سجا کے لے جا کے پھر پانی کنویں سے یا جہاں پانی لاتی تھی، اور وہ ساتھ ساتھ اس کے جو
0: اچھا وہ دودھ پلائی کی رسم جو آج کل ہے وہ اس وقت گڑولی رسم ہوتی تھی، رائٹ؟ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟
1: نہیں، دودھ پلائی تو خیر آج بھی ہے، وہ اور یہ اور چیز تھی، یہ تو کہ وہ پانی لایا کرتے تھے، وہ پانی پھر جب دھولا وسل کرتا تھا تو اس پانی میں اس کو مکس کیا جاتا تھا.
0: اوکے، اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا،
1: اس پانی کو جو وہ لایا جاتا تھا. تو آتے جاتے ہوئے وہ اپنے وہ جو ہے نا اپنے اپنی جو مادری زبان ہوتی اس میں وہ گانے گایا کرتے، یہ عام فلمی گانے نہیں، اپنے اپنے بنائے ہوئے
0: ٹپے جو ہوتے تھے،
1: اپنے
0: ٹپے ہوتے تھے. اچھا آپ نے
1: کہاں سے کہاں لے گئے، موضوع کیا تھا آپ مجھے کہاں لے گئے؟
0: بس کیانی صاحب آپ نے شادی کی بات کی، دیکھیں ہم تو ایسے ہی ہیں نا، جہاں جس ڈگر لے جائیں وہیں لے جاتے ہیں. اے باد باد تو جہاں جدھر جس ڈگر لے جا.
1: اچھا بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ واقعی انسان میں تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، میں کہتا ہوں جو آدمی جس میں تبدیلی نہیں آتی وہ انسان ہی نہیں ہے. انسان میں تبدیلی ضرور آتی ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اور تبدیل ہونا چاہیے ضرور. تو کوئی وقت ایسا تھا کہ میں، یعنی ایک بات کر لیں کہ آپ ایک لباس پہنتے ہیں، نیا لباس نیا سوٹ پہنتے ہیں، وہ پہلے دن آپ کو بہت اچھا لگتا ہے جی، دوسرے دن پھر اس سے تھوڑی کمی ہوتی جاتی ہے، پھر تیسرے دن اسی طرح وہ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد وہ جو ہے نا اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی. اسی طرح موبائل ہے، موبائل پہلے دن آپ کو بڑا وہ اچھا لگتا ہے، دوسرے دن سے اسی طرح گاڑی ہے، کوئی بھی چیز آپ
0: سمجھتے
1: ہیں تو وہ وقت کے ساتھ. اچھا میں ایک وقت تھا کہ میں کہتا تھا کہ یار میری اگر 50,000 سیلری ہو جائے میں کہتا ہوں کہ میں تو میں دنیا کا میں کیا نہ کیا حاصل کر لوں گا. اور یقین جانیے کہ ٹھیک یہ سوچ آنے کے بعد ٹھیک 3 مہینے کے بعد میری سیلری 2,00,000 تھی، لیکن کچھ عرصے کے وہ جب 2,00,000 ہوئی تو میں بہت رویا، اور وہ رویا اس لیے کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کہاں میں 50,000 کہہ رہا تھا اور کہاں مجھے 2 مہینے کے بعد ہی میری سیلری اتنی ہو گئی ہے. تو میں روتا بھی تھا، اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتے گزرتے وہ 2,00,000 بھی کم لگنے لگی. تو یہ مطلب جو جو انسان کی انکم بڑھتی ہے تو اس کے خرچے بھی بڑھتے جاتے ہیں. پہلے دل چاہتا تھا کہ 5 مرلے کا مکان ہو، پھر دل چاہتا 10 مرلے کا ہو، پھر 10 مرلے کا ہو جائے تو پھر کہتا ہے 1 کنال کا ہو.
0: اچھا کیانی صاحب آپ نے بھی نا مجھے بھی یاد دلا دیا کہ جب میں نے پہلی جب جاب کی نا کیانی صاحب، تو ایک سیلری جو ہے وہ مختص ہوئی تھی کہ یہ سیلری ہوگی نا، اور اس سیلری کے اوپر میں بہت خوش تھا نا کہ یار اتنی اچھی سیلری ہے. اور ساتھ نا جو میرے باس تھے نا انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ کی سیلری ہوگی اور اس سیلری کے ساتھ آپ کو نا انسینٹیو ملے گا. तो मैं, अच्छा जब वो महीना गुजरा ना, तो महीना गुजरने तक मैं सोचता रहा, मैंने कहता यार कि ये जो सैलरी है ना, इसके साथ अगर मुझे कोई बस 70-80 हज़ार रुपये अगर कमीशन मिल जाए ना, तो भाई बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा कि घर का खर्चा, रहन सहन का खर्चा मर्चा पूरा हो जाएगा, चीज़ें पूरी हो जाएंगी ना, और ये सैलरी पूरी की पूरी बच जाएगी। और जब महीना पूरा हुआ ना, और जब इंसेंटिव आया ना कैनी साहब, तो वो मेरे ख्यालात मेरी सोचों से कहीं ज़्यादा था। तो जब वो बहुत ज़्यादा हुआ, और फिर आप यकीन जाने कि मैं इतना खुश था, और मैंने जब अपनी वालिदा को फ़ोन करके बोला कि मैंने कहा अम्मा जी सैलरी तो सैलरी रह गई, इतना इतना ज़्यादा इंसेंटिव है। और अच्छा अम्मा को यकीन ना आए तो मैं अम्मा को बोलूँ अम्मा बहुत बहुत अच्छा इंसेंटिवाइज किया गया और बहुत अच्छी सैलरी है। और अम्मा कहेंगे अच्छा यार इस तरह तो तुम ना दिनों में बहुत अमीर हो जाओगे। अब यकीन जानिए क्या साहब कि ये सिलसिला कुछ 6 महीने गुजरा, 7 महीने के मैं बड़ा खुश होता था और मुतमिन होता था, उसके बाद मुझे अपना इंसेंटिव कम लगने लगा।
1: और बल्कि हालांकि वो बढ़ने लगा था,
0: हाँ वो
1: क्योंकि
0: बढ़
1: आप
0: रहा
1: मेहनत
0: था।
1: करते हैं, काम ज्यादा होता है तो काम के साथ साथ फिर
0: अच्छा
1: इंसेंटिव
0: उसमें
1: बढ़ता
0: ना
1: रहता है
0: एक,
1: ना।
0: उसमें क्या नहीं साहब एक वजह थी जो आज मैं सोचता हूँ ना, तो उसकी एक रीजन थी कि जो मेरे साथ, अब आज प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने कहा ना कि हमारे मुकाबले में, हमारे साथ जिनके साथ हमारा कंपटीशन होता है, वो शायद हमारे रिश्तेदार होते हैं, या हमारे अहले मोहल्ला होते हैं, या हमारे साथ के हमारे बैचमेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जब वो इंसेंटिवाइज में इतना होने लगा ना, तो मेरा जो कॉम्पिटिशन है ना, वो मेरे साथ जिन लोगों को, वो बाकी लोग भी इंसेंटिवाइज होते थे, उनके साथ फिर डेवलप होना शुरू हो गया। मैं कहता अच्छा नहीं, उसको मेरे से ज़्यादा मिल रहा है यार, उसको ज़्यादा मिल रहा है, उसके पास ज़्यादा है, ठीक है उसको थोड़ा, तो ख्वाहिश बढ़ने लग गई। और मैं कहता नहीं यार मेरा कम है, तो मुझे कम लगने लगा। तो ये बड़ी, एक बड़ी ज़बरदस्त साइंस है कैनी साहब, कि अगर हम अपने से ऊपर देखते चले जाए ना, तो हम हमेशा अपने आप को कमतर ही समझेंगे, हमेशा अपने आप को गरीब ही समझेंगे, और हमेशा अपने आप को कम रिसोर्सेज के साथ ही समझेंगे। और ये वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है कि अल्लाह ताला इंसान को ऐसे किसी ऐसे घन चक्र में फंसा देता है ना, कि ज्यादा की हासिल में, ज्यादा की लालच में, कि वो उससे कभी निकल ही नहीं सकता।
1: लेकिन क्या भी, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि देखिए, अगर आप बीमार हैं तो जाएं हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं, आपको पता चलेगा कि किस किस्म के बीमार लोग हैं। अगर आप में और सोच आ रही है तो जाएं कभी रात को रोड पे चक्कर लगाएं, फुटपाथ पे लोग सोए हुए हैं,
0: जी जी जी
1: वो भी अल्लाह की मखलूक है ना।
0: जी जी बिल्कुल
1: हमें
0: ऐसे,
1: हमें तो सिर्फ आपके फर्ज नहीं लगे, वो
0: बिल्कुल ऐसे,
1: हो सकता है हमसे प्यारे हो, जो वो वहां पे
0: इसमें कोई
1: फुटपाथ
0: शक
1: पे
0: नहीं,
1: सोए हुए हैं।
0: इसमें कोई शक नहीं।
1: तो ये बात ये है कि हम लोग जो है बस नाशुक्रा है ना, बस मुख्तर बात यह है कि इंसान नाशुक्रा है,
0: और
1: इंसान
0: यही
1: अपने
0: नाशुक्रापन
1: अल्लाह
0: इंसान को
1: ताला
0: यहां तक पहुंचा गया।
1: फरमाते
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हैं
0: थैंक यू कैनी
1: इंसान
0: साहब, वक्त बहुत हो चुका, अगर आपकी इजाजत हो
1: नाशुक्रा
0: तो मैं आपसे आपसे इजाजत चाहूँ।
1: है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत
0: थैंक यू
1: शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त अता फरमाया, ये
0: थैंक
1: आपको
0: यू,
1: बहुत
0: थैंक यू
1: शुक्रिया
0: कैनी
1: जी।
0: साहब, वरना फिर बाद में गिला करेंगे लोग, कहेंगे कैनी साहब ने उतना टाइम दे
1: जी जी
0: देते।
1: बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी,
0: चले
1: बहुत
0: थैंक यू,
1: बहुत शुक्रिया।
0: अल्लाह हाफिज़ जी। ओके जनाब, एक कॉल लेते हैं और उसके बाद एक गाना आपको सुनाते हैं, वापस आते हैं, मुझे आज के भी कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा बहुत कम आवाज़ आ रही है, अगर आप थोड़ा ऊंचा बोलेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, बहुत कम आ रही है, नहीं आ रही सही। चलो गुजारा कर लेते हैं, बताओ अरीबा क्या कहने आई हो। तब्दीली के बारे में जो बात कर रहा था, वो आपके आपके मोहल्ले में ना, जो इस तरफ वाली गली है ना, उसमें एक नई नाली बनाई है उन्होंने, हाँ, तो उसमें से पानी बड़ा तेज गुजर रहा था, तो एक बीच में ना खड्डा डाला गया है, तो उस तब्दीली की बात कर रहे थे कि उस नाली को जो बनाया गया है ना, उसके अंदर एक पत्थर रख के खड्डा डाला गया कि यार पानी थोड़ा स्लो स्लो जाए। हाँ तो वो असल में पानी बहुत तेज जा रहा था ना, तो उन्होंने सोचा कि यार आगे वाले मोहल्लों में पानी जरा ज्यादा तेज ना चला जाए, आगे कुछ बह ना जाए, क्योंकि अकलें भी ना बह रही होती हैं अक्सर, तो उन्होंने कहा ज्यादा ना बह जाएंगे। हाँ तो इसलिए उस तब्दीली की बात हो रही थी। हाँ, यही मौजू है ना, मैं कह रहा था कि वो नालियां बन रही है ना आजकल, इलेक्शन आने वाले ना, तो आपके मोहल्ले में नालियां बनाई जा रही हैं। अच्छा आप, मैंने नाली के बारे में कोई बात नहीं की।
2: हमने ज्यादा से कुछ नहीं आए थे, लेकिन वाली शहर से इंसान के पास जो चीज होती है जब तक उससे अगर बढ़ भी जाए तो इंसान के लोग ख्वाहिशात होती रहती है।
0: हाँ चलो बस यही बात कर रहा था, चलो सुनती रहो ठीक है। चलो ठीक है ओके, मैंने समझाया भी ठीक नहीं है और इसको समझ भी ठीक नहीं है, बस ये बताने आई थी मुझे रीबा जी। ओके अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम लाहौर से रिमशा बात कर रहे हैं जी। रिमशा कैसी हैं?
3: थोड़ी सी बात करूंगी फिर कहेंगी सारी रिमशा बहुत टाइम ले जाती है।
0: नहीं नहीं रिमशा बहुत सारा टाइम ले लो, आज तो मैं चाय साथ बनवा के लेके आया।
3: उस दिन की तरह नहीं, अब मैं उस दिन की तरह बात नहीं करूंगी।
0: नहीं नहीं रिमशा मैं आज
3: इंसान के दिल में ना काफी बातें होती है, इंसान कहते हैं कि बस मैं कह दूं।
0: नहीं रिमशा आप कहो कोई मसला नहीं, दिस इज माय शो यार, आई एम द ड्राइवर ऑफ दैट शो। कौन है मजाल है कोई आपको कुछ कहे, बोलो आप जितना बोलना चाहती हो।
3: नहीं रहने दो कोई बात नहीं, वैसे टॉपिक को बात करूंगी। टॉपिक से आपने अभी ये
0: नहीं, आज तो रिमशा बात होगी आपके साथ और ढेर सारी बात होगी, पूरे के पूरे में कितने मिनट बात होनी चाहिए भाई आप बताएं।
3: नहीं फिर
0: आज मैं साथ लेके आया हूँ रिमशा, आज मैं साथ लेके आया हूँ और आज तो मैंने ना और भी बहुत सारी चीजें साथ रखी हैं, सौंफ शौंफ भी रखे मेरे साथ। हाँ
3: नहीं फिर वो फिर लोग
0: काली मिर्च भी मैं
3: नहीं मैंने सौंफ
0: रिमशा मैंने सौंफ के साथ काली मिर्च भी रखी हुई है साथ, अगर किसी को मिर्च चाहिए मैं मिर्च दे दूंगा, अगर कुछ सौंफ चाहिए किसी को सौंफ दे दूंगा, और किसी को अगर कोई मीठा चाहिए तो उसके लिए मैंने छुहारे भी रखे हुए।
3: अच्छा
0: हाँ
3: फिर मुझे दे रहे हैं आते।
0: नहीं नहीं आपको क्यों रूम, मैं तो इधर अपने स्टूडियो में मौजूद अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। मेरे
3: आप अकेले अकेले खा रहे हैं ना फिर?
0: नहीं अकेला अकेला बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त आरजे भी बैठे हुए हैं और एक कोऑर्डिनेटर भी बैठे हुए हैं। तो मैं मतलब आपको मैं दे नहीं सकता ना, आप दूर है ना,
3: बस सिलाई मार दे ना दिल खुश हो जाएगा।
0: नहीं मैं झूठी सिलाई नहीं मारता होता,
3: देख लें बात नहीं।
0: हाँ लेकिन आपको ये मैं सलाह मार सकता हूँ कि आप जितना मर्जी बात करें आज आपकी कॉल नहीं काटनी मैंने।
3: नहीं सर मैं टॉपिक भी बात करूंगी, ज्यादा नहीं करती।
0: चलें बोले
3: भाई मैं अगर मैं इसे बताऊं, इंसान आपने बोला ना कि इंसान कैसे चेंज हो जाता है, कैसे तब्दीली आ जाती है, काफी कुछ इंसान मैं समझती हूँ अपने अपने दिमाग से मैं कहूंगी कि इंसान को ना बास सफर रवैये इग्नोर करना, किसी का जाना ही इंसान को बदल के रख देता है।
0: जे बात तो क्या बदला आपके अंदर क्या यार, बात सुनो। अच्छा रिमशा बात सुनो ना, अच्छा रिमशा रिमशा रिमशा का ये बड़ा मसला है, रिमशा सुनती नहीं है सुनाती रहती
3: है।
0: रिमशा खलो जा
3: और
0: रिमशा एक मिनट रुक जाओ ना
3: जी,
0: क्या खा के आती हो?
3: क्या खा के आती हूँ? हाँ। मैं सिर्फ खाना खाती हूँ, आज मामा ने साग बनाया है मेरी पसंद का तो मैंने वो खाया था।
0: ये साग जो भी चीजें खाती है ना उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं ये वाले,
3: तो यानी इससे बंदा ज्यादा बोलता है।
0: हाँ ये जो भी साग खाता है ना उसके साथ बहुत मसाइल होते हैं, या तो वो बोलता बहुत ज्यादा है या वो जुगाली बहुत करता है साग वाला ना, मतलब क्योंकि भारी होता है ना जरा मैदे पे भारी जाता है।
3: नहीं मैं बकरी नहीं हूँ ना
0: मैंने कौन सा बोला क्या बकरी है, इंसान अक्सर जुगाली करते रहते हैं ना,
3: चुप हो जाते हैं। आप फरमाया क्या कह रहे हैं?
0: साग जो है ना वो चबाना जरा ज्यादा पड़ता है ना, ये अगर
3: नहीं उसको ज्यादा अच्छा बना रही है तो ज्यादा चबाना नहीं पड़ता, सिर्फ रोटी चबानी पड़ती है।
0: हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं जो बात कर रहा था मैं रिमशा भूल ही गया हूँ ना, जो मैं आपसे कहना चाह रहा पूछना चाह रहा था मैं भूल गया।
3: जी जी पूछें।
0: अब मैं भूल ही गया आप क्या पूछूंगा, आप चुप ही नहीं किया आपने।
3: फिर आपने खाना नहीं खाया, आपके पास खजूरे वगैरह वो आपको नजर आ रही है इसलिए आप भूल गए।
0: हाँ तो पता नहीं वो मैं भूल गया हूँ, बस फिर अगले प्रोग्राम में पूछूंगा आपसे ठीक है।
3: ठीक है तो मैं बात मुकम्मल कर लूँ अभी।
0: हाँ जी करिए।
3: तो ऐसा होता है कि बार बार इंसान इस तरह भी चेंज हो जाता है, इंसान को अपने टाइम को पता चल जाता है।
0: हाँ रिमशा याद आ गया, रिमशा याद आ गया, याद आ गया, रिमशा याद आ गया।
3: हाँ जी।
0: हाँ तो क्या कह रही थी आप?
3: देख लें फिर आप उस दिन की तरह करें, ठीक है यार
0: भाई अल्लाह हाफिज़। ओके जनाब वापस आते हैं, मुझे आज के भी कहते हैं जी, गाना आपको सुनाते हैं और वापस आके आपकी कॉल जो है वो प्रोग्राम कैसे बनाएंगे जी, मेरे साथ रहिएगा, मुझे आज के भी कहते हैं। ये मजेदार वाला गाना सुनाऊंगा आपको।

RJKB is here with you on 101 International, live every Monday at

0: ओके जनाब, फेसबुक के दोस्तों को शामिल करते हैं जी। अरूज फातिमा बहुत शुक्रिया कहती हैं जी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर प्रोग्राम एंड योर वॉइस, थैंक यू सो मच। अरूज किंजा उस्मान मेरे साथ हैं और वो कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड इट वाज इन माय लाइफ, ये था मेरी जिंदगी में, कोई था मेरी जिंदगी में। कह रही जी कराची से सुन रही हूँ आपको, बिनती सईद मेरे साथ हैं जी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग, आई एम वेरी गुड, आई एम परफेक्टली फाइन बिनती सईद, और कहती हैं आई एम लिसनिंग टू योर शो। अच्छा यार, ये तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्यों हो जाती है, मेरे मोबाइल में मेरे सिस्टम में क्या मसला है भाई, मैं इंग्लिश के उर्दू के जो मैसेजेस हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाते हैं मेरे सामने, ये क्या इशू है, किसी को पता है अगर तो मुझे ज़रूर बताए। खैर जी, बिनती सईद कहती हैं क्या हाल है भाईजान, मैं आपका प्रोग्राम जो है वो आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ, पहले जब मैं इमरान अली मानी को सुना करती थी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे जी, इमरान अली मानी की, अल्लाह ताला उसकी कब्र को ठंडी करे, अल्लाह ताला उसकी आखिरत की मनाजिल को आसान करे। तो बिनते सईद बस सिलसिले ऐसे ही चलते हैं, कोई आता है कोई जाता है। कल इमरान था यहाँ पे, आज मैं हूँ यहाँ पे, कल कोई और होगा यहाँ पे। इमरान भी आया था जाने के लिए, मैं भी आया हूँ जाने के लिए, और कल जिसने आना है वो भी आएगा जाने के लिए। खैर उदास कर दिए बिनते सईद आपने। मानूर बलोच महानूर है मेरे साथ जी, बलोच जादी हैं जी, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ आर यू डूइंग, और कहती हैं शो इज वेरी गुड, आई एम अच्छा जी, उन्होंने भी फिर देखो ना, फिर वही हो गया। कहते हैं जी कि मैं आपको हमेशा सुनती हूँ और आज बहुत टाइम के बाद जब वो पार्टिसिपेट कर रही हूँ जी, आपको सलाम कहती हूँ, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हाल अहवाल आपके कैसे हैं। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, तो मानूर ज़रूर पार्टिसिपेट किया करो, आप पार्टिसिपेट करती हो तो फिर हमें अच्छा लगता है। सलमा राशिद है मेरे साथ और वो कहती हैं जी कि कैनी साहब की कॉल जो है वो बहुत अच्छी थी। किंजा मुझे कहती हैं कि रिमशा का जो मसला है वो बहुत गहरा है, रिमशा की क्या बात है और आपकी भी क्या बात है। कराची से सुन रही हैं जी। मानूर कहती हैं कि आरजे में लास्ट एक या दो साल से काफ़ी चेंज हुई हूँ, कॉज मैंने अपनों को दूर जाते हुए देखा है। बिल्कुल जी, इंसान की ज़िंदगी में जो ख़ास होते हैं वो आपकी ज़िंदगी से जब जाते हैं तो आपको बड़ा दुख लगता है और आपको लगता है कि यार ज़िंदगी में थोड़ी मुश्किल हो गई है, मुश्किल हो जाती है जाने से। कॉलर लेते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है?
1: वालेकुम सलाम, खुर्रम भाई कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मलक इरफान बात कर रहा हूँ, मंडी वाले
0: जी। इरफान साहब,
1: तो मौजू पे आपने दो तीन मौजू दिए हैं, लेकिन वो एक आपने बात पूछी थी कि कोई आपकी जिंदगी में ऐसा भी था कि मतलब जिसका पहले आप चौबीस घंटे जिक्र करते थे तो अब जब याद करते हैं तो वो मतलब ना आपको हंसी आती है कि यार किसको मैं याद करता था। तो आपने ना मेरे दिल को तार को छेड़ दिया। एक ना आजाद कश्मीर का मेरा दोस्त था राजा कबीर, रेडियो पे मैं उसको सुना करता था।
0: अच्छा,
1: तो किसी तरीके ना मुझे उसका नंबर मिल गया। तो खुरम भाई मैं इतना वो ना पहाड़ी में शेर बोलता था, मैं अमन बख्श रहमतुल्लाह अलैह आके, तो उन इशारों का मैं फैन था, लेकिन वो ना इशारे ही मुझे नजर आते थे और कुछ नहीं नजर आता था।
0: अच्छा,
1: तो जब मुझे कुछ और नजर आया ना, तो खुरम भाई यकीन करें आप तो कहते ना हंस देते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे बस में हो तो मैं अपने आप को जूते मारूं। मैं इसका फैन था।
0: अच्छा, तो किसी का फैन होना, किसी का फैन होना बुरी बात तो नहीं है ना?
1: यार केपी में मतलब ना ऐसी क्या खासियत है कि तुम सोते नहीं हो कि प्रोग्राम मिस ना हो जाए। तो मैं बता रहा था कि इनकी जो वो हंसी की अदा है ना,
0: अच्छा
1: वो हमें सोने नहीं देती, और यकीन करे खुरम भाई क्यानी भाई और आप इस वक्त जो है ना बहुत ही मेरे दिल से दुआ होती है कि आपकी वजह से ना मैं बहुत मतलब ना एक बीमारी की दुनिया से निकल आता हूँ और बहुत चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। मेरी दुआ है कि पता नहीं कितने लोग यार मुझ जैसे होंगे जो आपकी वजह से हंसते होंगे, कुछ सीखते होंगे।
0: चलें, अच्छा अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं इरफान भाई,
1: दो पूछें
0: आप अगर मुनासिब समझे तो मुझे इसका जवाब दे दें, बड़ी एक सीरियस बात है मैं आपसे पूछना चाहूंगा। वैसे मैं सीरियस बातें आपको पता करता नहीं हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि मैं आपके साथ सीरियस बातें ना करूं, लेकिन अब आपने इतनी सीरियस मौजू छेड़ दी है तो मेरी कोशिश है कि मैं आपसे बड़ी सीरियस बात है लेकिन ना चाहते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप माइंड ना करें तो बताएंगे
1: तो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा।
0: बताएंगे ना आप प्लीज मुझे
1: जी।
0: तो दूसरी दफा जूते खाने का क्या इरादा है? दूसरी दूसरी दफा जब दिल किया जूता खाने का मुझे बताना, मैं 8 नंबर का ला के दूंगा, ठीक है?
1: गरम भाई छोटी सी एक बात करूंगा कि आप कह रहे थे ना कि
0: अभी भी छोटी सी,
1: मतलब इंसान बदलता है, जब बदलता है मतलब जहाँ किसी कुर्बानी की खातर बदल जाता है,
0: हाँ।
1: मतलब किसी को खुश रखने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है, तो जब जब माँ बाप का या किसी खास का साया डलता है ना, तो इंसान फौरन बदल जाता है। तो जूते आप मुझे जरूर ला के दें यार, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी बहाने आप कुछ दिन मेरे करीब तो होंगे ना।
0: हाँ चल, कपड़े भी ला के दूंगा, वो भी बदल लिया करो। ओके इरफान, थैंक यू यार, अपना ख्याल रखो, खुश रहो, आबाद रहो, दुआओं में याद रखना। इरफान जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे भाई, मेरे बहुत अच्छे लिसनर जी, बहुत ही क्यूट से लिसनर है इरफान जी हैं। वो जब मुझे शुरू शुरू में कॉल किया करते थे तो हमेशा रोया करते थे, हमेशा यार मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मैं बीमार हूँ, मुझे ये मसला है। इरफान को वाकई में एक इशू है, आप सब उसके दुआ कीजिए कि इरफान जो हैं वो आई थिंक सो बेड तक जो है वो मजबूर हैं, चल फिर नहीं सकते, लेकिन इरफान जब भी आते हैं तो हमारे चेहरों पर रौनक आ जाती है। तो इरफान खुश रहा करो मेरे भाई, और अब जब इरफान आता है ना तो बड़ा हंसता है, बड़ा खुश रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इरफान अब खुश रहता है ना, खुश रहना चाहिए। वैसे आपको मैंने अभी बताया ना कि इंसान को जो भी मिल जाए ना वो उस पर इक्तफा नहीं करता, उसको और कुछ चाहिए होता है, और जब उसको वो मिल जाता है ना तब वो कहता है अच्छा ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम कॉलर
2: जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप खैरियत से हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आमिर साहब आ रहा हूँ जेलम से।
0: जी आमिर साहब, जेलम में आवाज आ रही है?
2: जी जी आ रही है, आ रही है।
0: तो क्या कर रहे हैं इस वक्त आप जेलम में आमिर साहब?
2: मैं ड्यूटी पे हूँ।
0: ड्यूटी पे हैं, अच्छा, तो आप ड्यूटी गुजार रहे हैं? ड्यूटी गुजार रहे हैं या ड्यूटी गुजार रहे हैं? अच्छा मौजू पे करिए, जी करिए, जी करिए।
2: पहली दफा आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं, बड़ा मजा आया।
0: अच्छा शुक्रिया
2: जी जी। तो आप बात कर रहे थे 5 साल पहले।
0: जी
2: 5 साल पहले मेरे वालिद का साया मेरे सर पे था।
0: अच्छा,
2: उसके बाद जब 5 साल यानी कि 2022 में वाले साहब बहुत हो गए।
0: अच्छा,
2: हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए। तो फिर सब कुछ बदल गया, वो चीजें जो जिनके लिए ख्वाहिश दिल में थी उधर ही ख्वाहिश को खत्म कर दिया। क्योंकि 3 भाई मेरे और भी हैं और सिस्टर भी हैं, बड़ा मैं सबसे बड़ा मैं।
0: सही सही।
2: फिर अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया, क्योंकि पहले वाला था तो सब कुछ वो हमारी ख्वाहिश पूरी करते थे, उनके साथ जिद भी कर लेते थे, लेकिन उनके बाद फिर वालदा के साथ जिद नहीं की। तो बाकी ये एक तब्दीली आती है। दूसरी, रिश्ते रखने के लिए ना इग्नोर करना पड़ता है, बर्दाश्त।
0: अच्छा, आपका नाम नाम क्या है भाई?
2: आमिर
0: भाई, आप बस यहीं तक इकतफा कीजिए, मैं इसी बात को ना थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ, तो इसलिए ना आप अगली बात पे मत जाइए, ठीक है
2: जी।
0: आप सुनिए, मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ सवाल से, ठीक है ना? चलो ओके जी। आमिर भाई थे आई थिंक सो, नाम मैं शायद भूल गया, आसिम के आमिर। बड़ा बलक्कड़ हो गए यार मैं, क्या हो गया, अभी नाम बताया मैं भूल गया ना, रिमशा के साथ ही बात करते मैं भूल गया था। खैर जनाब, आमिर भाई हैं कि आसिम भाई हैं जिन्होंने ये बात की है, शाह साहब ने वो बहुत गहरी बात की है, आप सब ने उसको महसूस करना है। ये मेरे भाई ने जहाँ से बात की है ना, उस दर्द को शायद मैंने थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि मेरे 3 भाई हैं और आज से 5 साल पहले मेरे वालिद जिंदा थे, आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और आज से 5 साल पहले मैं बड़ा मुतमइन था और बड़ा ही रिलैक्स था, क्योंकि हर जिम्मेदारी घर की वालिद ने उठा रखी थी, और मेरे ऊपर ये बोझ नहीं था कि बिजली का बिल कैसे देना है, गैस का बिल कैसे देना है, फीसें कैसे देनी है, कपड़े कहाँ से आएंगे, खाना पीना कहाँ से आएगा, रिश्तेदारों में अगर जाना है तो उठने बैठने के लिए चीज़ें पैसे कहाँ से आने हैं। तो कभी मुझे ये दुख ये परेशानी नहीं थी, मैं इससे मुबर्रा था। جب اس سے مبرہ تھا تو دل میں کچھ اور خواہشیں تھیں, کیونکہ انسان کے دل میں خواہشات کا آمازگاہ ضرور رہتی ہے. انسان کا دل خواہشات کی آمازگاہ ہے. تو دل میں خواہشیں کچھ اور تھیں کہ چلو گاڑی لے لوں, یا ان سے میں نے ابھی پوچھا نہیں کیا خواہشیں تھیں, لیکن ایسی ہی ہوگی کہ گاڑی لے لوں, کسی جگہ پہ کسی جگہ گھومنے چلا جاؤں, یا کچھ میرے پاس فون اچھا ہونا چاہیے. خیر مردوں کی یہی خواہش ہوتی ہے, یا گاڑی لینی ہے, فون اچھا لینا ہے, کہیں گھومنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے, کہیں اچھی ویل سیٹل جو ہے وہ جاب ہو جائے, یا کچھ طرح کی چیز ہو جائے, شادی کر لوں. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. لیکن آج کہتے ہیں کہ میری جو خواہشات ہیں نا وہ تبدیل ہو چکی ہیں. آج شاید خواہش یہ ہے کہ اس والے بھائی کو کہیں سیٹل کر لوں, اس بھائی کی کہیں اچھی جگہ نوکری کرا لوں, اس کو کاروبار سیٹ کر کے دے دوں, اس والے بھائی کی شادی کرانی ہے اور ان کا رشتہ میں نے کروا لیا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے مراسم ہو جائیں, باعزت طور پہ شادی کر لوں, خاندان میں نام برقرار رکھ سکوں. تو وہ جو والد والی ذمہ داریاں ہیں وہ میرے کندھے پہ آ گئیں, کیونکہ میں بڑا تھا. تو جب وہ ذمہ داریاں میرے پہ آ گئیں نا تو میری خواہشات بدل گئیں. آج سے 5 سال پہلے جو خواہشات تھیں آج وہ خواہشات نہیں ہیں. خواہشات ایسے بدلی ہیں کہ اب لگتا ہے کہ اس بھائی کے لیے کچھ کر لوں, اس بہن کے لیے کچھ کر لوں, اس کے لیے کچھ کر لوں یا اس کے لیے کچھ کر لوں. وہ جو خواہشات والد کی تھیں وہ خواہشات میرے دل میں آ گئیں, اور جو میری تھی جو میری تھی دل کسدائے لٹ گھندائے نازانا, دل کستا ہے لٹ گھندا ہے, لٹ گئیں وہ خواہشیں جو میرے سینے کے اندر تھی, دفن کر دیں وہ خواہشیں جو میرے سینے کے اندر تھی. یہ اکثر بڑے بیٹوں کے ساتھ ہوتا ہے. داد کے مستحق ہوتے ہیں گھر کے وہ بڑے بیٹے. جو بہتی ناؤ میں اگر ناؤ کا ایک تختہ ٹوٹ جائے تو اس میں اپنے آپ کو پیوند کر دیتے ہیں, وہ بڑے بیٹے بڑے خاص ہوتے ہیں. جب کسی ناؤ کا ملاح اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ وہ چپو سنبھال لیتے ہیں. وہ بڑے بیٹے بہت خاص ہوتے ہیں. جو اس چپو سے بے رحم موجوں کا سامنا کرتے ہیں اور اس ناؤ کا رخ صحیح سمت میں رکھتے ہیں. کبھی اس ناؤ میں بیٹھے پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے والا وہ شخص جو بڑا بیٹا کہلاتا ہے, وہ جب چپو سنبھالتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ پانی جس کے ساتھ میں کبھی انجوائے کیا کرتا تھا, اپنی زندگی میں خوبصورتیاں بھرا کرتا تھا, یہ اب میرے لیے نہیں ہے. جو ساتھ بیٹھے میری زندگی میں لوگ ہیں نا, میرے بہن, میرے بھائی, میری والدہ, میرے والد کی بیوہ, اس کا خیال رکھنا ہے, اس ناؤ کے اندر اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. بڑے خاص ہوتے ہیں وہ بیٹے, ان کا بہت خیال کیا کریں, ان کی قربانیوں کو ضرور محسوس کیا کریں. ایک بج کے 24 منٹ ہے, مجھے آج ایک ہی بھی کہتے ہیں جی, اور وقت جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آدھے گھنٹے کا ساتھ آپ کے ساتھ باقی ہے. 0511100101 رابطے کا نمبر ہے جی. اور فیس بک کے اوپر میرے ساتھ کچھ دوست میرے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں, کامنٹ کر رہے ہیں جی. اچھا تو کامنٹ شامل کرتے ہیں جی. یو کے سے بھی ایک کامنٹ آیا ہے, اور یو کے والے بھائی کیا کہتے ہیں, یو کے والے بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریڈیو اویلیبل ہے لیکن ہم ریڈیو نہیں سنتے. اور وہ کہتے ہیں جی کہ میں یو کے سے ہوں اور ہمارے پاس جو ریڈیو ہے وہ یہاں پہ ریڈیو سنگم جو ہے وہ موجود ہے, لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ پاکستانی ریڈیو جو ہے وہ سنتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ بلال باجوا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ مجھے یو کے سے سن رہے ہیں اور بڑا اچھا لگا کہ آپ وہاں دیار غیر میں بھی بیٹھ کے پروگرام سنتے ہیں. اور یہ پروگرام لٹرلی ہوتا ہی آپ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے, کیونکہ رات کے اس پہر اس کو اسی لیے انٹرنیشنل بھی کہا جاتا ہے, یہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے. کنزا عثمان میرے ساتھ ہیں, کہتی ہیں جی کہ 5 سال پہلے جو ہے وہ چینج ہوئی ہوں اور 5 سال پہلے جیسی تھی اب نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے جی, مان لیا جی, مان لیا جی. سلمہ راشد میرے ساتھ ہیں جی اور پروگرام سن رہی ہیں جی, تھینک یو. اوکے جی, نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اوکے جی, بائے بائے. ओके जी बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल, क्या जी सब ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसे हैं?
1: श्यालकोट से बोल रहा मैं, जाके पास फटा ब्रो, बड़ी गाना सुनी है, नंबर ही नहीं लगता, और ये के करता रहे नहीं लगता, तो उन में क्या हो सकता है, लग जाए तो बड़ा बहुत अच्छा होता है।
0: बहुत शुक्रिया जैन साहब,
1: बहुत चलिया आज मैं काल तोरे मिलनी है, मैं छट बैठा से फिर मैं ट्राई करते हैं।
0: बहुत शुक्रिया जैन साहब, बहुत शुक्रिया,
1: बहुत अच्छा थोड़ा एक नाक्सर का प्रोग्राम है तो शायद नाक्सर
0: जी जी जुमेरात में प्रोग्राम कर रहे हैं जिशान नासर।
1: जुमेरात दोबारा
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
1: एक दिन उन्होंने जुमे में भी दिखा ही ना
0: था। हाँ जुमे में मेरे प्रोग्राम देवज बैठे सी हो।
1: हाँ ठीक ठीक बहुत अच्छी
0: जी,
1: जी बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं सर यार जी, मैं तो एक दिन बाद मैं कहता हूँ इसके बाद आते हैं मेरे काला भैया से कुछ अपने।
0: चलो ख्याल रखो जैन साहब, अपना दुआ में याद रखो।
1: दुआ में बिल्कुल मेहरबानी, ओके
0: ओके जी बाय बाय। ओके जी अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह,
3: हमीद बिल्ला रखता हूं सर।
0: जी हमीद साहब कैसे हैं आप?
3: आप ठीक हैं? खैरियत से?
0: अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी हमीद भाई,
3: आपने कैसे टूर बी सी आर हमने 5G तक का सफर कर लिया
0: जी,
3: अब काम बगैर कोई भी काम, अब सेल्फी के बगैर नमूमकिन सा लग रहा है हर काम में,
0: सेल्फी के बगैर।
3: हाँ हाँ
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने,
3: लेकिन मैंने ये देखा इन तीन भाइयों में
0: जी,
3: पहले हम अपनी बातें करते थे, अब हम लोगों की बातें कर,
0: बिल्कुल ठीक है,
3: बड़ा नुकसान है हमारे लिए
0: जी जी।
3: बाकी तो आने वाला वक्त जो है वो पहले से बेहतर है, लेकिन पहले कुछ रवादारियाँ थी, कुछ बातें थी लोगों में, अब वो खत्म हो गई है
0: जी।
3: 9/11 के बाद एक अजीब पैसे की दौड़ शुरू हो गई है,
0: सही,
3: हर आदमी बस पैसा पैसा पैसा पैसा बस, यानी गर्दान इसी पैसे की हो रही है
0: जी।
3: बड़ा हमारा जो स्कूल का दौर था या उसके बाद का थोड़ा या कॉलेज का, कॉलेज तक तो हम गए हैं, यूनिवर्सिटी तक तो नहीं गए सर, लेकिन वो ठीक था दौर।
0: अच्छा
3: बहुत अच्छा दौर था दोस्त यार वो, अब मेरे वो कुछ चंद क्लास पहले जो कुछ दोस्त थे वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हैं, कुछ उनमें से फौत हो गए, लेकिन नई यारियां हमने कभी नहीं लगाई, दोस्त हमारे वो जो थे पुराने स्कूल के या बचपन के वो के साथ दोस्तियां यारी, एक अच्छा वक्त आज भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, हमें इसलिए थोड़ा लग रहा है कि हमारे लिए वो सारी चीजें नहीं आ गई है,
0: बिल्कुल ठीक है,
3: जो हमारे दौर में नहीं थी, जो हमने नहीं देखी
0: जी जी ऐसा ही,
3: इसलिए अभी आप कह रहे थे ना जो थोड़ी देर पहले सीखने का अमल, तो सीखने का अमल तो जारी रहेगा ना
0: जी जी जी,
3: हर रोज नई से नई एक चीज आएगी
0: जी।
3: एक शेयर के साथ इजाजत चाहूंगा आपसे
0: जी,
3: इसी तसलसल में कि जिंदगी मुस्कुरा के रोज गुजर जाती है।
0: वाह, जिंदगी मुस्कुरा के रोज गुजर जाती है,
3: हाथ मिलाने की नौबत ही नहीं आती,
0: हम
3: नहीं मिला पा रहे,
0: जिंदगी मुस्कुरा के गुजर जाती है, हाथ मिलाने की नौबत नहीं आती,
3: जिंदगी मुस्कुरा के रोज गुजर जाती
0: है, हाथ मिलाने की नौबत नहीं आती,
3: नौबत ही नहीं आती है।
0: वाह वाह,
3: आप चाहें तो अच्छा, लोग हाल में जी रहे हैं, हालांकि हाल कुछ भी नहीं है, जिंदगी मुस्कुरा के रोज गुजर जाती है,
0: हाथ मिलाने की नौबत नहीं आती,
3: नौबत ही नहीं आती है।
0: वाह वाह,
3: आप

0: दीप।
1: चलिए आप कर सकते हैं।
0: अच्छा नहीं, मैं किसी दलील के साथ इख्तलाफ करना चाहूंगा कि इख्तलाफ मेरा यह है कि मेरे नजदीक हाल ही सब कुछ है। उसकी वजह कि हाल में आप जो करेंगे ना तो आपका माजी शानदार होगा या वो हम कह सकते हैं कि बदनुमा होगा जो हाल में करेंगे, और अगर हाल में अच्छा करेंगे ना तो मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी बुनियाद रखेगा हाल। सो हाल ही आपके इख्तियार में है, ना माजी है ना मुस्तकबिल है।
1: हमारे प्यार में हाल तो है, लेकिन वो कुछ वो हम जाके फिर भी बात कर रहे हैं जो आपने शुरू कर दी पीछे से
0: जी,
1: तो बुनियाद बुनियाद की तरफ जा रहे हैं ना आप।
0: जी जी
1: मैंने तो उस पर जिक्र कर दिया आपको कि हमारे तो हाथ मिलाने की अब नौबत ही नहीं आ रही।
0: आए,
1: हम
0: आए,
1: क्या
0: आए।
1: कर रहे हैं अब इसको बताएं।
0: हाँ जिंदगी बहुत, जिंदगी जो बहुत तेज भाग रही है।
1: बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है और बड़ी हमेशा आना और बड़ी बेहतरीन जिंदगी गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जी
1: तो
0: जी
1: कोई शिकवा या कोई वो नहीं है खुदा ना खासा,
0: जी
1: लेकिन जो असल बात यह है कि मैंने जो आप प्लानिंग की बात की ना उसे ये मुराद नहीं करनी करनी चाहिए।
0: जी
1: आप सोचें जरूर, लेकिन टोटल जो है ना वो आपने दोस्त रखें बस।
0: ये बात है। थैंक यू जी अमीन साहब, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू,
0: थैंक यू जी, जजाकल्लाह। ओके जी, आज के भी आपके साथ है, 1:31 है जी, और गाना सुनाता हूँ आपको, ठीक है ना? वापस आता हूँ, मेरे साथ रहिएगा।

0: Okay, G. Welcome back once again. Welcome back. It's 101 International. Ajay KB is with you. It's 137 or it's 3 October 2026. And the day is Saturday. And the night of Friday. तो जनाब पूछिए आपसे ये जा रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ हमारे तजुर्बात मुशाहिदात और इर्द गिर्द के हालात हमें बदल देते हैं, हमारी सोचों को, हमारे जावियों को, हमारी ख्वाहिशात को, हमारे हालात को, हमारी पसंद नापसंद को, हमारे तजुर्बे को, सभी कुछ ही को बदल देते हैं। और आपकी ज़िंदगी में कुछ बदला है तो वो क्या बदला है? 5 साल पहले जो है वो आप कैसे थे, अब कैसे हैं? क्या आप समझते हैं कि आप बदल गए हैं? कुछ लोग 5 साल पहले आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, आज वो नहीं इम्पॉर्टेंट, और कुछ नहीं इम्पॉर्टेंट थे, आज इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। कौन है वो? कोई किस्सा है आपके पास ऐसा? कोई बात है आपके पास ऐसी तो वह मुझे आप बता रहे हैं। मैं कॉल्स आपके लिए जा रहा हूँ और 20 मिनट बाकी हैं और उसके बाद फिर जा चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी जनाब, कौन सा?
1: तनवीर अकबर बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: जी तनवीर साहब, फरमाइए क्या?
1: माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हमेशा की तरह।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और जो हमारी जो प्यारी बहन रिमशा के साथ आप आलती पालती मारते हैं ना, क्या ही बात है।
0: सही होगा,
1: माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा,
1: और आप पूछ रहे ना हालात वाकयात, तो ये है कि जो हालात माहौल नहीं बदलता, जो आसपास के लोग होते हैं ना या अपने अजीज रिश्तेदार होते हैं उनके हाल उनको देखकर या उनकी बातें सुनकर लोग बदल जाते हैं। इंसान बदल जाता है।
0: आपके बहुत सारे रिश्तेदार आपकी बातें सुन के बदले होंगे, राइट?
1: जी चलो ये आप कह सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो दूसरा ये कि पिछले प्रोग्राम में हमारी एक बहन आई थी मारिया शहजादी।
0: हाँ जी,
1: अगर वो सुन रही हैं तो प्लीज वो कॉल करें, बहुत अच्छा गाती है, उनसे सुना करें कुछ।
0: चले जी, ठीक है जी, जो हुक्म सरकार। जो ओके जी, थैंक यू सो मच। किंजा उस्मान मेरे साथ है जी, और गुलबहार बानो मेरे साथ है जी, और किंजा उस्मान कहती हैं कि आपकी कुछ कुछ वॉइस कराची के सज्जाद नवाज साहब जैसी लगती है। और चलें जी, ठीक है जी, ठीक है, मान लेते हैं जी। किंजा आपको लगती है तो होती होगी। माँ जी भी हैं मेरे साथ जी, प्रोग्राम सुन रही हैं, इस्लामाबाद से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर है। हेलो।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह वाह वाह वाह लाला जी, आज आपने मुझे ना यकीन माने शशदर कर दिया है कि आज जैसे आपने बात की है, मुझे लगा ही नहीं है कि आज आप वो मेरे लाला जी आए हैं। सर कमाल हो गया,
2: हो चुका हूँ तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत कुछ में प्रोग्राम सुन रहा हूँ मुकम्मल।
0: अच्छा सही,
2: लेकिन एक शेर में अपनी दास्तान नहीं सुना सकता, लेकिन ये क्या होगा कि क्या बताऊं तुझे अपना हाल दिल खुरम।
0: जी
2: क्या बताऊं तुझे अपना हाल दिल खुरम, मजबूरियां इतनी हैं, मजबूरियां इतनी है कि मैं खुद बिखर गया हूँ।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या हाल तुम्हें बताऊं खुरम, मजबूरियां इतनी हैं कि मैं
2: खुद बिखर गया हूँ। सादे मोहतरम, मेरे माँ बाप नहीं है, ठीक है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है, लेकिन दुनिया के सामने हंसता रहता हूँ, खुश रहता हूँ, लेकिन अंदर से सादे मोहतरम में चोर चोर हूँ।
0: चले अल्लाह ताला आपको जोड़े। और
2: दूसरी बात, सादे मोहतरम में चार पाई बार हूँ, मैं रेडियो में भी अनाउंस करता रहता हूँ कि मैं चल फिर नहीं सकता, मेरी टांग डैमेज थी और मुझे प्लेटें पड़ी हुई है, मैं चल नहीं सकता, और मुझे जो है कि बच्चे जो गाड़ी में लेकर जाते हैं व्हील चेयर के जरिए, और मैं बहुत सख्त बीमार हूँ, तो मेरे लिए आप सुखी दुआ दिया करें। मैं बता दिया आपको कि दुनिया के सामने और 101 के सामने में सहारा है मेरा, तो मैं खुश रहता हूँ, लेकिन अंदर से मैं
0: अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखो, अच्छी अच्छी बातें करें, हंसने वाली
2: सलामत रखे। और आपको सालगिरह जो 101 की सालगिरह थी, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, आपको अभी पूरी टीम को और जनाब मेरी जो बेटी है सदफ रानी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपको खुशी तौर पर मुबारकबाद।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह अपना ख्याल रखें, बहुत सारा अपनी सेहत का ख्याल रखें।

ओके okay, जी मेरे साथ 44471 के ऊपर जी सिद्रा हनीफ हैं लाहौर से, और वो कहती हैं कि सर भरोसा टूट जाने से इंसान बदल जाता है। क्या कहेंगे आपके, भरोसा टूट जाने से क्या इंसान बदल जाता है या नहीं बदलता, क्या कहेंगे आप?

अच्छा जी, हैदराबाद से मेरे साथ तनवीर अहमद हैं और वो कहते हैं जी सलाम अलैकुम भाई, कैसे हैं आप? प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका और मैं 5 साल से हैदराबाद ड्यूटी पे हूँ और तब भी था और आज भी ड्यूटी पे हूँ। और अच्छा ऐसा भी होता है तनवीर कि एक काम कर कर के ना इंसान थोड़ा उकता जाता है, इंसान की ज़िंदगी में चेंज भी होना चाहिए, चाहे ड्यूटी में जगह ही चेंज क्यों ना हो जाए। चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, चेंज इज़ नेसेसरी इन आवर लाइफ।

0: अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं नहीं रहता, तुम रह जाते हो।
1: ये कहानी
0: मीर बलोच मेरे साथ हैं जी, तोनसा शरीफ से। वो कहते हैं कि मैं अक्सर बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं नहीं, तुम रह जाता हूँ।

0: सोए जो अकेला जन्नतों में खेला ऐसे ही हंसी था।
1: ओके जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं जी सैयद अदील इकबाल शाह इस्लामाबाद पुलिस से, और कह रहे हैं जी कि मैं और मेरे साथ बैठे हमारे तमाम दोस्त जो है वो इस वक्त आपका प्रोग्राम जो है वो सुन रहे हैं, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है आपकी सब टीम को, अल्लाह ताला सलामत रखे। और के भी भाई, आपकी आवाज़, आपका प्रोग्राम, आपका बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। मेरी तरफ से FM 101 की तमाम टीम को आई लव यू ब्रदर सैयद अदील इकबाल। और हमने कहा जी कि मुझे जो है वो सज्जाद अली का जो है वो गाना सुनाए, मैं भी खरीदार हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। ये वाला सुन लो ना, ये कैसा है अदील, अच्छा है ना, मुझे अच्छा लगता है यार, होपफुली आपको भी अच्छा लगेगा।

अच्छा कॉल करने वाले हजरात टेंशन न लें, ठीक है, मेरे होते हुए आपने टेंशन नहीं लेनी। खातीनों हजरात आपने टेंशन नहीं लेनी।

शायर कहता है, तरसती आंखें उदास चेहरा नहीं फ्लहजे बगैर तेरे, तरसती आंखें उदास चेहरा नहीं फ्लहजा बगैर तेरे, बिखरी जुल्फें लबास उजड़ा वजूद खस्ता बगैर

आमीक जंगल गुप अंधेरा डूबी सांसें जहीफ धड़कन बरहना पाँव बेमन बेनाम मंजिल निशान रास्ता बगैर तेरे खामोश बुलबुल सर्द पतझड़ बिरंग मौसम वीरान गुलशन न फूल खुशबू हवा न बादल न कोई नगमा बगैर तेरे खामोश बुलबुल सर्द पतझड़ बेरंग मौसम वीरान गुलशन न फूल खुशबू हवा न बादल न कोई नगमा बगैर तेरे उम्मीद मदहम मजाज बरहम मायूस जीवन बेआस हरदम न कोई ख्वाहिश न कोई हसरत ना है तमन्ना बगैर तेरे।

काली सुबहें सुर्ख रातें, वक्त साकिन उदास शामें, हजार सदियों के है बराबर हर एक लम्हा बगैर तेरे।

शायर कहता है, तावीज उल्टे अधूरी मन्नत, वजीफे जादू नाकाम सारे। तावीज उल्टे अधूरी मन्नत, वजीफे जादू नाकाम सारे। ना इस्तखारा ही काम आया, ना कोई धागा, ना कोई जादू बगैर तेरे। अजीब किस्मत नसीब उलझा, गलत लकीरें मेरा मुकद्दर। हाँ गर्दशों में आ गया है मेरा सितारा बगैर तेरे। अजीब किस्मत नसीब उलझा, गलत लकीरें मेरा मुकद्दर। हाँ गर्दशों में आ गया है मेरा सितारा बगैर तेरे। हिजरे कामल फराक हावी, जुदाई अक्सर तवील दूरी। ख्वाब कुर्बत विसाल हसरत, रजा है तेरा कि रजा है तन्हा बगैर तेरे। अरे कमाल है ना, कमाल लिखा है।

0: ओके जी, वक्त जो है वो अख्तिताम की जानिब गामजन है, और सिर्फ दो कॉलें लूंगा और एक एक मिनट की, ठीक है? फिर आपसे अख्तिताम चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज छनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब कौन है, कहाँ से हैं? फटाफट बोलिएगा, टाइम बहुत कम है।
1: टाइम इतना कम है
0: जी बहुत कम है।
1: क्यों?
0: चलो फिर, ये मैं अगली बारी दसांगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम जी, नेक्स्ट कॉलर।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी, फिट फाटे वन।
1: खुदा भाई मुझे भी चैन है।
0: कौन कौन बात कर रहा है? फटाफट
1: मुझे भी
0: बोले,
1: कहना
0: वक्त बहुत
1: मुझे
0: कम है, जल्दी बोलिए जल्दी, वक्त बहुत कम है, एक
1: हाँ
0: मिनट
1: जी,
0: का
1: मैं
0: आपका टाइम है
1: साइडा बात कर रही लाहौर से।
0: जी। साजिदा सिर्फ एक मिनट के बाद मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर
1: जी
0: देनी है,
1: जी
0: ठीक है? एक
1: हाँ
0: एक मिनट में
1: जी
0: बात मुकम्मल करें जी,
1: जी
0: बोलिए साजिदा।
1: जी मैं कहना चाहूंगी, आपने टॉपिक जो रखा है, मैं टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी। भरोसा जो एक दफा टूट जाए ना, दोबारा नहीं जुड़ता।
0: ओके
1: भरोसा, यकीन, एतबार बनाते बहुत टाइम लग जाता है और टूटते 1 सेकंड लगता है।
0: ओके, डन हो गया। थैंक यू साजिदा, बहुत शुक्रिया। कॉलर अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम,
0: जी वालेकुम सलाम।
1: कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ जी, फिट फॉर डे वन।
1: मेरी आपसे पहली मतलब बात हो रही है। माजरीन
0: कौन साहब आए, कहाँ से हैं?
1: बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद।
0: जी माजबी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। फटाफट बताइएगा, टाइम बहुत कम है मेरे पास।
1: 5 सालों में जो सबके साथ हुआ तकरीबन वही है कि पेरेंट्स नहीं रहे और उनके जाने के बाद एहसास जिम्मेदारी बढ़ गया है और बस समझ आ गई है कि जिंदगी को अकेले कैसे जीना होता है, क्योंकि पेरेंट्स के बगैर हमें जीना नहीं आता ना, फिर हम
0: बिल्कुल,
1: जीना सीख जाते हैं।
0: वेरी नाइस, थैंक यू माजी,
1: और
0: आपसे बात
1: थैंक
0: करके
1: यू
0: अच्छा
1: सो मच,
0: लगा,
1: अल्लाह हाफिज।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। ओके जनाब, वक्त रुखसत हुआ चाहता है। बस जी, आप जितना भी बदल जाएं, जो भी बदल जाएं, कुछ चीज़ें आपको कायम रखनी होती हैं, कुछ चीज़ों को आपको कभी बदलना नहीं होता। वो क्या है कि किसी के साथ वफादारी, किसी के साथ मोहब्बत, किसी का साथ खलूस, अपने दिल के अंदर की सच्चाई, इसको कभी मत बदलिएगा। बाकी सब कुछ बदल जाता है, बाकी सब कुछ नया मिल जाता है, नया सब कुछ हो जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा बदलता रहता है, लेकिन ये कभी मत बदलिएगा। इसी बात के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। प्रोग्राम में कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे दे सकते हैं, kb.bake लिखेंगे, आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा। सो डू लेट मी नो कि प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ आप सुनना चाहते हैं, क्या चीज़ बेहतर करना चाहते हैं, क्या चीज़ नहीं सुनना चाहते, सभी बता सकते हैं जी। मेरा प्रोग्राम होता है हर जुम्मे को और हर पीर को रात 12 से लेकर 2 बजे तक 101 इंटरनेशनल में, मुझे RJKB कहते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। दुराने गुफ्तगू, दुराने बातचीत, को गलती को सैफ हुआ चाहता हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ, रब के हुज़ूर भी माफ़ी का खासगार हूँ, आपके हुज़ूर भी माफ़ी का खासगार हूँ। अगर ज़िंदगी में वफा की, अगर सांसों में वफा की, तो मुलाकात होगी आपके साथ आने वाले इस पीर को रात 12 से लेकर 2 बजे तक। तब तक के लिए दीजिए KB को इजाज़त, लेकिन आपको इजाज़त नहीं है, इसलिए कि अभी थोड़ी देर के बाद ठीक 2 बजे जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे जी मुज्तबा हैदर। और जो आप पोइट्री सुनते हैं, आज मैंने आपको अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक गज़ल सुनाई है, लेकिन बहुत सारे पोइट्री लवर्स रात को बैठे बैठे होते हैं और प्रोग्राम में पोइट्री सुनना चाहते हैं। क्वालिटेटिव अगर पोइट्री आपने सुननी है और अगर आपको लगता है कि आपने कोई एक बर्जस्ता गुफ्तगू सुननी है और एक ठहरी हुई गुफ्तगू सुननी है और बहुत गहरी बातें सुननी है, तो वो मुज्तबा हैदर अभी आपको ज्वाइन करेंगे 2 घंटे के लिए। रात उनका प्रोग्राम होगा गुंचा शौक 2 से लेकर 4 बजे तक। मेरे बहुत ही अजीज़ भाई अभी आ चुके हैं स्टूडियो के अंदर, ठीक 2 बजे वो आपको ज्वाइन करेंगे, उनका साथ में भाइएगा। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो बैठे रहिएगा, क्योंकि आगे वाली महफिल इससे ज़्यादा खूबसूरत सजने वाली है। KB को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, बाबा टाटा।

जो कायनात की वसतों में कुछ इस अंदाज से गुम है कि जहानतों की बुलंदियां भी उसका इदराक नहीं कर सकती।

लफ्ज़ों की रोशनी को दिल में समोते ही रोशनी के खालिक का नाम दिल की ज़मीन पर कुछ यूं तहरीर किया जाए कि दिल दिल ना रहे किरदार से तौहीद बन जाए।

मुस्कुराते जगमगाते सब हसी चेहरों के नाम मुज्तबा हैदर का सब अहले मोहब्बत को सलाम। जी हाँ सामईन, अस्सलाम वालेकुम।

कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुल्तान, क्वेटा, पेशावर, एबटाबाद और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में। radio.gov.pk/FM101 पर तकरीबन पूरी दुनिया में अपने तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सदा खुश खुर्रम रहिए, शादो आबाद रहिए, सलामत रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते, खिलखिलाते, जगमगाते, झिलमिलाते रहिए।

और शौक को शौक मत समझिए, शौक ख्वाब नहीं है, शौक हकीकी महताब है। मुंचाए शौक सुनते रहिए और शौक की शमा जलाए रखिए। बल्कि यूं कहना चाहिए, इसे दिल से लगाए रखिए।

वो कहते हैं ना कि शौक जब अमर हो जाए तो मोहब्बत में ढल जाता है। फिर यूं है कि अपनी मोहब्बत को ध्यान में रखिए और मोहब्बत का ख्याल रखिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत की कदर ना की जाए तो उसको आप उसको कब तक अपने सीने में छुपा के रखेंगे, कब तक आप उसका सहारा बनेंगे या उसको अपना सहारा बनाएंगे, आखिरकार उसका सूरज भी ढल जाता है। हाय कमबख्त मोहब्बत है ना।

अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान भी बदल जाता है? आप यकीन जानिए, इंसान इतना जल्दी नहीं बदलता।

लेकिन हाँ ऐसा है कि जब दिलों पर शिकवों की बदली छा जाए तो इंसान बदल जाता है। हाय हाय, दुआ कीजिए किसी पर वो वक्त ना आए।

क्योंकि जब ऐसा होता है तो इंसान आपके सामने होता है लेकिन फिर आपका नहीं होता। वो आपके पास भी होता है, आपसे बात भी करता है, आपसे मिलता जुलता भी है। मगर आपको लगता है कि उसने कहीं ना कहीं चुप साध ली है। ऐसी खामोशी जो गहरे समंदर की तरह है। इतनी गहरी चुप, इतनी गहरी खामोशी। तू अपनी आवाज में गुम है, मैं अपनी आवाज में चुप। दोनों बीच खड़ी है दुनिया, आई नए अल्फाज में चुप। अव्वल अव्वल बोल रहे थे ख्वाब भरी हैरानी में, अव्वल अव्वल बोल रहे थे ख्वाब भरी हैरानी में, फिर हम दोनों चले गए पाताल से गहरे राज में चुप। ख्वाब सराए जात में जिंदा, एक तो सूरत ऐसी है जैसे कोई देवी बैठी हो हुजराए राज व न्याज में चुप।

आप कोई छू के क्यों नहीं आता उधर सिरे के जीवन को, आप कोई छू के क्यों नहीं आता उधर सिरे का जीवन अंग, जानते हैं पर क्या बतलाएं, लग गई क्यों परवाज में चुप।

नींद भरी आंखों से चूमा दिए ने सूरज को, और फिर जैसे शाम को अब नहीं जलना, खींच ली इस अंदाज में चुप।

और गैब समय के ज्ञान में पागल कितनी तान लगाएगा, जितने सुर हैं साज से बाहर उससे ज्यादा साज में चुप।

0: यहाँ रुकते हैं और खलीलुर रहमान
1: झुका सता मुझे न दूर।

जनाब, हम आपके आपके पैगामात भी शामिल किए देते हैं। सानिया गफूर हैं जी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल रिस्पेक्टेड लिसनर्स। और आप हैं जी फिरोजपुर से, आपका शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल हुई। केंजा उस्मान है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और कराची से आपका ताल्लुक है जनाब, और बाग कॉलोनी। बहुत शुक्रिया केंजा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई।

सामिन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि जाने वाला इतना दूर नहीं जाएगा? क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ? अगर हुआ या नहीं हुआ आप जरा कमेंट कीजिए ना, और फिर बताइए।

वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो। हो सकता है मजबूरी हो, वक्त मजबूरी हो सकती है, क्या ख्याल है, नहीं हो सकती क्या?

0: और क्या खबर आपने इतने दूर से सदा दी है कि वो सुनने वाले तक पहुंची ही नहीं। उस्ताद का कमाल देखिए, फिर सुनिए कि दूर को किस तरह निभाया गया। हाय, फिर सुनिए। इस दूर का इतना लुत्फ है ना कि क्या कहना। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि आप को लगता है कि आपने आवाज दी है और उसने आवाज सुनी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाज़ख़त आपकी जो आवाज है ना, वो अपनी वक़्त खो बैठती है।
1: मैं कब का जा,
0: वो इसलिए कि वो कहता है मैं कब का जा चुका हूँ। अब जाने वाले तो फिर जाने वाले हैं ना जी।
1: मुझे

जाने वाले जो हैं पलट कर नहीं देखा करते। हज़रत अब्बास ताबिश कहते हैं कि अच्छी खबर यह है कि मुझे छोड़कर उसे, अच्छी खबर यह है कि मुझे छोड़कर उसे मेरी तरह का चाहने वाला नहीं मिला।

उल्टी हो गई सब तदबीरें, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया।

बज़्म सुखन गुंजाए शौक आप सुन रहे हैं और रात के इन लतीफ़ लम्हात में हमारा और आपका साथ हुआ करता है।

समीन, रात हम सब की है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रात है ना वो चांद की है। वो कहते हैं कि रात का जो बादशाह है वो चांद है।

इब्ने इंशा कहते हैं कि शाम समय एक ऊंची सीढ़ियों वाले घर के आंगन में चांद को उतरे देखा, हमने। चांद भी कैसा, पूरा चांद। इंशा जी, इन चाहने वाली देखने वाली आंखों ने मुल्कों मुल्कों शहरों शहरों कैसा कैसा देखा चांद। हर एक चांद की अपनी धज थी, हर एक चांद का अपना रूप। लेकिन ऐसा रोशन रोशन हंसता बातें करता चांद। दर्द की टीस तो उठती थी पर इतनी भी भरपूर कभी। आज से पहले कब उतरा था दिल में इतना गहरा चांद।

हमने तो किस्मत के डर से जब पाए अंधेरे पाए, ये भी चांद का सपना होगा, कैसा चांद कहाँ का चांद। इंशा जी, दुनिया वालों में बेसाथी बेदोस्त रहे, जैसे तारों के झुरमट में तन्हा चांद अकेला चांद। उनका दामन इस दौलत से खाली का खाली ही रहा, वरना थे दुनिया में कितने चांदी चांद और सोना चांद।

जग के चारों कूट में घूमा सैलानी हैरान होकर, इस बस्ती के इस कूचे के इस आंगन में ऐसा चांद। आंखों में भी चितवन में भी चांद ही चांद झलकते हैं, आंखों में भी चितवन में भी चांद ही चांद झलकते हैं, चांद ही टीका चांद ही झूमर, चेहरा चांद और माथा चांद।

एक ये चांद नगर का वासी, जिससे दूर रहा संजोग, वरना इस दुनिया में सबने चाहा चांद और पाया चांद। अंबर ने धरती पर फेंकी नूर की छींट उदास उदास, आज की शब तो अंधी शब थी, आज किधर से निकला चांद। इंशा जी, ये और नगर है, इस बस्ती की रीत यही, सबकी अपनी अपनी आंखें, सबका अपना अपना चांद।

अपने सीने के मतले पर जो चमका वो चांद हुआ, जिसने मन के अंधियारे में आन किया उजियारा चांद।

चंचल मुस्काती मुस्काती गोरी का मुखड़ा महताब, पतझड़ के पेड़ों में अटका पीला सा एक पत्ता चांद।

दुख का दरिया सुख का सागर, इसके दम से देख लिए हमको अपने साथ ही लेकर डूबा चांद और उभरा चांद।

झुकी झुकी पलकों के नीचे नम नाकी का नाम न था। झुकी झुकी पलकों के नीचे नम नाकी का नाम न था। ये जो कांटा हमें चुभा है, काश तुझे भी चुभता चांद।

रोशनियों की पीली किरचें पूरब पश्चिम फैल गईं। रोशनियों की पीली किरचें पूरब पश्चिम फैल गईं। तूने किस शय के धोखे में पत्थर पर दे पटका चांद।

हमने तो दोनों को देखा, दोनों ही बेदर्द कठोर, धरती वाला अंबर वाला, पहला चांद और दूजा चांद।

चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद किसी का होता है, चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद किसी का हो नहीं सकता, चांद किसी का होता है, चांद की खातिर जिद नहीं करते, ऐ मेरे अच्छे इंशा चांद।

0: بزم سخن غنچہ شوق جاری ہے اور بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر کی جانب. اور میری خواہش ہے کہ آج ہمارے پہلے کالر ہم سب کے بہت ہی پیارے اور شاعر, ایسے شاعر سخن آفرین, ادیب, لفظوں کو سمجھنے والے, لفظوں کی نفسیات کو سمجھنے والے, کاش ان کی کال ہو, ہم جب بات کریں تو ہمیں معلوم پڑے کہ یہ حمید گل صاحب ہیں. خدا کرے میری دعا قبول ہو جائے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: جناب
1: خدا صاحب بڑی تعریف کی لمبے پل باندھ لیے. نہ تو میں شاعر ہوں, نہ میں ادیب ہوں, نہ مجھے کسی چیز کا پتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جو میرے دل میں آتا ہے میں کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا, پہلی بات یہ آپ سے بڑا گلا ہے.
0: اچھا
1: گلا, ہاں گلا یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں کوئی بھی شخص آئے منہ کھا کے آگے اور حمید گل پہ تنقید کرنا شروع کر دے گا, آپ اپنے مائک کو کس طرح استعمال کریں گے؟
0: ایسا ویسے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ ماشاء اللہ.
1: نہیں یہ ہوا نا کل.
0: اچھا
1: مطلب جو آدمی آئے گا وہ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا, مطلب وہ کوئی حافظ صاحب آئے, پتہ نہیں آدھے سوئے تھے آدھے جاگے ہوئے, میں نے ایک انعام رکھ دیا.
0: اچھا
1: یار میں جو پڑھے گا اردو ادب کی خدمت کے لیے ایک, ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ مجھے بتائیں جن لوگوں نے پڑھی آپ کے خیال میں ٹھیک پڑھی؟ آپ بڑی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ بھائی انہوں نے پڑھی انہوں نے پڑھی, بتائیں. چلو آپ بتا دیں, یا آپ ایک کام کریں آپ پڑھ کے سنا دیں. چلو اس طرح کر لیں,
0: صحیح ہے,
1: آپ کے لیے بھی وہی نام ہے. چلیں آپ کے لیے ڈبل ہو جائے گا, 10,000 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے,
0: بالکل ٹھیک ہے سرکار, لیکن میں آپ سے انعام نہیں لوں گا. اور میں بس اتنا کہوں گا کہ انہوں نے جو پڑھی ہے نا, ظاہر ہے وہ شاعر تو نہیں ہے نا.
1: اچھا یہی بات ہے نا, میں ہم کون سے مشاعرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی نا, انا کتا کن لا گیا. اب کوئی آدمی اٹھ کے منہ کھا کے چلا آتا ہے, بات کر کے چلا جاتا ہے, میں تو حیران ہوں اس پہ. مطلب یہ ڈرامے بازی تو ہم نے ریڈیو پہ بک دیکھی ہیں. اگر آپ لیکن شاعری کا پروگرام ہے, میں شاعری کے لیے آئے ہوں, میں اپنا کلام پڑھتا ہوں اس کو چھوڑ دیں, لیکن میں مستند کسی شاعر کو پڑھوں گا تو میری کوشش ہوگی کہ یار یہ میں آپ کے پروگرام پہ کوئی اچھی چیز ایڈ کروں جو لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے نا, کل میں نے آپ سے ٹائم نہیں مانگا تھا, کل آپ نے میری کال لگی تھی, تو اس کا پتا کیا ریزلٹ آیا, الٹا آپ نے مجھے ڈھال بنا دیا سامنے لوگوں کے. میں حیران تھا کہ میں نے کہا یہ, میں پھر مجھے لگا میں نے کہا یار میں کیا بات کروں, اچھا اگر میں کل چاہتا تو میں دوبارہ کال کر لیتا آپ کو. میں نے نہیں کی کال, میں نے کہا جو لوگوں کا پڑاس ہے نا وہ نکالنے دیں ان کو, کم سے کم لوگوں کا ظرف کا مجھے پتہ لگ جائے نا کہ لوگوں میں کتنا ظرف ہے. میرا جو ظرف ہے تو وہ تو مجھے پتا نا, مجھے دکھ ہوا ہے, انتہائی مجھے دکھ ہوا ہے. پر ہاں مجھے دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ پروگرام کرنے آئے, میں کل سوچ رہا تھا میں نے کہا یار کیا میں بات کروں, اور مطلب یہ نوٹنکی کل وہ ڈرامے وہ پروگرام نہیں تھا, وہ نوٹنکی چل رہی تھی جیسا ہے, مطلب میں نے اگر رکھ دیا ہے تو میں آپ کو یہ بات, عاطف عباسی نے پڑھی 10 غلطیاں ہیں, نور آشی صاحب نے پڑھی بیکار, مطلب اس سے اچھا عاطف عباسی کی 10 غلطیاں لیکن اس نے اچھی پڑھی ہے نور آشی سے. ٹھیک ہے, اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو آتے اعتراض کرتے ہیں لوگوں کے, بھائی یہ تلفظ ہونا, آپ نے بھی کل ایک بڑی وہ شام لاسٹ کالر میں آپ نے کہا جی تلفظ اور کیا لاب, آپ شعر پڑھا کرتے تھے وہ بچوں نے کیا کہا.
0: اچھا
1: بڑا بڑا مزیدار سا تھا, سنائے ذرا.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
1: دیکھے نا اگر آپ جیسا بندہ تلفظ پہ بات نہیں کرے گا اردو کا پروگرام تو میرا خیال پروگرام نہیں ہونا چاہیے اردو کا. سر اب تو اردو کے مین ہے, آپ اردو کا پروگرام کر رہے ہیں, اگر آپ ہی لفظوں کو الٹا سلٹا کر کے غلط وقت استعمال کریں گے اور آپ کہیں گے جی ہم محبتیں بانٹ دیں, محبتیں کا اس طرح تو نہیں بانٹی جاتی نا مصطفیٰ صاحب. آپ میں پڑھتا ہوں میری غلطی ہے, آپ مجھے بتائیں کہ امی صاحب یہ لفظ ایسا نہیں یہ یوں ہے, ये हमने सीखा है, ये हमने नासर खान साहब से सीखा है।
2: अब आप ना? अब आप
1: तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई है।
0: अच्छा ठीक, चलिए मैं आपसे माजत करता हूँ। लेकिन अमित साहब आप जानते हैं कि हम बराह रास्त किसी को नहीं कह सकते ना कि आपने गलत पढ़ा है।
1: क्यों नहीं कह सकते आप सर? मैं गलत बात करूंगा, आप मुझे नहीं कहेंगे मैं गलत बात कर रहा हूँ?
0: आप शायर है ना, आपसे कहा जा सकता है।
1: आप कर रहे हैं आप आपको किसने कह दिया? अच्छा कोई आम आदमी भी आके पढ़ेगा? आप अच्छा कॉल चल रही है, आपके सामने एक आदमी आता है अपना कलाम लेके आता है, आप उसे ये भी नहीं कहते कि यार ये इसमें निखार आ सकता है, आप थोड़ा वजन का ख्याल करें, थोड़ी किताबों को पढ़ें, थोड़ा कुछ शोरा को पढ़ें, ये तो आपका काम है। हमने तो इस आपके जो FM है, मैंने इस पे ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने फेसबुक से उठा के शायरी अपने नाम से पढ़ना शुरू कर दी। मैंने उन लोगों को टोका, अच्छा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ये तो कार्य की जिम्मेदारी है, वो जब कोई पढ़ रहा है उसे चाहिए दो मिनट में वो गूगल
0: पर डाल के
1: आपको पता लग जाएगा।
0: आप राजी हो गए हैं जनाब, हुण तुसी राजी हो गए हो, हुण कोई कलाम सुना दो। ठीक है जनाब,
1: सुनाऊं आपको? मेरा भी दिल कह रहा है बड़ी खरी खरी सुनाऊं।
0: तुसी सुना रहे हो जनाब, तुसी मैनु ही चैलेंज कर बैठे हो कि तुसी पढ़ो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। इसमें शामिल
1: हूँ। आप पढ़े पता क्यों क्यों चाहता हूँ? ऐसा करते हैं एक मिसराब पढ़े एक मैं पढ़ता हूँ, मजा आ जाएगा ना, और आपको भी पता लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लोगों को भी पता लगेगा। आप तो शायर है ना, मैं आप मुझसे अच्छे शायर है, वैसे आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप अपना भी लिखते हैं, आप पढ़े मुझे मजा आएगा इस बात में सर। मैं आपको यकीन करें मैं आपको दाद दूंगा, और ऐसी दाद दूंगा जैसे मुशायरों में दी जाती है, और दिल से दूंगा, मतलब कोई लगी लिखती कोई मुनाफकत नहीं।
0: बस मैं तो वो जो आप अभी दाद दे रहे हैं मुझे वही मेरे लिए बहुत सरकार है।
1: सर क्या कर, मैं तो आपके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ सर।
0: चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमीर साहब।
1: शिकेत जलाली की गजल मैं सुना दूंगा आपको।
0: जी सुनाइए।
1: होता है बाद में अगर लोगों के पेट में दर्द पड़ता रहे ना, तो मेरी बला से पड़ता रहे लोगों के पेट में दर्द, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बड़े हाथ जोड़ के आपसे ये कह रहा हूँ, आपसे बड़ी थोड़ा कम से कम किसी का नहीं तो मेरी जो का ख्याल कर लें, और अपनी और FM की ये बड़ी जरूरी है सर, चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए मेरे लिए। शिकेत जलाली ने कहा था कि आपके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, आपके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे, जितने उस पेड़ के फल थे पसे दीवार गिरे।
0: वाह वाह वाह,
1: और ऐसी
0: क्या कहने, अगला शेर नहीं पढ़ूं?
1: पढ़े पढ़े पढ़े पढ़े सर।
0: अच्छा शेर है कि ऐसी दहशत थी फजाओं में, ऐसी दहशत थी फजाओं में खुले पानी की, ऐसी दहशत थी फजाओं में खुले पानी की, आंख झपकी भी नहीं हाथ से पतवार गिरे।
1: अच्छा क्या बात है, अब आपको मैं दाद दे रहा हूँ पर लिखरा आपका सही करके पढ़ने को कह रहा हूँ। ऐसी दहशत थी फजाओं में खुले पानी की, आप खोले मिसरे को ना, आप झटकी भी नहीं हाथ से पतवार गिरे। आप शेर के तेवर को अगर नहीं समझेंगे, मैं तो ये समझाने के लिए मैंने नाम रखा था कि मैं अगर पढ़ूंगा तो लोगों को ये पता तो लगे ना कि इसका तेवर क्या कह रहा है, शेर के तेवर क्या है।
0: और मुझे गिरना है
1: नहीं आप
0: तो, और मुझे गिरना है, मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साया दीवार पे दीवार गिरे।
1: वाह वाह वाह, अब मैं पढ़ता हूँ कि तेरे की छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत, तेरे की छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत, ये सितारे मेरे घर टूट के बेकार गिरे।
0: वाह वाह वाह,
1: शेरे
0: के देख कर अपने दरो बाम लरस जाता हूँ,
1: देख कर अपने दरो बाम
0: देख कर अपने दरो बाम लरस जाता हूँ, मेरे हम साए में जब भी कोई दीवार गिरे।
1: अब देखना फिर आ गया, मेरे हम साए में जब भी कोई दीवार गिरे। अब बैर तो मैं बता दूंगा आपको, और क्या हवा हाथ में तलवार लिए फिरती है, क्या हवा हाथ में तलवार लिए फिरती थी। क्या तेवर है कि क्या हवा हाथ में तलवार लिए फिरती थी, कि मुझे डाल बने में कोई चपनार गिरे।
0: और शेर है कि वक्त की डोर खुदा जाने कहां से टूटे। वक्त की डोर खुदा जाने कहां से टूटे, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे।
1: गलत कर दिया, ये नहीं है इसमें। वक्त की डोर खुदा जाने कहां से टूटे, किस घड़ी सर पे लटकती हुई तलवार गिरे। गलती आपकी भी आ गई है
0: सर जी।
1: हमसे टकरा गई खुद भर के अंधेरे की चट्टान में निकुमन करते हैं।
0: एक सेकंड इसको आप फिर से पढ़िए कि किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे। इसमें क्या गलती है?
1: लटकती हुई। चलिए
0: इस पे हम देख लेते हैं कि ये जो लफ्ज है ना, ये है इसमें
1: नहीं है सर। है, देख लें।
0: देखिए इसमें है,
1: आप वाली में होगी, आप फेसबुक से देख रहे होंगे।
0: नहीं, मैं फेसबुक से नहीं देख रहा,
1: बुक से देख रहे हैं।
0: मुझे जबानी याद है
1: सर, ये नहीं है ना सर। बैर को देख लेना, क्या करते हैं सर जी।
0: चलिए फिर मैं अपनी बात
1: आगे चलते हैं। मैं जो कह रहा हूँ नहीं है तो सर मानने के नहीं है, अगर हुई तो जो
0: जुर्माना
1: हमसे टकरा गई खुद बैर की अंधेरे की चट्टान।
0: चलिए हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं कि वक्त की डोर खुदा जाने कहां से टूटे, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे।
1: किस घड़ी सर पे लटकती हुई, अच्छा आप ये बताएं, लटकती होता है लटकी हुई होता है उर्दू में सर, क्या कर रहे हैं।
0: लेकिन ये शेर देखिए ना, हम किसी जो शायर की जो चीज है ना, उसका जो कलाम है, उसमें हम रद्द बदल तो नहीं कर सकते ना
1: सर। मैं नहीं कर रहा हूँ सर, मेरे पास 1990 की किताब पड़ी है।
0: एक बात है अमीर गुल साहब
1: जी,
0: कि अगर ये लटकी हुई होगा, ये लटकी हुई तलवार गिरे, तो क्या वजन से खारिज हो जाएगा, ये बैर से खारिज हो जाएगा। सवाल है आपसे,
1: अजीब बात कर रहे हैं आप, अपनी एडिशन मत करो ना सर।
0: अरे मैं बता रहा हूँ आपको,
1: नहीं हम नहीं कर सकते सर।
0: आप पे सवाल है मेरा, नहीं सवाल है मेरा कि अगर लटकती हुई
1: की जगह, क्या बैर है बताएं,
0: अगर लटकती हुई की जगह ये लटकी हुई होगा, तो क्या जो शेर है वो वजन से गिर जाएगा, बैर से गिर जाएगा। सवाल
1: गिर जाएगा ना, लटकी हुई तो गिर जाएगा ना, कैसे आप लगाएंगे।
0: चलिए मेरे ख्याल में इस
1: शेर बात को यही पे खत्म कर लेंगे सर, मजा तो
0: नहीं। आपसे बात आगे नहीं बढ़ेगी सरकार।
1: हमसे पहले शेर सर, हमसे टकरा गई खुद बढ़ के अंधेरे की चट्टान, हम संभल कर जो बहुत चलते थे ना चार गिरे। तो शेर नहीं पढ़ देता हूँ कि क्या कहूँ दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है। क्या कहूँ दीदा उतर, ये तो मेरा चेहरा है, संकट जाते हैं बारिश की जहां दार गिरे। और
0: अच्छा जनाब,
1: नहीं रात की
0: जनाब, आपने मुझे खुद ही कहा था कि हम तलफ़ुज को बेहतर
1: बनाएंगे, आपने बात की,
0: तो लफ्ज
1: को तलफ़ुज की रहने दें,
0: तो लफ्ज है जी। सवाल ये है मेरा कि जो लफ्ज चेहरा है या चेहरा है, आपसे मेरा सवाल है।
1: क्या कह रहे हैं,
0: लफ्ज चेहरा है या चेहरा है, चे के ऊपर जेर है या जबर है।
1: चेहरा है।
0: अच्छा, चे के नीचे जेर नहीं है।
1: उर्दू में पता क्या हुआ, जब हम उर्दू में आए, आप अब अगर आप उस पर उस बहस में जाएंगे ना, हुआ ये कि जब हम ये अरब से आया, फिर फारसी में कन्वर्ट हुआ, फारसी से लोगों ने हिंदी में ले गए, बाद में यहाँ पे आके जो लफ्ज हमारे पास आए उनमें जैसे
0: फिर हम देसी में ले गए, फिर देसी हो गए।
1: नहीं नहीं, आप नहीं सर, अजीब बात कर रहे हैं सर, आप मुझे समझाने की कोशिश मत करें ना सर, खुदा के लिए, मैं आपकी बात, आप कितनी मेरे से बहस करेंगे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है मुझे गजल पूरी करना दें कि हाथ आया नहीं कुछ रात के दल दिल के सिवासी, बड़ा हासिल गजल शेर हो गया और प्रोग्राम के मुताबिक भी हो गया कि वाकई रात के इस दल दल में हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हाथ आया नहीं कुछ रात की दल दल के सिवा, आए के सुबह पर ख्वाबों के परस्तार गिरे और वो तजल्ली की शुआएं थी कि चलते हुए तीर आईने टूट गए, आईना बरदार गिरे और देखते क्यों हो शकोब आपके लिए इतनी बुलंदी की तरह।
0: आप इस शेर को फिर से पढ़िए, आपने क्या कहा कि वो तजल्ली की शुआएं थी,
1: ये चलते हुए तीर,
0: चलते हुए तीर नहीं है सर, अगर तीर हो तो फिर आप भी अपनी जरा इसलाह कर लीजिए।
1: आईने टूट गए, अब
0: वो तजल्ली की
1: मसला है ना,
0: वो तजल्ली की शुआएं थी के जलते हुए पर,
1: जलते हुए क्या है,
0: जलते हुए पर
1: क्या करते हैं सर, आप क्यों मुझे उर्दू समझाने की कोशिश कर रहे हैं?
0: मैं आपको नहीं समझा सकता,
1: मैं आपको भी नहीं समझा सकता, ये तो झगड़ा है।
0: आपने
1: झगड़ा ये है, नहीं सुने ना,
0: आपने कहा मैं
1: आपको जलते हुए पर की तस्वीर लगा के ना आपके फेसबुक पे पेज पे भेज रहा हूँ आपको,
0: सही
1: ठीक है,
0: ठीक
1: ये हो सकता है, ये मेरे पास बहुत सबूत है,
0: सही
1: है ना, चलते हुए तीर होते हैं, आप तर से क्या मतलब ले रहे हैं,
0: चलते हुए पर,
1: नहीं तर से क्या मतलब ले रहे हैं,
0: चलते हुए पर, सर परों की बात हो रही है,
1: अल्लाह अकबर, देखते क्यों आपकी लग रहा के शिकायत इतनी बुलंदी की तरफ, न उठाया करो सर के सर को ये दस्तार गिरे, अल्लाह आपकी दस्तार को सलामत रखे, अल्लाह आपके प्रोग्राम को भी सलामत रखे, मैं बड़ी नजरत के साथ खुदा के लिए इस सियासत और सुनाफत की जिंदगी से अल्लाह हमें महफूज रखे, मुझे बड़ा दुख हुआ है आपको ये प्रोग्राम देख के,
0: बहुत दुख हुआ है, बहुत शुक्रिया।
1: इस तरह ना करें, ठीक है ना, अगर शेर पढ़ना है ना, मैं मुकाबला नहीं करना चाह रहा और कभी भी नहीं करूंगा, लिखने के बाद याद रखिएगा शुक्रिया अपने मित्रा साहब, मैंने उस्तादों से सीखा है और ये जो होती है ना, ये नौटंकियां मुझे नहीं आती, ये ड्रामे बाजे, ये जो आ गए हमीद बल पे तबसरे करने वाले, वो अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है और ये जो मुझे अल्लाह ने दिया ना, मैं आप छीन सकते हैं, जो आपको अल्लाह ने दिया ना मैं छीन सकता हूँ, तो लोगों को थोड़ा ख्याल करें, आप अपने प्रोग्राम का ख्याल करें, और सदर फरहानी साहब से भी मेरी बड़ी रिक्वेस्ट है, उर्दू का प्रोग्राम है उर्दू के तरीके साथ चलने दें, वरना आप यहाँ यकीन करेंगे आपके इस प्रोग्राम में ना वो आपको सलाम दुआ वाले बड़े मिलेंगे, ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो अपनी बीवी को बहन को उन्होंने सलाम नहीं किया होगा, रेडियो पे सलाम ही सलाम चल रहे होंगे।
0: अब आप राजी हैं?
1: रेडियो तो नहीं रहा सर,
0: अब आप राजी हैं?
1: एक ड्रामा हो गया सर, क्या कर रहे हैं आप, मैं इजाजत चाहूंगा आपसे, बड़ी मेहरबानी, सलाम अलैकुम,
0: बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम
2: जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: जी कौन है हमारे साथ?
2: बिस्मिल्लाह से होती है हर इब्तिदा मेरी।
0: हमीद गुल साहब, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और कल जो हुआ आपके हवाले से जो गुफ्तगू हुई कॉलर्स ने की, उसके लिए हम आपसे एक बार फिर माजरत चाहते हैं। अब जाहिर है कॉलर्स कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अब कोई किसी को मना तो नहीं कर सकता ना। बहरहाल आप हमारे बहुत मुअज़्ज़ज़ कॉलर हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सामिन, ये रात है, रात इंतज़ार करने वालों की भी है और रात याद करने वालों की भी है, वो लोग जो अपनों को याद करते हैं और अपनों का इंतज़ार करते हैं।

0: साइन, प्यार मरने के लिए नहीं होता, प्यार जीने के लिए होता है। बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: इब्तदा है रब जलील की बाबरकत, नाम से शुरू करता हूँ, देखती आंख सुनती कान, हाफिज अब्दुल रहमान का सलाम।
0: जो कसर रह गई है वो आपने पूरी करनी हाफिज साहब, आप बस भी कीजिए। आप दोनों अपने झगड़े में इस फकीर का बहुत नुकसान कर रहे हैं वैसे।
1: सॉरी, मैं समझा देता हूँ मेरे भाई, अगर सुन ले हमीद गोल साहब, माजद के साथ मैं यही बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा इख्तलाफ भी होता है, तनकीद भी होती है, आप करें, आपका हक बनता है। मैं थोड़ा मुख्तसर ये करूंगा, अगर सूरत है वन नजमी इजा हवा, अगर इसको यूं पढ़ा जाए, वन नजमी इजा हवाई माजुल्ला साहिबकुम वमा गवई, माना एक ही बनता है। अगर यही आरत आपकी तारीफ कर रहे थे आपकी, आप पढ़ते भी अच्छे है, लेकिन पहले का मकसद यही है, अगर वो लफ्जों की चुनौती कर रहे हैं, अगर आपको समझा भी रहे भी ऐसे चीज है, उनके बाद उसको गलत खुद कह रहे हैं हमीद गुल साहब, ये आपकी जाती है, लेकिन पढ़े जरूर पढ़े, लेकिन कहने का मकसद यही होता है हमारा, मेरा आज तक किसी चैनल पे सिर्फ एक दफा कॉल हुई है, मैं दोबारा कोशिश भी नहीं करता। सिर्फ क्या है, लफ्जों की चुनाव। अगर मैं यूं कहूँ दिल के नसरातल मुस्तकीम, अगर उसको मैं जेर जबर साकत नहीं पढ़ती, जो जेर होगी उसको जेर ही पढ़ूंगा, पेश होगी पेश पढ़ूंगा, हमजे के साथ है, हम जेर के साथ है। आप तो हर पसे ये करते प्रोग्राम चलने दे, यही तो इंसानियत का हक होता है, प्रोग्राम चलने दे, किसी को खराब ना करें, बस अकेला सलामत है। कि अनिला साहब आती है, मिशाल आती है, वो तो कोई बात भी नहीं करते, वो उनके हर बंदे का अपना अपना जहन होता है, और जैसे कि अलामा इकबाल का शेर है, खुद ही को कर बुलंद इतना, ये भी तो कहते खुदा को कर बुलंद, वो भी कह सकते, लेकिन उसने यही कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। अगर वो भी कह सकते थे रजा ही नहीं कहा ना, सिर्फ रजा अल्लाह की होती है। समझाने का मकसद यही होता है भाई मेरे, जरा गौर से सुने, अगर आपने एक आगे रुकू में एक रुकू में अगर वहां तारा लगा हुआ है ना, कुरान मजीद को उठा के देखे, गोलदार क्यों लगा होता है, वक्फ होता है, इजहार होता है, नियम पुना होता है, नियम तकमील होता है, नियम शाकिर होता है। अगर थोड़ा सा अगर मुआजरा करे सिपारे को उठा के देखे, हर आयात के ऊपर एक दो आयात के बाद वो वक्फा लगा होता है, जिसको हम गोलदार कहते हैं, जीरो कहते हैं, सिफर कहते हैं, ये लफ्ज बरीकी होते हैं, बरीक लफ्ज को समझने के लिए टाइम चाहिए, वक्त चाहिए। माजर के साथ इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया।

साइन प्रेम, आप सुन रहे हैं गुंजाए शौक, और गुंजाए शौक में कुछ नए नए शौक हमें देखने को मिल रहे हैं। खुदा ये शौक सलामत रखे। और बढ़ते हैं जनाब इस प्रोग्राम की अगली पेशकश की जानिब।

0: हर इंसान की ख्वाहिश रहती है कि वो रवैयों को समझ पाए और उनकी जो नफ्सियात है उस तक पहुंच जाए। लेकिन ये ऐसा ही है जैसे इंसान समंदर में उतरता है, यानी जब इंसान समंदर में उतरता है तो उसके शौक का दरिया भी उतरता है। इसलिए कि रवैयों का जो समंदर है ना, उसकी कोई तय नहीं है। ये बात तय है और इसके बरक्स अगर रवैया मोहब्बत बन जाए तो क्या कहना। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ, कहां से?
1: मैं साईदार लाहौर से।
0: जनाब
1: अरबार साहब का शेर मुझे याद आ गया। हर तरफ भीड़ है नफरत से भरे चेहरों की। हर तरफ भीड़ है नफरत से भरे चेहरों की, ऐसी महफिल से तो अच्छा है कितना हो जाए।
0: कोई बात नहीं जनाब, वो यूँ है, सरकार के शिकवाए जुल्म, फराज ने कहा था ना कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं हमारा काम जो है वो अगरचे बुत है जमात की आस तीनों में, मुझे है हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह।
1: मैंने बात में आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी होती है, कभी आपने दिलदारी नहीं की किसी की भी कभी। तो आरजे जो अच्छे आरजे होता है ना, अच्छे वाला जो सब बात को समझता है, वो कॉलर की बात कभी नहीं सुनता।
0: जी हाँ,
1: कभी कॉलर की रह नहीं लेता कि क्या हुआ क्या ना हुआ। तो आपके आगे मैक होता है, कोई भी कॉलर आता है कुछ बात करता है, मैं कॉलर की फेवर में रहता हूँ। ऐसी बात है कि मैं आप सपोर्ट ज्यादा कर, लेकिन नहीं, जब भी पार्ट उठाता है उसको वहीं पे आप देगा।
0: आप यकीन जानिए सरकार के हमीद गुल साहब ने ऑफ एयर भी कोई 25-30 मिनट बात की है, तो हम चाहते तो उनको बराह रास्त शामिल ना करते, लेकिन हम क्यों करें ऐसा, ये सबका प्रोग्राम है, ये उनका भी प्रोग्राम है। इसलिए हम चाहते हैं कि चलिए कोई ऐसी बात नहीं है, उनकी अगर नाराज़गी थी तो वो उनकी ज़बान पर आ गई तो ये अच्छी बात है। जनाब रेडियो पाकिस्तान के साथ मेरा गुज़श्ता 15 बरस से रिश्ता है और पहली मर्तबा गुंजाइश शौक में 2016 में हाजिर हुआ था, तो बहुत पुराना रिश्ता है रेडियो पाकिस्तान से। जी हाँ,
1: तो हमीद गुल साहब तो एक रौनक के अनिला साहब है, और ये कलर ना होने की माने अब तो जी नहीं करता कि इंसान ऐसा सुने।
0: जी हाँ जी, हम सब इनसे मोहब्बत करते हैं, हम अब भी चाहेंगे कि हमीद गुल साहब जो हैं वो प्रोग्राम की जीनत बनते रहें।
1: हर हर प्रोग्राम में आते हैं, ये नहीं कि आपके प्रोग्राम वो मतलब डिस्कस करते हैं, हर एक प्रोग्राम में उन्हें आना होता है जाना होता है।
0: जी
1: तो ऐसे कलरों को अपना नजीर गिलानी साहब है, और एक और ख्वाजा आते हैं कहीं से कॉल करते, एक बहुत एक फरमाया आप लोगों के लिए।
0: जी हम सर आपसे बहुत
1: ख्याल
0: मोहब्बत
1: रखिएगा।
0: करते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए।
1: बहुत शुक्रिया
0: सर, बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: वाह।
1: खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं, फिर भी अब तो नजर आते जंगल की तरह रात फैली है तेरे की तरह तेरे।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कह
1: रहे। तेरे कुर्ब की खुशबू जागी खुशबू जागी।

वाह।

0: वाह वाह, क्या क्या खूबसूरत राग किरवानी छेड़ा आपने माशाल्लाह, क्या कहने। बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम में कॉल की।
1: जी जी जी बड़ी मेहरबानी। आप पे मंत्री हैदर साहब, आप पे हैदर करार के कर्म रहे
0: जनाब। जनाब बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला।
1: अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके प्रोग्राम में बहार इसी तरह है। कोई अल्लाह ताला बदमजगी वाली बात नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है।
0: कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं।
1: सभी नंबर शहर वाले लोग हैं और एफएम 101 के तो सभी माशाल्लाह बहुत
0: मेरे तो
1: शाम हैदर साहब को
0: जी
1: 101 का हीरो करार दिया है। यानी कि कह लीजिए कि मोहम्मद अली और आपको वही मुराद, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साइन मोहतरम, ये प्रोग्राम आपका अपना है, एफएम 101 आपका अपना है, रेडियो पाकिस्तान आपका अपना है। और हम फिर कहेंगे कि इस माइक से हम मोहब्बतें बांटना चाहते हैं, इल्मियत बिगाड़ना या अपने आप को किसी से बेहतर बनाकर पेश करना, ये इंसानियत का खासा और बिलखुसूस मोहब्बत का खासा नहीं होता। इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरों के लिए अच्छा अमल करता है। तो बहरहाल इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। ज़िंदगी ने वफा की तो अगली शब जुमा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
3: There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children, who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot.